प्रस्तुत है स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग। आज का कार्यक्रम स्वाधीनता संग्राम सेनानी गोपीनाथ बारदोलाई के जीवन पर केंद्रित है।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। कोई भी व्यक्ति सही अर्थों में लोकप्रिय तब होता है जब वो लोगों के सुख दुख का भागीदार बनता है, उनके बीच रहता है और उनके हित के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। गोपीनाथ बारदोलोई को मैं एक ऐसा ही राजनेता मानता हूँ जिन्होंने जीवन भर असम के आम लोगों के हित के लिए काम किया और निस्वार्थ भाव से किया। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का ये वक्तव्य भारत रत्न श्री गोपीनाथ बारदोलोई के संपूर्ण व्यक्तित्व को सटीक परिभाषित करता है। वो एक ऐसे बिरले व्यक्ति थे जिन्होंने रचनात्मक राष्ट्रीयता के प्रति अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। असम के स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा और उसके सर्वांगीण विकास की दिशा में उन्होंने अविस्मरणीय काम किया। इसीलिए असम की जनता उन्हें लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई कहा करती है। गोपीनाथ बारदोलोई का जन्म 6 जून सन 1890 को असम के नौगांव जिले के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। कॉटन कॉलेजिएट स्कूल गुवाहाटी में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने सन 1911 में स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता से इतिहास में ऑनर्स स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद सन 1914 में एमए की परीक्षा पास की और 3 साल तक कानून की शिक्षा लेकर गुवाहाटी लौट आए। वे सबसे पहले सोनाराम हाई स्कूल गुवाहाटी में मुख्य अध्यापक के पद पर नियुक्त किए गए। इसी अनुभव के आधार पर उनमें शिक्षा के प्रति बहुत गहरी रुचि पैदा हुई और आगे चलकर पूर्वोत्तर भारत में जो पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया उसके वे प्रमुख संस्थापक बने। पूर्वोत्तर में मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान के कॉलेजों की स्थापना में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। विधि स्नातक होने के बाद सन 1917 में उन्होंने वकालत आरंभ की। ये समय राजनीतिक गुलामी का था। असम में चारों ओर गरीबी थी, लोग अशिक्षित थे, इसीलिए शोषित भी थे। गांधी जी से प्रेरित होकर गोपीनाथ बारदोलोई ने सन 1921 में वकालत छोड़ दी और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए पूर्णतः समर्पित हो गए। उन दिनों असम के चाय बागानों का पूरा लाभ अंग्रेज उठाया करते थे, जनता को सिर्फ मजदूरी मिलती थी। सादुल्ला मंत्रिमंडल की शह पर अंग्रेज इन बागानों के मालिक बने बैठे थे। इस शोषण के खिलाफ उन्होंने कड़ी लड़ाई लड़ी। उधर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के जरिए विदेशी सामान के पूर्ण बहिष्कार का आह्वान किया। गोपीनाथ बारदोलोई ने असम में दक्षिण के ग्वालपाड़ा जिले का पैदल दौरा किया और लोगों को जगाया। परिणाम ये हुआ कि असम की जनता ने भी विदेशी वस्तुओं की होली जलाई और चरखे पर सूत कातकर वस्त्र धारण करने लगी। इससे अंग्रेज सरकार बौखला गई और गोपीनाथ जी और उनके साथियों को गिरफ्तार करके 1 वर्ष के कारावास की सजा दी। लेकिन वो अपने संकल्पों के साथ अडिग रहे।

युद्ध में भेजा था। इसलिए गांधी जी के नेतृत्व में इसका विरोध किया और असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। युद्ध समाप्ति के बाद परिस्थितियां बदली और सन 1940 में चुनावों में हिस्सा लेने का निश्चय किया। सन 1946 के चुनावों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और गोपीनाथ जी असम के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि वे आजादी की रक्षा करें और राष्ट्र निर्माण में जुट जाएं। गोपीनाथ जी बेहद साहसी और दृढ़ राजनेता थे। अपना विरोध उन्होंने हमेशा बहुत स्पष्ट और मजबूत तरीके से दर्ज करवाया। चाहे बात सन 1937 में असम विधानमंडल में विपक्ष के नेता के तौर पर बजट की कड़ी आलोचना की हो, या सन 1938-39 में अफीम के व्यापार पर प्रतिबंध लगवाने की हो, या चाय उद्योग द्वारा अर्जित लाभ पर कृषि आयकर विधेयक में निर्धनों को छूट देने की हो, उनके विरोध का हमेशा सकारात्मक परिणाम सामने आया। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान ही अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग हिस्सों में दल बनाने का प्रस्ताव रखा था। इस ग्रुपिंग सिस्टम को गोपीनाथ बारदोलोई ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने तय किया कि असम अपना संविधान खुद बनाएगा। असम की असेंबली ने क्रिप्स मिशन की योजना को खारिज कर दिया। उसने अपना गण परिषद बनाया। इस तरह अंग्रेजों का कुचक्र टूट गया। इसी तरह उन्होंने सन 1946 में कैबिनेट मिशन के उस प्रस्ताव का भी कड़ा विरोध किया जिसमें असम को बंगाल के साथ मिलाने की सिफारिश की गई थी। उनके प्रयासों से ही असम का कुछ हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में जाने से बच गया। असम अपनी अखंडता के साथ भारत में शामिल रहा। वो अपनी मातृभूमि के साथ लगातार जुड़े रहे।

देश की आजादी के बाद गोपीनाथ बारदोलोई असम के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। अपने 3 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में उन्होंने आधुनिक असम की मजबूत नींव रखी। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किए। न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और समतावादी समाज की स्थापना के उद्देश्य से उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जनजातीय सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखने में भी गोपीनाथ बारदोलोई की पहल अविस्मरणीय है। उनकी अध्यक्षता में गठित संविधान उप समिति की सिफारिशों पर ही संविधान में 6ठी अनुसूची शामिल की गई, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के आदिवासी इलाकों के प्रशासन के लिए प्रावधान किया गया। इस तरह आदिवासी भूमि, चारागाहों और जंगलों के संरक्षण का कार्य आरंभ हुआ, ताकि देश की अमूल्य वन संपदा का संरक्षण हो सके। गोपीनाथ बारदोलोई का व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन समाज के सभी वर्गों के प्रति मानवता और भाईचारे की भावना से ओतप्रोत था। असम के महान संत शंकरदेव के दर्शन का उन पर बहुत गहरा असर था। साहित्य, शिक्षा, संगीत तथा संस्कृति, इन सब से उनका आंतरिक जुड़ाव था। गोपीनाथ बारदोलोई एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा और अनासक्ति योग का असमिया में अनुवाद किया था। इसके साथ ही उन्होंने बाल साहित्य की भी रचना की। सर्वधर्म समभाव, विश्व शांति और अहिंसा के प्रति उनकी दृढ़ आस्था थी। उन्होंने भगवान राम, ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद और गौतम बुद्ध जैसे चरित्रों की जीवन गाथाएं समान आस्था और श्रद्धा के साथ लिखीं। धर्मनिरपेक्षता के वे प्रबल समर्थक थे और वसुधैव कुटुंबकम पर उनका पूरा विश्वास था। उनके लिए भाईचारा और समाज सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं था। वे विश्व शांति के हिमायती थे। अपने इन्हीं विचारों पर वो आजीवन चलते रहे और देश की आज़ादी के 3 साल बाद 5 अगस्त सन 1950 को गुवाहाटी में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। सन 1999 में उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। अपनी अंतिम सांस तक देश की सेवा करने वाले ऐसे महान व्यक्तित्व को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। आज का कार्यक्रम भारत रत्न गोपीनाथ बारदोलई के जीवन पर केंद्रित था। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। बच्चों के लिए प्रस्तुत है उनका मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा।
1: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम में आज का विषय है बुजुर्गों की बातें और उनका बड़प्पन। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी ज्योति पांडे।
2: लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बच्चों, मैं हूँ ज्योति पांडे, एक कहानीकार, और आज बाल सभा में बात करेंगे बूढ़ों की बातें और बड़प्पन।
3: तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: अच्छा, एक काम करिए, सबसे पहले ये बताइए कि आपके दादा दादी, नाना नानी या जो भी पड़ोस में बड़े बूढ़े रहते हैं, उनको देखकर आप क्या सोचते हैं? सोचते हैं ना, इन्हें मोबाइल चलाना नहीं आता, ये रिमोट ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाते, ये वर्ड्स गलत प्रोनाउंस करते हैं, इनको शायद इंटरनेट के बारे में कुछ नहीं पता, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है ये भी नहीं पता। लेकिन एक चीज सोचकर देखिएगा, आपके यही दादा दादी, नाना नानी या बड़े बूढ़े अपने साथ में जीवन का अनुभव लिए हुए हैं, जो कि कोई जिसकी बराबरी नहीं कर सकता। अच्छा, सच सच बताना, आप में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अरे, इन्हें कुछ नहीं आता, नई दुनिया के बारे में इन्हें कुछ पता ही नहीं है, ना इन्हें सोशल मीडिया के बारे में पता है, ना ही इन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में। लेकिन इन सब के पास एक चीज है जो बेशकीमती है, वो है जीवन का अनुभव, जो हमें कई बार कई परेशानियों में बचाता है। पता है, मैं जब छोटी थी तो मैं अपनी दादी की गोद में लेटकर ढेरों कहानियां सुना करती थी, और उनमें से एक कहानी मुझे अभी तक याद है। सुनोगे? वो बताती थी कि एक बार एक पंडित जी और एक जो नाव चलाने वाला है, वो नदी में जा रहे थे। अब नाव चलाने वाला बेचारा गरीब, फटे पुराने कपड़े, नाव चलाकर अपनी गुजर बसर करता था, और पंडित जी पढ़े लिखे विद्वान। उन्होंने नाविक से पूछा, महाभारत पढ़ी है? नहीं, हम कहाँ पढ़ पाते हैं, सारा दिन इसी में निकल जाता है। तो वेद पुराण तो जानते होगे कुछ उनके बारे में? अरे कहाँ पंडित जी, वेद पुराण, हम तो अपनी गुजर बसर के लिए एक किनारे से दूसरे किनारे यात्रियों को ले जाने का काम करते हैं। अब पंडित जी ने उसे देखा और कहा, बिल्कुल अनपढ़ हो, मतलब तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। अब पंडित जी तो पंडित जी थे, वेद पढ़े थे, पुराण पढ़े थे, रामायण पढ़ी थी, गीता पढ़ी थी, सारी चीजों का बड़ा ज्ञान था। उनको देखकर बड़ा दुख लगा कि अरे, ये नाविक, इसको तो कुछ ही नहीं आता है। थोड़ी देर में घने बादल गरजने लगे, तूफान आने की आशंका हो गई, नौका डगमगाने लगी, इधर से उधर, इधर से उधर। अब नाविक ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, वेद पुराण तो सब ठीक है, आपको तैरना तो आता होगा? पंडित जी ने कहा, नहीं, मुझे कहाँ तैरना आता है। और दादी हमेशा मुझे ये कहानी हंसकर ये बताया करती थी कि पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ कला या लाइफ स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। तो ये जो अनुभव होते हैं, ये जिंदगी में हमारे लिए लाइफ स्किल्स का काम करते हैं, हमें जीवन कैसे जीना है इसके बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। सोचो हमारे दादा दादी उस जमाने के हैं जब न सोशल मीडिया था और उन्होंने सारी दुनिया संभाली है। वह हर चीज के लिए गूगल से पूछने नहीं चले जाया करते थे। हम आपकी तरह, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, जहां अटकती हूँ तो गूगल जिंदाबाद और आजकल उससे भी बड़ा चैट जीपीटी। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, सीधे टाइप करिए और जवाब हाजिर। पर ये चैट जीपीटी के पास क्या वो एक्सपीरियंस है, क्या वो कनेक्शन है जो हमारे बड़े बूढ़ों का हमारे साथ था? बिल्कुल नहीं। मैं आज मानती हूं कि आप में से जो भी अपने बड़े बूढ़ों के संग बड़े हो रहे हैं, आप उनको जिस तरह से काम करते हुए देखते हैं, केवल देखने से ही आप बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे। एक कहानी सुनाती हूं आपको। कहानी पुरानी है पर उसमें सीख बहुत सारी है। ये उस समय की बात है जब राजा राज्यों पर राज किया करते थे। प्रजा होती थी, राजा सबसे बड़े होते थे। तो किसी एक राज्य में एक राजा रहता था। तो वो राजा बेहद घमंडी था। वो सोचता था कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है। न किसी की सुनता था न समझता था। उसने जो निश्चय कर लिया वो पूरा ही होना था। एक बार उसके दिमाग में आया, मेरी प्रजा में ये बूढ़े लोगों का क्या काम है, मेरी प्रजा में जवान लोग रहने चाहिए, वही खेतीबाड़ी करते हैं, वही सब चीज करते हैं। और उसने फरमान जारी कर दिया कि 65 साल की उम्र से ऊपर वाले सारे बूढ़ों को जंगल में छोड़ दिया जाए। जंगल में छोड़ दिया जाए, प्रजा परेशान, लोग अपने माँ बाप को जो उनके साथ रहते हैं, जिन्हें वो प्यार करते थे, उनको जंगल में छोड़ दें मरने के लिए। लेकिन राजा का फरमान था, उसने कहा जो ऐसा नहीं करेगा उसे दंड दिया जाएगा। मंत्रियों ने समझाने की कोशिश की लेकिन राजा को कोई बात समझ में ही नहीं आई। लोग दुखी हो गए, क्या करते। उन्होंने ढेरों सामान माँ बाप के साथ बांध कर कि थोड़े दिन तो इनका गुजारा चले, गांव के बाहर जंगल में छोड़ आए। सब बहुत दुखी थे। कौन खुश रहता है अपने माँ बाप को जंगल में छोड़कर? लेकिन राजा का फरमान था, करना पड़ा। इसी गांव में एक जीवाराम नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी माँ बचपन में गुजर गई थी। उसको उसके पिता ने माँ का प्यार देकर पाल पोस कर बड़ा किया था। वह अपने पिता से औरों की तरह बहुत प्यार करता था। पिता 82 वर्ष के हो चुके थे। जब राजा का फरमान आया तो उसने सोचा, मैं अपने पिता को जंगल में छोड़ दूं, कैसे कर पाऊंगा मैं ये? नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। बहुत सोचा क्या उपाय करूं कि मैं अपने पिता को अपने पास ही रखूं। उसके घर में एक बड़ा सा नगाड़ा था। उसने दिमाग लगाया, नगाड़े में छेद किए, नीचे मुलायम रजाई बिछाई और अपने पिता से कहा कि वो उसके अंदर चले जाए, पूरे दिन बाहर ना निकलें। वहीं पे पानी का छोटा सा बर्तन रख दिया। पिता पूरे दिन नगाड़े के अंदर रहते। जब रात को सारा गांव सो जाता तो वो नगाड़े से पिताजी को बाहर निकालता। दोनों साथ में बैठकर खाना खाते और पिता उसे दुनियादारी की बातें सुनाते। सुबह होती तो फिर नगाड़े के अंदर। दिन गुजरते गए और किसी को इस बात का पता नहीं चला कि जीवाराम के पिता उसके साथ ही रहते हैं, वह उन्हें जंगल में नहीं छोड़ पाया। अब एक बार इस राज्य पर दूसरे राज्य के राजा ने चढ़ाई करने की सोची। अब ऐसे तो लड़ाई कर नहीं सकते थे। उसने कहा कि मैं 3 पहेलियां पूछूंगा, अगर इन 3 पहेलियों का सही उत्तर मिला तो मैं बख्श दूंगा इस राज्य को, छोड़ दूंगा। लेकिन पहेलियों के जवाब देने का एक ही मौका मिलेगा, और अगर सही जवाब रहा तो ठीक है। अब राजा बड़ा परेशान। पता है उसका पहला सवाल क्या था? उसने एक चिकनी लकड़ी का तना भेजा जो दोनों तरफ से एक सा दिखता था, और राजा से पूछा कि इस तने को देखकर, लकड़ी के टुकड़े को देखकर बताओ, जड़ की तरफ कौन सा है और ऊपर वाला कौन सा है। अब लकड़ी तो देखकर कौन बता सकता है? बहुत लोगों ने दिमाग लगाया, मंत्री ने, राज्य के लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया। राजा बड़ा परेशान कि अरे मेरा राज्य चला जाएगा, दूसरा राजा मेरे ऊपर आक्रमण कर देगा, मैं क्या करूं क्या करूं। जीवाराम भी ये सब बातें सुन रहा था। उस दिन जब रात को उसने पिता को नगाड़े से बाहर निकाला तो ये चीज बताई। पिता हंसे, अरे इसमें कौन सी मुश्किल है, एक पानी का बर्तन लो और उसमें लकड़ी का टुकड़ा डाल दो, जड़ की तरफ वाला तैरने लगेगा क्योंकि वो ज्यादा घना होता है, वो नीचे की तरफ चला जाएगा। हाँ, ये बात किसी के दिमाग में ही नहीं गई। दूसरे दिन जब सभा लगी थी तो जीवाराम ने यही बात जाकर राजा को बता दी। पानी लाया गया, लकड़ी के टुकड़े को डाला गया, और जो नीचे की तरफ गया हिस्सा, कहा गया कि ये जड़ का है। राजा को यह जवाब दे दिया गया। राजा हैरान, क्योंकि जवाब बिल्कुल सही था। अब सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि जीवाराम जैसे इंसान को इतनी बुद्धि कहां से आ गई। सबने सोचा कि चलो कहीं से इसको पता चल गया होगा। कोई कुछ नहीं बोला। अब दूसरी पहेली। एक पहेली तो सही निकल गई थी, दूसरी पहेली का भी सही होना बहुत जरूरी था। पता है दूसरी पहेली क्या थी? उसने कहा, राजा ने जो आक्रमण करने वाला था, कि ऐसा ढोल जो बिना किसी इंसान के बजाए संगीत निकाले। अरे ऐसा भी ढोल होता है क्या? ढोल को तो हाथ से बजाना पड़ता है। सारे मंत्री, सारे बुद्धिमान लोग जो थे प्रजा के, सारे दिमाग लगाने बैठे कि कैसे बनाया जाए ढोल, कैसे बनाया जाए ढोल। तरह तरह की कोशिशें की, सब किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। रात को जीवाराम नगाड़े से पिता को निकाला तो बताया कि आज ये पहेली पूछी गई थी। पिता फिर हंसे, अरे इसमें क्या मुश्किल, ऐसा ढोल बन सकता है। भौरों के झुंड को ढोल में चमड़ा लगाने से पहले अंदर डाल दिया जाए, जैसे ही कोई ढोल को पकड़ेगा सारे भौरे गुन गुन गुन गुन गुन करने लगेंगे। दूसरे दिन जीवाराम ने यही चीज जाकर राजदरबार में बताई, और ऐसा ही एक ढोल बनाया गया जिसमें चमड़ा लगाने से पहले भौरों के झुंड को अंदर डाल दिया गया। जैसे ही राजा ने ढोल पकड़ा, भौरों की आवाजें आनी शुरू हो गईं। आखिर वो ढोल बन ही गया जो बिना बजाए ही संगीत पैदा करे। अब राजा हैरान, जीवाराम तो बड़ा दिमाग वाला निकला। राजा ने उसे कहा कि वह उसे अपनी फौज में नौकरी देगा। राजा बड़े खुश थे, क्योंकि दूसरी पहेली का भी हल मिल गया था। और दूसरा राजा बड़ा परेशान कि इतने जवान लोग में इतना दिमाग कहां से आ गया कि उन्होंने सारी पहेलियों के उत्तर दे दिए। लेकिन तीसरी पहेली अभी बाकी थी। राजा ने सोचा इसका जवाब तो कोई दे ही नहीं पाएगा। उसने दो घोड़े भेजे, एक माँ थी और एक बेटी। अब पहेली ये थी कि ये पता लगाना था कि कौन माँ है और कौन बेटी। अब एक से दिखने वाले, बिल्कुल एक से उनके खुर देखे गए, उनके दांत देखे गए, उनकी पूंछ देखी गई, लेकिन कोई नहीं पता लगा पाया कि कौन माँ है कौन बेटी। और अगर गलत जवाब देते तो राज्य हाथ से जाता। दूसरे दिन जवाब देना था। उस दिन रात को सब बड़े चिंतित होकर सोए कि अब पता नहीं राजा चढ़ाई कर देगा, राज्य हाथ से चला जाएगा, क्या हाल होगा इस राज्य का, प्रजा का। जीवाराम रात को हमेशा की तरह ही घर पहुंचा, पिता को नगाड़े से बाहर निकाला। उस दिन उसने खाना अच्छा बनाया था, खीर बनाई थी, रोटी बनाई थी, चावल बनाया था, पिता के पसंद की सब्जी। पिता से उसने कहा, क्या पता दोबारा मौका मिले ना मिले, क्योंकि ऐसी पहेली पूछी गई है जिसका हल कोई बता ही नहीं सकता। पिता ने कहा, बताओ तो मैं कोशिश करता हूं। और जीवाराम ने सारी बातें पिता को बताई कि घोड़े बिल्कुल एक से दिखते हैं, अब कौन माँ और कौन बेटी कौन बता पाएगा। पिता फिर हंसे, ऐसा करना, एक दिन सुबह से घोड़ों को भूखे रखना और शाम को उनके आगे जौ का ढेर लगा देना, देखना जो घोड़ा दूसरे घोड़े को खाने दे माने वो माँ, और जो खाने लगे और दूसरा उसे ना रोके वो बेटी। और जीवाराम ने राजा को जाकर यह बताया। राजा ने कहा, बात में दम है। उसने ऐसा ही किया, सुबह से घोड़ों को भूखा रखा और शाम को एक जौ का ढेर रखा। जैसे ही जौ का ढेर रखा गया, एक घोड़े ने उस पर मुंह मारा, दूसरा घोड़ा शांत खड़ा रहा। उसने दूसरे घोड़े को जो खा रहा था उसे खाने दिया। अब सबको समझ में आ गया कि कौन माँ थी और कौन बेटी। राजा हैरान, उन्होंने जीवाराम से कहा, सच सच बताओ, ये जरूर किसी बड़े बूढ़े का काम है, ये किसी अनुभवी व्यक्ति का काम है, इतना दिमाग तुम में तो हो नहीं सकता। जीवाराम रोने लगा। उसने कहा, महाराज मैं अपने पिता को नहीं छोड़ पाया, मेरे पिता मेरे ही घर में नगाड़े के अंदर रहते हैं। राजा को उस दिन एहसास हुआ कि बड़े बूढ़ों की, उनके अनुभव की राज्य को कितनी जरूरत है। और उसने उस दिन से सब लोगों से कहा कि जाकर गांव के बाहर से अपने माता पिता को, बड़े बूढ़ों को ले आए, क्योंकि उनका आशीर्वाद, वो एक जो बरगद के पेड़ की तरह होते हैं, अपने अनुभव से, अपनी सीखों से हमें कितना कुछ सिखा जाते हैं। तो ये कहानी मेरी बहुत पसंदीदा कहानी है और मैं कई बार बच्चों को ये सुनाती हूँ कि आप अलग तरह की चीज़ें जानते हैं, लेकिन बड़े बूढ़े अलग तरह की अपने अनुभव से हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। बड़े बूढ़े होते हैं ना, उनकी पूरी जिंदगी में उनके अनुभवों का सार होता है। उन्होंने बहुत से मौसम देखे होते हैं, उन्होंने फेलियर्स, सक्सेस, जीवन के अनुभव से बहुत सीखा होता है जो उनके अंदर होता है। और हम समझते हैं हमें सब आता है, गूगल हमें सब बता देगा, चैट जीपीटी हमें सब बता देगा, लेकिन वह कभी भी हमारे बड़े बूढ़ों के अनुभव की बराबरी नहीं कर पाएगा। एक छोटी सी और कहानी है जो मैं आपको जाते जाते सुनाना चाहूंगी। एक गांव में बरगद का बहुत बड़ा सा पेड़ था। अब बरगद का पेड़ कोई खास सुंदर नहीं दिखता है, उसकी जड़ें होती हैं, लोग मजाक बढ़ाया करते थे कि इसमें भूत रहते हैं, ये बरगद का पेड़ किस काम का। कई बार लोग कहते थे कि अरे गांव में इतने अच्छे अच्छे पेड़ हैं, ये भद्दा सा बरगद का पेड़ इसको तो कटवा ही देना चाहिए। लेकिन एक बार गांव में भयंकर आंधी आई, तूफान चला, सारे पेड़ आम के और जो पेड़ थे वह निकल कर गिर गए, लेकिन बरगद का पेड़ खड़ा रहा, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत अंदर तक गई थी। और इसी बरगद के पेड़ के नीचे सारे गांव वालों को सहारा मिला। हमारे बड़े बूढ़े इस बरगद के पेड़ की तरह होते हैं, उनके अनुभव की जड़ें जिंदगी में बहुत अंदर तक गई होती हैं, इसीलिए वो हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। मुझे याद है जब मेरी कभी भी लड़ाई किसी से होती थी तो मेरी दादी कहती थी, हमेशा जाकर माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। उस समय मुझे वो बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज मुझे यह समझ में आ गया है कि माफ़ी मांगने से आदमी को बड़प्पन ही मिलता है, और यह बड़प्पन हमारे बड़े बूढ़े हमेशा से हमें सिखाते रहते हैं। सोचिए तो आपके दादा दादी आपको क्या सिखाते हैं। मेरी दादी तो ये सिखाती थी कि माफ़ी मांग लो, हमेशा लोगों को माफ़ करना सीखो। वह हमेशा कबीर के दोहे गाकर मुझे बताया करती थी, और एक दोहा उनमें से था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो बड़ा ऐसा हो कि जो छाया दे, जो अनुभव दे, और हम उनके अनुभव ले पाएं। आज अपने दादा दादी नाना नानी से ज़रूर पूछिएगा कि वो आपको अपने अनुभव से क्या सिखाना चाहते हैं। तो इसी कहानी के साथ आज की यह बाल सभा खत्म करते हैं। आशा करते हैं आपको यह बाल सभा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, कुछ नया सीखने। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
0: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा। आज का विषय था बुजुर्गों की बातें और बड़प्पन। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया ज्योति पांडे ने।
1: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए।

0: खिड़कियों पर टैक्स और चाय, एक विचित्र ऐतिहासिक सौदा। क्या आप जानते हैं कि एक प्याली अच्छी चाय के लिए ब्रिटिश प्रेम ने एक समय उनके घरों में आने वाली सूरज की रोशनी पर टैक्स लगवा दिया था। यह किसी काल्पनिक कहानी जैसा लगता है, लेकिन 1784 में यह ब्रिटिश राजकोषीय प्रणाली की एक कठोर वास्तविकता बन गई थी। इस कहानी के केंद्र में थी ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी और तस्करी की एक बहुत बड़ी समस्या, जो कंपनी के मुनाफे और राष्ट्रीय खजाने दोनों को बर्बाद करने की धमकी दे रही थी। क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी के अंत तक चाय कंपनी के व्यापारिक खाते की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु बन गई थी। चाय ने कंपनी के व्यापार में उसी तरह क्रांति ला दी थी जैसे पिछली सदी में कपास ने लाई थी। हालांकि इसमें एक बड़ा पैंच था। ब्रिटिश सरकार ने चाय पर भारी शुल्क लगा दिया था, जो 79% से लेकर 127% तक था। क्या आप जानते हैं कि इन ऊंचे करों का परिणाम क्या हुआ? चूंकि चाय इतनी महंगी थी, इसलिए इंग्लैंड में पी जाने वाली आधी से अधिक चाय कंपनी के यूरोपीय प्रतिद्वंदियों द्वारा देश में तस्करी करके लाई जा रही थी। इससे कंपनी के गोदाम लाखों पाउंड महंगी चाय से भर गए थे, जिसे कोई खरीदने को तैयार नहीं था। क्या आप जानते हैं कि विलियम पिट द यंगर ने इस संकट को कैसे हल किया? उन्होंने 1784 का ऐतिहासिक कंप्यूटेशन एक्ट पेश किया। इस कानून के पीछे का तर्क सरल लेकिन साहसी था। यदि सरकार चाय पर टैक्स कम कर दे तो तस्करों का मुनाफा खत्म हो जाएगा और जनता वापस कंपनी से कानूनी चाय खरीदने लगेगी। पिट ने चाय शुल्क को 100% से घटाकर मात्र 12.5% कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर के मालिकों के लिए इसमें क्या पैंच था? ब्रिटिश सरकार उस टैक्स राजस्व को पूरी तरह नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि यह राजस्व की वित्तीय स्थिति के लिए अनिवार्य था। चाय राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए पिट ने टैक्स को एक ऐसी विलासिता से हटाकर, जिसे आप पीने या ना पीने के लिए चुन सकते हैं, एक ऐसी चीज पर डाल दिया जिससे घर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता था, उनकी खिड़कियां। यही कुख्यात विंडो टैक्स की उत्पत्ति थी। यह शाब्दिक रूप से रोशनी और हवा पर लगने वाला टैक्स था, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था कि चाय का व्यापार कंपनी और क्राउन यानी राजसत्ता दोनों के लिए लाभदायक बना रहे। क्या आप जानते हैं कि यह अदला बदली ही वह गुप्त इंजन था जिसने कंपनी के बाद के वर्षों को शक्ति दी? 1784 के इंडियन एक्ट के माध्यम से भारत में अपनी प्रशासनिक स्वतंत्रता का त्याग करने के बदले में कंपनी को चीन में यह विशाल व्यावसायिक अवसर दिया गया। क्या आप जानते हैं कि यह कितना सफल रहा? इसने उम्मीद से कहीं बेहतर काम किया। 1830 तक अकेले चाय शुल्क से ब्रिटिश खजानों को सालाना 30 लाख पाउंड से अधिक मिल रहे थे, जो पूरे देश के राजस्व का लगभग 10वां हिस्सा था। क्या आप जानते हैं कि खिड़कियों पर लगने वाले इस अजीब टैक्स के बिना ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास अलग तरीके से लिखा गया होता? कम शुल्क के कारण चीन में चाय का व्यापार की सफलता ने वास्तव में भारत भर में कंपनी के महंगे होते जा रहे सैन्य अभियानों को वित्त पोषित करने में मदद की। यह इस बात की याद दिलाता है कि कंपनी का अस्तित्व अक्सर युद्ध के मैदान में होने वाली घटनाओं से अधिक एक चायदानी में उबल रही चीज पर निर्भर करता था।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 आजाद हिंद रेडियो में आपका स्वागत है। ये है टेक गुरु प्रोग्राम। एक सफलता की कहानी आई है भोपाल के ईदगाह हिल स्थित सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। शिक्षिका श्रीमती एकता सरीन बन गई हैं मध्य प्रदेश की पहली गूगल सुपर सर्चर। उन्हें गूगल इंडिया ने उनके पहल के लिए गुरुग्राम में अपने कार्यालय में आमंत्रित किया। चलिए उनसे जानते हैं कि गूगल सुपर सर्चर क्या है। नमस्ते एकता सरीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आजाद हिंद रेडियो में।
1: नमस्ते शिवानी जी।
0: सबसे पहले जो हम आपसे पूछना चाहेंगे वो ये है कि आखिरकार सुपर सर्चर क्या है।
1: सुपर सर्चर्स एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव टेक प्रोग्राम है। जानकारी के लिए आई थिंक हम हर दिन गूगल का इस्तेमाल करते हैं, गूगल का यूज करते हैं, गूगल पे डिफरेंट सर्च करते हैं
0: जी।
1: गूगल का काम है जानकारी देना, उनका लक्ष्य है जानकारी देना, लेकिन क्या वो जानकारी सही है या गलत है ये जानना हमारा काम है। सुपर सर्चर गूगल इंडिया का एक इंफॉर्मेशन टेक प्रोग्राम है जो कि स्टूडेंट्स के डिजिटल परिदृश्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। किस तरह से उनको क्या सर्च करना चाहिए, क्या फेक है, क्या रियल है
0: जी,
1: ये हम इस प्रोग्राम के जरिए बताते हैं। आज हर कोई इंटरनेट पे एक्टिव है, जानकारी के लिए विश्वसनीय स्रोतों का हम इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं जानते कि क्या वो जानकारी जो हमें मिल रही है जो वेबसाइट्स पे है, क्या वो ठीक है या वो गलत है। इस ट्रेनिंग में हम एजुकेशन देते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, और उनको ये बताते हैं कि ऑनलाइन उनको क्या प्राप्त करना चाहिए, उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, उनका किस तरह से मूल्यांकन किया जा सकता है, क्या फेक है, क्या रियल,
0: क्या सही है।
1: दिस इज ऑल अबाउट सुपर सर्चर्स प्रोग्राम।
0: तो आप एक ट्रेन्ड करियर कोच हैं एकता सरीन जी, लैंग्वेज ट्रेनर हैं, तो आप कैसे एक सुपर सर्चर बनी इसके बारे में बताइए।
1: भले ही मैं डायरेक्टली आईटी से लिंक नहीं हूँ, बिकॉज एज ए लैंग्वेज टीचर, एज ए एजुकेटर, एज ए काउंसलर, हम अक्सर गूगल का यूज करते हैं। सो एक बार गूगल इंडिया की तरफ से इंटरनेट ऑसम, बी इंटरनेट ऑसम 2022 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिस टाइम पे जो एजुकेटर्स के लिए ओपन था, जिसमें हमको ट्रेनिंग लेना था और फिर आगे ट्रेनिंग देना था। तो मैंने ये काम किया, मैंने उनके साथ ट्रेनिंग ली और इस तरह से मैं गूगल इंडिया के साथ कनेक्ट हुई। मेरी तरह बहुत से एजुकेटर्स हैं जो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज से थे, जो पोलैंड से हैं, यूएस से हैं, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स से हैं। इस तरह से बहुत सारे एजुकेटर्स इस सेम प्लेटफॉर्म पे आए और हमने ट्रेनिंग लिया और आगे बच्चों को एजुकेट किया। इस तरह से आई बिकेम अ बी इंटरनेट ऑसम, जो मुझे गूगल से अवार्ड मिला, और उसी तरह से ग्रेजुअली मैं सुपर सर्चर्स की डायरेक्शन में पहुंची, और दैट इज हाउ आई वाज invited in Google India office at Gurugram।
0: चलिए तो बहुत ही अच्छी बात है सरीन जी कि आप भी इंटरनेट ऑसम बन गई हैं, लेकिन आप हमें ये बताइए कि हम कैसे बने इंटरनेट ऑसम।
1: इट्स अ ग्रेट आइडिया। आई थिंक हम सबको आज के जमाने में जब हम गूगल का यूज करते हैं, जब हम इंटरनेट पे हैं, तो आई थिंक हम सबको ऑसम बनना, भी इंटरनेट ऑसम की स्टेटमेंट के साथ फ्लो में आना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखिए, बी इंटरनेट ऑसम का मतलब ये होता है कि आप जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ आप देख रहे हो, क्या वो ठीक है या वो नहीं है, क्या वो फेक है या वो नहीं है, तो हम उसको कैसे पता लगाएं
0: जी।
1: इसी तरह से हम बच्चों को अवेयर करें कि आप जो देखते हो बेटा, हम प्रोजेक्ट्स देते हैं बच्चों को, हम उनको रिसर्च वर्क करने के लिए देते हैं। जैसे मेरा एक एग्जाम्पल मैं लूंगी बच्चों को, क्योंकि एजुकेटर हूं मैं, तो बच्चों को मैंने एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि आपको एक डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है एंड दिस इज योर टॉपिक। आप बिलीव नहीं करोगे हर बच्चे का सेम टॉपिक था, क्योंकि उन्होंने नेट से
0: देख लिया
1: और उसको कट एंड पेस्ट करके लेके आ गए।
0: हाँ।
1: तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि ठीक है, आप इंटरनेट का यूज करते हो, लेकिन मेक श्योर कि आप साथ में बुक्स का भी यूज करो, जिससे आपके कोटेशंस, आपका मैटर कहीं ना कहीं डिफर करे। आप पेरेंट्स से डिस्कस करो, आप जीडीस करो, तो आपका टॉपिक बेटर इम्प्रूवमेंट के साथ आएगा और वो कट एंड पेस्ट वाला नहीं होगा।
0: ये आपने बहुत सही कहा कि ग्रुप डिस्कशंस कितना जरूरी है, ताकि हम समझ सके, सोच सके, उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर सके, तब जाके एक आत्ममंथन के साथ, एक इमेजिनेशन के साथ हम कुछ लिख सकते हैं, वरना
1: क्रिएटिवली हम प्रेजेंट
0: कर सकते हैं।
1: Exactly,
0: नहीं तो एआई टूल्स ऐसे आ गए जहाँ पे हम डिपेंडेंट हो गए उन चीजों पे, तो इस तरीके से आप स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं।
1: हाँ जी, स्टूडेंट्स को बताना होता है कि बेटा देखो, कई बार बच्चे ऐसा भी होता है कि कुछ भी आप देख रहे हो, किसी पे भी आपने कुछ भी कॉमेंट कर देते हो, किसी की सेल्फी देखी, आपका पर्सनल कुछ किसी बच्चे से कुछ एनमिटी है या आपको पसंद नहीं है वो बच्चा, तो आपने उसकी सेल्फी देख पे उस पर कुछ गलत सा कॉमेंट कर दिया, तो उनको ये भी बताना बहुत जरूरी होता है कि बेटा व्हेन यू आर ऑन नेट यू शुड बी वेरी पार्टिकुलर विद योर लैंग्वेज. हमारी वैल्यूज जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में जरूरी है, वैसे नेट पे भी वैल्यूज होना बहुत जरूरी है. उनको अगर आप ठीक से गाइड करोगे वो बच्चा आपके पास आएगा, आपसे शेयर करेगा. और मुझे पेरेंट्स से भी मेरा यही रिक्वेस्ट होता है कि जो आपके साथ में डे टू डे हो रहा है बच्चे से शेयर करते रहिए, क्योंकि आपकी लाइफ स्किल्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. उनको समझ में आता है कि क्या उनको करना चाहिए और क्या उनको नहीं करना चाहिए. सो जो बी इंटरनेट ऑसम है, इट्स अ कंप्लीट प्रोग्राम जिसमें हम बताते हैं कि बच्चे को इवन इंटरनेट पे भी यू हैव टू बी काइंड, इंटरनेट पे भी यू हैव टू बी ब्रेव. सो बी इंटरनेट काइंड, बी इंटरनेट ब्रेव, शेयर विद केयर. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नेट पे हो डजंट मीन कि आपके मर्जी में जो आएगा वो आप बोलोगे. बी विल सॉफ्ट, क्योंकि हो सकता है कल कोई आपके लिए कॉमेंट करे जो शायद आपको पसंद नहीं आएगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस चिल्ड्रन गेट इनटू बिग ट्रॉमेटिक कंडीशंस.
2: ये आपने बहुत सही बात कही है, हमें भी एहतियात बरतनी है एज पेरेंट्स की क्या देख रहे वो लोग क्या नहीं देख रहे. लेकिन इंटरनेट पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है. जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फेक न्यूज, फेक विज्ञापन, इनसे हम कैसे बच सकते, कैसे पता चल सकता है कि ये एक फेक न्यूज है.
1: इसका मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी इस बात को कि अक्सर आपने एक, मैंने बच्चों के साथ क्लास में एक एक्टिविटी करा, बिकॉज इस प्रोग्राम में हम बहुत सारी एक्टिविटीज भी करते हैं. तो बच्चों को मैंने बोला कि ठीक है आपको किसी चिप्स का एक एड हम लोग देखते हैं, कि आप ये चेक करो कि कोई चिप्स ऐसा अवेलेबल है जिसका जलेबी फ्लेवर है. जस्ट गो एंड चेक
2: चिप्स का जलेबी फ्लेवर.
1: लाइक इट वॉज द सेम, जैसे आपने रिएक्ट किया बच्चों ने भी ऐसे रिएक्ट किया. मैं कहा पहले हम चेक करेंगे, क्योंकि इंस्टेंटली हम येस और नो ना बोल के एक बार चेक करते हैं, अपने आप चेक करना है. तो हम लोग कंप्यूटर रूम में थे, बच्चों ने चेक किया, उनको पता चला कि हाँ एक जलेबी फ्लेवर है. तो बच्चों ने बोला यस, तो मैं कहा ठीक है अब इसका हमें चेक करना है. तो दोस थ्री डॉट्स उसको चेक करके देखो, वहां पर जाओ चेक करो कि वो फेक है या वो रियल है. तो उनको पता चला कि अच्छी जो जलेबी फ्लेवर तो है, लेकिन वो एक जस्ट एक प्रैंक था जो कि सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट की तरह उसको पेश किया गया था ऑन 1st अप्रैल फूल्स डे कि हम ये फ्लेवर लेके आ रहे हैं. तो जिस उस कंपनी ने एक एड लॉन्च किया था, से बच्चों को पता चला कि दिस वाज अ फेक न्यूज. सिमिलरली एक ऐसे ही एक न्यूज थी, मैंने बच्चों को उसके लिए भी बताया कि एक आपका एक शिप ग्राउंडेड एट द मरीन बीच इन बॉम्बे. तो बच्चे कहते हाउ कैन दिस हैपन, मतलब एक शिप, इतनी बड़ी शिप मरीन बीच पे ग्राउंडेड कैसे हो सकती है. लेकिन जब बच्चों ने क्रॉस चेक किया, अभी आप भी अगर ये गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि 2011 में एक ऐसी शिप थी जो ग्राउंडेड हो गई थी. और वो काफी टाइम तक वहां पर थी. तो मेरे पास उस टाइम पे मुंबई की ऑडियंस थी और मुंबई के कुछ एजुकेटर्स थे, उन्होंने ये बताया मुझे कि यस मैम इट्स अ ट्रू न्यूज इट हैपेंड इन मुंबई कि ऐसा हुआ था. तो कुछ चीजें ऐसी होती हमें साउंड करती हैं कि वो गलत ही हैं या वो सही ही हैं, लेकिन जब हम उसको चेक करते हैं तो डोंट गो इमीडिएटली जब आप गूगल सर्च करते हो. तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या फेक है क्या रियल है. विद दैट यू कैन ऑलवेज चेक आउट ऑन दोस थ्री डॉट्स टू लेट अस नो वेदर इट्स फेक न्यूज और अ ट्रू न्यूज.
2: एक तो सरीन जी, अब अगला प्रश्न मुझे ये आ रहा है कि गूगल में वर्ड सर्च का भी कोई तरीका है क्या.
1: ये आपने बहुत अच्छी बात करी शिवानी जी. यहाँ मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल देती हूँ. मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है.
2: अच्छा.
1: तो मैं एक बार वॉशरूम में थी और एक छिपकली मुझे वहां नजर आए. तो मुझे लगा मैं छिपकली को मुझे भगाना है, मैं क्या करूं. तो मेरे को था कि घर में कुछ चीज मिल जाए, मिर्ची विर्ची पाउडर, और मैं डाल दूं और छिपकली चली जाए. तो मुझे समझ नहीं आया, फिर मोबाइल उठाया, उसमें सर्च किया, उसमें वर्ड टाइप किया लिजर्ड DIY. अब उसमें जो रिजल्ट्स आए, विल यू नॉट बिलीव दैट आउट, उसमें आया कि हाउ टू मेक अ लिजर्ड आउट ऑफ अ कार्डबोर्ड.
2: ओ,
1: तो मुझे तो चाहिए था कि मुझे लिजर्ड को भगाना
2: कैसे
1: है? या तो हो जाएगा कि और सारी लिजर्ड्स मुझे डेवलप करनी है कि आई कैन डेवलप सो मेनी लिजर्ड्स आउट ऑफ अ कार्डबोर्ड. तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप क्या वर्ड टाइप कर रहे हो जिससे आपको एग्जैक्टली डालना है, मुझे क्या डालना चाहिए था उस टाइम पे मुझे, जिससे मैं उस लिजर्ड को भगा पाऊं. तो मेरा होना चाहिए था कि हाउ टू गेट रिड ऑफ द लिजर्ड, लेकिन मैंने क्या डाला उसको, हाउ टू लिजर्ड DIY. तो ये वाला चीज हुई. तो मैंने इस चीज को लेके भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्या डालते हैं. तो गूगल में जब

0: किस तरह से आपका कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, दिस इज मिक्स ऑफ एवरीथिंग.
1: ओके,
0: सो मैं बच्चों को एक एक बड़ा वे बताती हूँ. जैसे हमारा एक एक सॉन्ग है, I'm a Barbie girl in the Barbie world. तो आप इसका सबका फर्स्ट इनिशियल ले लीजिए. That becomes one password for you. क्योंकि आपको पता है वो आपका ये सॉन्ग
1: है. ये सही तरीका है.
0: So this can be a way out है कि हमारा एक सॉन्ग भी हो गया और साथ में हमने बीच में जहां भी हमको चाहिए हमें अपर केसेस ले लिए, लोअर केसेस ले लिए और बीच में हमने कहीं ना कहीं हैश टैग्स या अपने अंडरस्कोर डाल दिया. That becomes you know, because बच्चों को हमेशा होते हैं बच्चे अपने एड्रेस या बर्थडेज या फादर्स नेम या मदर्स नेम लेते हैं जो इज वेरी वेरी रॉन्ग. तो उनको बताना बहुत जरूरी होता है. दिस कैन बी अ वे ऑफ साइबर बुलिंग ऑल्सो. सो आप कोशिश कीजिए कि अपना पर्सनल डिटेल्स कभी भी अपने पासवर्ड में यूज मत कीजिए. इट्स लाइक अ लॉक, इट्स लाइक अ डोर विच कैन बी ओपन एनी टाइम. अपने घर बंद करने से पहले आप चार बार चेक करते हो कि लॉक है कि नहीं. तो नेट इज ऑल्सो लाइक दिस. सो मेक श्योर कि आप जो भी पासवर्ड यूज कर रहे हो शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड.
1: ये आपने सही तरीका बताया बार्बी गर्ल सॉन्ग से. और ये भी हमें समझ में आया कि कितना इजिली एक्सेसिबल रख देते हैं बच्चे अपने पासवर्ड्स को. तो बहुत ज़रूरी है हम ऐसे कॉमन चीज़ें, एड्रेस हुआ, माता पिता का इंट्रोडक्शन हुआ, ये सब ना डालें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को रखें. तो ये बहुत अच्छी बात है. आजकल देखा जाता है एकता जी कि क्लासरूम्स में भी इंटरनेट है, AI की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो कैसे हम वहाँ पर एहतियात बरत सकते हैं?
0: आई थिंक यहाँ पे फिर बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि देखिए स्मार्ट बोर्ड्स हर जगह आ चुके हैं, AI ऑलमोस्ट हर उसमें एंटर कर चुका है. तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो यूज़ कर रहे हो, जो आप AI का इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें किस तरह के आप वर्ड्स का यूज करो.
1: ओके,
0: आपका मैक्सिमम पर्पस क्या होना चाहिए. टीचर्स उस टाइम एजुकेटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है यहाँ पर. कि आप बच्चों को उस टाइम अवेयर कीजिए कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हो तो बच्चों को बताइए इस पर्टिकुलर साइट पे आप जा सकते हो. दिस शुड नॉट बी ओपन टू एवरीथिंग आउट. ChatGPT या BARD का यूज वो कर रहे हैं तो उनका अपना क्रिएटिविटी कैसे खत्म होता है. तो डोंट लेट देम गिव अ चांस फॉर दैट. करें वो इस्तेमाल करें उसका, लेकिन उनको साथ में बोलिए बुक्स का यूज, लाइब्रेरी का यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिससे ग्रुप में जब हम ये प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास वैरायटी आएगी. नहीं तो वो सिमिलर चीज लेके आते हैं तो उनको आप वहां पे हाईलाइट कीजिए कि बेटा आपने ChatGPT का यूज किया है यहाँ पर. तो जब बच्चे को एक बार आप हाईलाइट कर देते हो तो बट ऑब्वियस उसको हम साइडलाइन कर सकते हैं, समझा सकते हैं. क्योंकि इस टाइम पे इस एज में उनको गाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेटर्स का जॉब है और डेफिनेटली घर में पेरेंट्स का जॉब है.
1: थोड़ी देर पहले आपसे SIFT के बारे में बात हो रही थी, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएंगे कि क्या है SIFT.
0: SIFT actually is being developed by Mr. Mike Colfi. जो कि एक एक्सपर्ट है, इन्होंने इसको डेवलप किया है. ये भी आपका सुपर सर्चर्स का प्रोग्राम था
1: जी.
0: तो S stands for stop. स्टॉप का मतलब क्या, सपोज आप एक आरजे हो, आपके पास कल एक कॉल आता है दुबई से कि शिवानी तुम्हारी आवाज सुनी, इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल वॉइस, और दुबई में एक जस्ट सेंड मी योर CV और तुम्हारा जॉब तो बिल्कुल फाइनलाइज है, प्लीज कम ओवर. आपको बड़ा अच्छा साउंड करेगा, बट प्लीज चेक द सोर्स, चेक द पर्सन आउट कि कौन ये इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है. तो स्टॉप इज दैट, स्टॉप. हम बहुत जल्दी से यू नो फ्लो में आ जाते हैं, जो आजकल की जनरेशन का मेजर प्रॉब्लम है कि आपने कुछ सुना, आपका हाँ मेरे को भी अप्लाई करना है. तो बिफोर सेंडिंग योर CV जस्ट स्टॉप एंड थिंक. उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस सोर्स से आ रहा है क्या वो ठीक है क्या वो गलत है. सेकेंड इज आई इज इन्वेस्टिगेट द सोर्स.
1: इन्वेस्टिगेट,
0: सो इन्वेस्टिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे पास जिस सोर्स से आया है हम इजिली उसको चेक कर सकते हो कि आप पूछ सकते हो किस कंपनी में है ये, किस रेडियो स्टेशन में है, ठीक है. Would love to come over to Dubai, लेकिन let me know about the details. So आप investigate कर सकते हो और अपने level पे कर सकते हो very easily. Third comes is F. F is find better coverage. You can always find out because everything is available. Is it right? Is it wrong? कितना fake है, कितना true है? Because suddenly कोई आपकी आवाज सुन के आपको as a RG invite नहीं कर सकता. So let's find out क्या उसके पीछे. और ऐसे बहुत लोग होते हैं जो पैसे दे देते हैं और आप जब जाते हो तो कुछ भी नहीं होता वहाँ पे. इस कारण बहुत ज्यादा आपके साथ में hoax calls होते हैं, right? This is something to very much understand and get the reality. Again, T stands for tracing the claims. This is usually done by the government, जो आपकी government की sites होती है वो primary होता है. ये secondary के level पे हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर हमको इसकी जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती. But as a secondary source, हमको ये पता करना होता है कि क्या वो government site थी जहाँ से हमारी information आया, तो it can be true. But if it was something which was something कोई business purpose से वो हुआ, तो let's check it out whether that was a right claim or a wrong claim.
1: बिल्कुल सही। तो SIFT के बारे में हमें पता चला, तो आप हमें बताइए एकता जी, टिप्स टू बिकम सुपर सर्चर, आखिरकार हम कैसे बन सकते हैं, ये इसके बारे में बताइए।
0: टिप्स कैन बी, वी हैव अ क्विक टिप्स अबाउट इट कि क्या कर सकते हैं हम एज अ सुपर सर्चर। सो पहली चीज तो है हमको सर्च बाय वॉइस, जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे आजकल के बुजुर्ग है उनको टाइपिंग करना में बहुत मुश्किल होता है।
1: जी
0: ऑलवेज सर्च By the voice. आप जैसे भी आप सर्च करोगे, कुछ भी आप बोलोगे, इमिजिएटली आपको आपका वॉइस आपको ट्रेस कर लेती है। और अभी दिस थिंग नॉट इज वेरी मच अवेलेबल ऑन योर मोबाइल्स, वेरी वेरी इजीली आपको उसको अपलोड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज सर्च बाय इमेजेस, हम इमेज से भी इजीली सर्च कर सकते हैं कहाँ हमें जाना है, कैसा करना है। सिमिलरली गूगल लेंस, गूगल लेंस आपको बहुत हद तक हेल्प करता है। सपोज मैं कहीं ट्रेवल कर रही हूँ और मुझे कोई रेस्टोरेंट दिखता है और मुझे चाहिए कि वो रेस्टोरेंट इज सर्विंग व्हाट, उनका मेन्यू कार्ड में क्या है, क्या ये मुझे सूट कर रहा है, डू आई वांट टू गो देयर। सो आई कैन ऑलवेज गूगल लेंस के थ्रू मुझे उनका पूरा मेन्यू कार्ड मिल सकता है, उसके थ्रू मैं जा सकती हूँ क्योंकि ये रेस्टोरेंट मेरे लिए है विदाउट इवन स्टेपिंग इन द रेस्टोरेंट। दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली रियली हेल्पफुल। आपके QR कोड्स, आपकी इमेजेस, इवन सपोज आपको कोई परफ्यूम गिफ्ट करता है। रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ था,
1: अच्छा,
0: मुझे किसी ने परफ्यूम गिफ्ट किया, कोई जापान से आया था, बट नाउ मुझे उस लैंग्वेज को समझ में नहीं है बिकॉज आई डोंट नो जापानीज। सो मैंने गूगल लेंस के थ्रू उसको चेक किया, अपनी लैंग्वेज में उसको डाला कि आई वांट टू सी इन हिंदी कि क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर, मुझे पता चला उसके डायरेक्शंस कैसा यूसेज है उसका। तो इवन दिस कैन बी डन वेरी इजीली बाय गूगल लेंस। सो वी कैन डू द रेगुलर थिंग्स एंड दैट हाउ यू कैन बिकम अ सुपर सर्चर फॉर श्योर।
1: ओके, तो एकता जी आप हमें बताइए कुछ क्लेम सोर्सिंग के बारे में, ट्रेसिंग के बारे में, इसके बारे में हम कैसे कर सकते हैं।
0: सी, इसका बहुत सारा वेज हो सकता है कि आपका जो डिफरेंट वेज होते हैं जब हम सोर्सेस पे जाते हैं, जब हम डिफरेंट क्लेम्स देखते हैं, तो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। हमारी कुछ साइट्स हैं जो हमेशा आपको विच यू कैन जस्ट ऑलवेज रिलाई अपॉन, देयर आर सर्टेन साइट्स जो हमेशा जो गवर्नमेंट की साइट्स होते हैं, जैसे सपोज आपके आजकल रिजल्ट आ रहा है, बोर्ड के बच्चे अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या होगा, वो किस साइट पे जाए। जैसे आप खोलते हो बोर्ड रिजल्ट्स, यू विल फाइंड सो मेनी साइट्स टेलिंग यू आउट, बट बेस्ट टू गो टू .cbse which will give you the exact right thing out ki this is what the things are. So jo bhi aap information dete should be on a government site, and government sites are there which will give you the right information about. So there can be certain sites which one can rely upon and how we can just go about. So these are few domains like .gov, nic.in, education is edu.in, .org, .ac.in. So these are few sites which are reliable, जहाँ पे आपको कभी भी आप गलत नहीं होगे, और they can be always the right sides for you.
1: आजकल एकता जी क्या हो रहा है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग बहुत प्रचलित है, और ऐसा भी होता है कभी कभी वीडियो कॉलिंग आ जाता है, आपको कहीं से हेलो हो जाता है और वहां से कुछ वापस आवाज नहीं आती या कोई गंदी बात शुरू हो जाती है, तो ऐसे स्कैम से भी हम कैसे बच सकते हैं।
0: आई थिंक पहले तो बहुत जरूरी है आपका सेफ सर्च, सेफ सर्च ऑप्शन आई थिंक हमारे पास अवेलेबल होता है, क्योंकि मैं बोलूंगी घर में हम सब, घर में बच्चे भी हैं जो सेम लैपटॉप यूज करते हैं या सेम डेस्कटॉप यूज कर रहे होते हैं, सो डेफिनेटली अपना सेफ सर्च का ऑप्शन हमको ओपन करके रखना चाहिए। उसमें हमेशा क्या होता है कि आपका फिल्टर्ड हो जाता है, जो भी सेक्सुअल फिल्म्स आ रही हैं या नोटिफिकेशन आ रहे हैं या इवन कुछ वायलेंस से लिंक जो चीज आती है, वो ऑटोमेटिकली फिल्टर होके आएगी, तो वो बच्चों के रीच तक नहीं रहेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली आपके पास कहीं से भी कुछ कॉल आता है और वो वीडियो कॉल आ रहा है, सो मेक श्योर अपने कैमरे पे अपना थंब प्रेस करके जरूर रखिए, जिससे आपका कोई भी वीडियो सामने तक ना पहुंचे जहां से भी कॉल आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल गलत नंबर जो आपके पास सेव नंबर नहीं है उसको आपको रिसीव ही नहीं करना चाहिए। फिर आगे गेमिंग की बात, गेमिंग के साथ भी आई थिंक हमको बहुत क्लियर होना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों को गाइडेंस देते रहना चाहिए कि क्या जरूरी है। कई बार बच्चों को स्टेप्स मिलते हैं कि इसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल ये रहेगा, आपको ये करना है, ये चैलेंजेस आपको एक्सेप्ट करने हैं, सो आस्क देम टू स्टॉप देयर, बिकॉज कई कई गेम्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को उनके उनके पर्सनालिटी के लिए, उनके पर्सनालिटी को डेवलप करने की जगह उनको ऑल डिप्रेशन में ले जाते हैं, जो आप अक्सर बच्चों को देखते रहते हो। तो टीनेजर्स के साथ बहुत जरूरी है कि उनको हमको वहां पर स्टॉप करना चाहिए, स्टॉप जो आपका सेव बटन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि उनको जरूर पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सेफ सर्च का बटन हमेशा ऑन रखें।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई सेफ सर्च के बारे में कि कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट हो गया है ये। और वैसे देखा जाता है साइबर बुलिंग का बुरा प्रभाव होता है, इससे प्रभावित लोगों को कैसे मदद मिल सकती है जो इससे प्रभावित हो चुके हैं। अब
0: देखिए साइबर बुलिंग एक तरह का, जैसे आप रेगुलर डेज में इतने बच्चों का रैगिंग होता है या बुलिंग होता है, साइबर बुलिंग भी उससे वर्स चीज है।
1: क्या है ये साइबर बुलिंग बेसिकली?
0: देखिए साइबर बुलिंग में क्या है, आपने कोई पिक डाला, एक इट्स वेरी वेरी वेरी कॉमन एग्जांपल, बच्चे अपनी पिक्स अपलोड करते रहते हैं, तो बच्चों की पिक पे बच्चे उसके बाद कॉमेंट्स भी देखते हैं। बच्चे जब कमेंट्स देखते हैं तो हर तरह के कमेंट्स आ सकते हैं, हो सकता है आपको 4 अच्छे कमेंट आए तो 10 खराब कमेंट्स भी आ जाएं। उसके बाद जो उनको गलत कमेंट दे रहे हैं उससे लिंक भी लोग जुड़ जाते हैं, तो बच्चा को किसी तरह से भी पुट डाउन किया जा सकता है। अभी तो आप रियल लाइफ में हम ये बात करें, साइबर बुलिंग चल रहा है, बस उसको आप बच्चे क्लासरूम तक अपने ग्रुप्स तक भी लेके चले जाते हैं, तो बच्चे का कई बार घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है कि मेरे साथ साइबर बुलिंग हो रही है, कॉन्स्टेंटली कोई मुझे वॉच कर रहा है, कॉन्स्टेंटली मुझे कोई गलत कॉमेंट कर रहा है, ग्रुप में उसको सबके सामने इंसल्ट कर रहे हैं, लुक्स अच्छे नहीं, आपके लिप्स बहुत मोटे हैं, यू डोंट लुक लाइक गुड at all, you are not worth, आपका हेयर स्टाइल आपको सूट नहीं करता, आप एक ऐसा ड्रेस पहन के आए हो, तो इस एज में ये छोटी छोटी चीजें बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं बच्चे, और बच्चे पब्लिक आने को तैयार नहीं होते हैं, उनका सोशल लाइफ जीरो हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लेट्स टॉक देम आउट, और पेरेंट्स को भी अप्रोचेबल होना चाहिए, अगर बच्चा आपको लग रहा है उनके सिम्टम्स की बच्चा लोगों से मिलने को तैयार नहीं है, आपके घर में कोई आ रहा है बच्चा बाहर आने को तैयार नहीं है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, सो लेट्स टॉक टू अ चाइल्ड। अगर बच्चे से बात करेंगे तो डेफिनेटली अ चाइल्ड शुड ऑल्सो बी आस्क्ड टू गो टू अ काउंसलर, गो टू अ एजुकेटर, जिससे आप कंफर्टेबल हो, स्पीक इट आउट, तो दिस इज वी कॉल यू आर ब्रेव, आप ब्रेव हो इसलिए आप आके बात कर रहे हो, सो टॉक इट आउट। जब हम बात करते हैं तो बहुत हद तक चीजें क्लियर हो जाती हैं, और अगर आपको लगता है कि किसी को आपको ब्लॉक करना है तो प्लीज डू दैट, उसमें हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं,
1: बिल्कुल,
0: है। कई बार बच्चे इस बात से भी घबराते हैं कि अगर मैंने ब्लॉक करा तो
1: क्या होगा,
0: हाउ विल द थिंग्स कम टू अस, तो इट्स इंपॉर्टेंट आप ब्लॉक कर सकते हो, जिप इट आउट, यू नो, कंप्लीटली जिप अ पर्सन आउट, ब्लॉक इट आउट एंड फ्लैग इट आउट, दिस इज थ्री थिंग्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग साइबर बुलिंग, कि वन शुड नो अबाउट इट, एंड बच्चों को हमें ट्रेन करना बहुत जरूरी है। इस प्रोग्राम के थ्रू हर एजुकेटर को और हर पेरेंट्स को जुड़ना चाहिए।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। जैसे कि हम एहतियात बरत सकते हैं इन चीज़ों से कि हम साइबर बुलिंग की ओर ना जाए, या कैसे उस डिप्रेशन से बचा जा सकता है, कैसे हम पहले अवॉइड कर सकते हैं ऐसे सिचुएशंस कि हम साइबर बुलिंग की ओर जाए ही ना, उससे हम प्रभावित ना हो, लेकिन कोई ऐसी जगह है जहां हम शिकायत कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में? जैसे आपने बताया ब्लॉक कर दीजिए, वो एक मेथड है, लेकिन क्या कहीं शिकायत भी दर्ज की जा सकती है?
0: डेफिनेटली यस, साइबर स्टेट्स के सेशंस रहते हैं, आप डेफिनेटली गो एंड कंप्लेन ओवर देयर, इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है, वन शुड गो एंड informed directly there, तो उनके पास इस तरह की complaints आती हैं और वो action भी लेते हैं।
1: एक तो सरीन जी, कोई message जो आप श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं बताइए।
0: मैं यहाँ पे एक quote से end करना चाहूंगी, that internet gives us the access to various things, right? It's just one click, but you have to be wise, you have to be internet awesome, so definitely you will be the super surgeons.
1: तो श्रोताओं, आपको समझ में आया कैसे हम गूगल सर्चर बन सकते हैं, बी इंटरनेट ऑसम बन सकते हैं, एकदम एकता सरीन जी की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद शिवानी जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके और अपने लिसनर्स से बात करके।
1: जी, तो आप सुन रहे हैं टेक गुरु प्रोग्राम, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: टेक गुरु कार्यक्रम में आज का विषय था गूगल सुपर सर्चर। इस कार्यक्रम में हमने आपको मिलवाया गूगल सुपर सर्चर एकता सरीन से। इसके साथ ही हमारा आज का टेक गुरु कार्यक्रम संपन्न होता है।
3: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज का विषय है भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। आज हम इस कार्यक्रम का छठवां भाग सुनेंगे। जानकारी दे रहे हैं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत करेंगी पूर्वा खले।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को और सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। भारतीय सेना को इतिहास के झरोखे से झांकते हुए कार्यक्रम की उन कड़ियों पर हमारी नजरें हैं जहां सन 1971 के युद्ध को हमारा देश जीत चुका है और केवल 14 दिनों की लड़ाई में विश्व पटल पर भारतीय सेना ने भारत को एक मजबूत और सुदृढ़ राष्ट्र, एक सशक्त और सुलझी हुई वैश्विक सोच वाले राष्ट्र के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। श्रोताओं, इस युद्ध ने न केवल आजाद भारत की सैन्य शक्ति से पूरी दुनिया को परिचित करवाया बल्कि हमारे देश की सुलझी हुई रणनीति और मानवीयता के पक्ष को सामने रखा कि किसी देश का निर्माण करके उस पर एकाधिकार की चेष्टा न करते हुए उसकी स्वतंत्रता का सम्मान किस तरह से किया जाना चाहिए, इसका उदाहरण हमने विश्व में पेश किया। यहाँ हमारी भारतीय सेना के जो आधारभूत मानवता के मूल्य हैं, वो एक बार फिर श्रोताओं उजागर हो जाते हैं। श्रोताओं, यदि 1971 की इस लड़ाई का विश्लेषण किया जाए, और जो कि इस लिहाज से जरूरी है कि यही तो वो युद्ध था जिसने आजादी के बाद भारत को स्वयं की दृष्टि में और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूरी दुनिया की दृष्टि में एक नया दृष्टिकोण से देखने का अवसर दिया। आइए कार्यक्रम की आज की कड़ी में इसी पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं और इस चर्चा को करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। सर, एक बार फिर आपका स्वागत है।
3: नमस्कार पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं। पूर्वा जी, आपने बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया है
2: जी, धन्यवाद सर।
3: 71 वॉर वॉज द थर्ड वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान
2: जी,
3: एंड इन टोटैलिटी इंडिया के लिए ये फोर्थ मेजर वॉर था
2: जी
3: सिंस इंडिपेंडेंस। तो चारों वॉर्स में अगर एक बात आप देखते हैं कि इट वॉज नॉट द इंडिया हु टुक द इनिशिएटिव, हमने कभी अपनी तरफ से किसी के ऊपर हमला नहीं किया
2: जी, बिल्कुल।
3: हमेशा ये हुआ है कि हमारे ऊपर हमला करा गया है
2: जी।
3: हाँ, ये बात जरूर है कि जब भी हमारे पे हमला हुआ है हमने उसका डट के मुकाबला किया और विजय हासिल करी है
2: जी, बिल्कुल।
3: और ये जो विक्ट्री थी 71 की
2: जी,
3: इसमें एक और बात थी कि जो तीनों फोर्सेस थी उनका जो पार्टिसिपेशन था फुल स्केल पार्टिसिपेशन था
2: जी,
3: जो है जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था, ज्यादातर हमने देखा था कि 62-65 और इसके पहले 47 में भी इट वॉज आर्मी एंड एयरफोर्स विच हैड प्लेड द मेजर रोल। तीनों के तीनों फोर्सेस ने जॉइंटमैनशिप का बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया था। हमने जैसे देखा कि हेलीबॉर्न ऑपरेशंस हुए, इसमें एयरबॉर्न ऑपरेशंस हुए, एम्फीबियस ऑपरेशंस हुए जो है, तो वो एक जॉइंटमैनशिप का बहुत अच्छा एग्जांपल उदाहरण है। पाकिस्तान ने सरेंडर किया उसका भी कोई और एग्जांपल नहीं मिलता है हिस्ट्री में आपको, उस तरह का जो है इतना बड़ा सरेंडर लेना जो है। और इसके लिए जो ऑफिसर्स मैन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, निसंदेह ये उनकी बहादुरी, उनका जज्बा, उनकी लीडरशिप सारी चीज़ें मायने रखती हैं, उनके सिंसियरिटी ये सब मायने रखती हैं। और बिल्कुल सही है कि इस पूरे युद्ध में जो है 600 से ज़्यादा ऑफिसर्स और जवानों को गैलेंट्री अवार्ड्स मिले जिसमें कि हमने ऑलरेडी जिक्र किया था कि चार पीवीसीज के बारे में परमवीर चक्र विजेताओं का हमने जिक्र भी किया है था, 75 से ज़्यादा जो है महावीर चक्र मिले थे और ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा जो है वीर चक्र और भी काफ़ी सारे अवार्ड्स से लोगों को सम्मानित किया गया जो कि वो बहुत डिजर्व करते थे। जो यूनिट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन यूनिट्स ने भी बहुत अच्छा काम किया था एंड उनको भी जो है बैटल ऑनर्स से, थिएटर ऑनर्स से और भी जो है साइटेंशंस मिली थी जो है। अब हर युद्ध में जो होता है सेक्रीफाइस भी होता है, शहीद भी होते हैं, तो सेम इसमें भी आप देखेंगे तो 12,000 से ज़्यादा मतलब जो है कैजुअल्टीज थी। जब मैं कैजुअल्टीज की बात कर रहा हूँ तो उसमें 3,000 जो है शहीद हुए थे, ऑफिसर्स और जवान जो है 3,000 शहीद हुए थे और बाकी जो है जिनको मतलब घायल हुए थे वो थे। ये एक तरह से जो है कुर्बानी होती है वो तो
4: हर विजय
3: बलिदान है जो कि ज़रूरी भी होता है और देखने वाली बात यह कि इस बलिदान के लिए भी हर सैनिक हमेशा तैयार रहता है, वही हमने इसमें भी देखा। सीज फायर जब हुआ था 17 दिसंबर को जिसको कि हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और उससे पहले जो है इंडियन आर्म फोर्सेस ने अप्रॉक्सीमेटली 15,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान की टेरिटरी कैप्चर करी थी वेस्ट पाकिस्तान में जो है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा जो है। एंड ये सीज फायर होने के बाद जो है वो सोल्जर्स जिनको प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया हुआ था वो हमारे साथ थे, तो शिमला एग्रीमेंट जो हुआ जो शिमला एग्रीमेंट जो हुआ वो 2 जुलाई 1972 को हुआ था जिसमें कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल का डिमार्केशन हुआ, प्रिजनर ऑफ वॉर्स का जो मतलब रिपैट्रिएशन होता है मतलब वापस अपने देश में भेजना जो वो हुआ और बाकी जो काफ़ी सारे जो मुद्दे थे उनको मतलब सॉर्ट आउट हुआ, तो एक तरह से 1972 में जाके हम ये कह सकते हैं कि ये फाइनली सेटल हुआ। ये एक युद्ध ऐसा था, ये हम पे सारे युद्ध इम्पोज हुए थे ठीक है तो पे गए थे बट हर एक में जो है वी टुक ओवर द चैलेंज इन ए वेरी ब्रेव मैनर ठीक है, और जो हमारे सोल्जर्स हैं तो स्टूड फॉर्म ऑन द ग्राउंड। हमारी जब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी की बात आती है देश की संप्रभुता की बात आती है तो जवान की कोई सानी नहीं है, वो हमेशा जो है डट के खड़े रहते हैं। इन सारे युद्ध ने 47 ऑनवर्ड्स जितने भी हुए हैं आप देखेंगे हम जब जिक्र भी कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो है आर्म फोर्सेस जो है मैच्योर होती चली गई,
4: अनुभव बढ़ता
3: चला गया एंड मॉडर्नाइजेशन साथ साथ होता रहा। जैसे इस समय तक 71 तक जो है इंडियन एयरफोर्स वाज वन ऑफ द बेस्ट लाइक वी डिस्कस्ड इट कि फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स बन गई थी, तो इस तरह से अगर हम देखें तो मॉडर्नाइजेशन होता गया एंड डॉक्ट्रिन्स चेंज होती गई, उसके बाद ट्रेनिंग जो है उसमें काफ़ी बदलाव आए जो है, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी हुआ और सेल्फ रिलायबिलिटी जो थी डिफेंस सेक्टर में जो है और जो कि आज देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, बहुत ही आगे बढ़ चुकी है, तो ये जो है एक प्रोसेस था। तो एक तरह से ये युद्ध होने के कारण भी जो है लगातार चलते रहे तो उस कारण से भी इसमें काफी बढ़ोतरी रही जो है।
4: जिस तरह से सर राष्ट्र का विकास हुआ वैसे ही सेना का भी विकास हुआ, सेना का भी वैसे ही अनुभव बढ़ता चला गया ग्रेजुअली।
3: बिल्कुल वैसे ही ग्रेजुअली वो बढ़ता चला गया और इनके सामने चैलेंजेस आते रहे जो है बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते रहे एंड यू सी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हर चैलेंज को जो है बहुत डटके जो है बहुत बहादुरी से उसका स्वीकार किया, उसका मुकाबला किया गया है ना। तो एंड वी फाइंड कि 47 से 71 तक पहुंचते देयर वाज अ मार्क इंप्रूवमेंट इन द फाइटिंग कैपेबिलिटी बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट अपग्रेडेशन ठीक है मॉडर्नाइजेशन के कारण थी। इन सब में जो है मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है सोल्जर, जो द मैन ऑन द ग्राउंड ठीक है, जो सोल्जर है। मैं खुद भी मतलब आर्म फोर्सेस में रहा हूँ, आर्मी में रहा हूँ और हमारे जो सोल्जर्स हैं उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। मैंने भी मतलब जो है बहुत डिफिकल्ट जगह पे सर्विसेज करी हैं और मैंने कभी अपने सोल्जर्स को कभी पीछे हटते हुए नहीं देखा, कभी किसी भी ऑपरेशन में कहीं पे भी ये नहीं सुना कि बहुत हो गया या जो है किसी तरह से बोला कि नहीं अब हम ये नहीं कर पाएंगे, ये कभी नहीं सुना। चाहे मैं सियाचिन में रहा, कारगिल में रहा, एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस में रहे, मैंने कभी ये बात नहीं सुनी और इसके बाद का मुझे बहुत गर्व है
4: और हमें भी गर्व है सर।
3: बिल्कुल, ये तो होना भी चाहिए, ठीक है, और इनके कारण ही हमारी देश की सुरक्षा है, ठीक है। और ये सिर्फ मतलब अगर आप पीस स्टेशन पीस में भी बात करें, जब लड़ाई नहीं होती तब भी जिस तरह की कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है कहीं पे भी जो है जरूरत होती है, तो सोल्जर्स आर ऑलवेज देयर इन द फ्रंट लाइन, हमेशा रहते हैं। तो इनका जो रोल रहा है और उस समय रहा और आज भी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब अनकम्पेरेबल। और एक और बात होती है कि इट इज़ नॉट द मशीन, इट इज़ द मैन बिहाइंड द मशीन हु मैटर्स। तो हमने 65 में भी देखा, हमने 71 में भी देखा, युद्ध में देखा, इवन अगर देखा जाता है इवन 47 के टाइम पे भी देखा, जो हमारा इक्विपमेंट उस समय जब अच्छा नहीं भी था, हमसे जो बेहतर इक्विपमेंट के साथ पाकिस्तान ने जब हम अटैक किया तब भी हमने विजय हासिल करी, तब भी हमने जो है उसके इरादों में उसको सफल नहीं होने दिया।
4: तो हमारे इरादे मजबूत थे
3: जी, हमारे इरादे मजबूत थे। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा सोल्जर है, ठीक है, he stood firm, ठीक है
4: जी।
3: तो इक्विपमेंट से ज्यादा जो है, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन हु मैटर्स एंड इट इज ऑलवेज देयर, ठीक है ना। और यही ट्रेडिशन जो है हमेशा से कंटिन्यू रहा है,
4: यही हमारी विरासत है,
3: ये हमारी विरासत है। और आज भी ये चीज जो है मायने रखती है, हमेशा से रही है। और जो हम बोलते हैं नाम नमक निशान, उसके लिए हमारा सोल्जर जो है हमेशा खड़े रहते हैं। बहुत मतलब जो है इस बात के लिए मुझे बहुत गर्व होता है।
4: जी सर, हम भी इसी में शामिल हैं आप ही के साथ
3: कि मुझे भगवान ने मौका दिया कि मैं भी उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिला के काम कर पाया।
4: सर बहुत भाग्यशाली है सर आप।
3: थैंक यू।
2: तो श्रोताओं, एक तरह से देखा जाए तो भारत ने ये युद्ध जीता ही नहीं बल्कि इतिहास की दिशा को ही इस युद्ध ने बदल कर रख दिया। विश्व का भूगोल ही नहीं बदला बल्कि अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा को भी इस युद्ध ने बढ़ा दिया। और इस तरह हमारी भारतीय सेना ने मानवीय पक्ष को सर्वोपरि रखने वाली हमारी सोच को एक बार फिर दुनिया के सामने सिद्ध कर दिया। तो ये तो थी सन 1971 के भारत पाकिस्तान जंग की दास्तान, जिसे हमारे सामने बड़े ही तफसील से सर आपने पेश किया। लेकिन ये बात यहीं और यूं ही समाप्त नहीं हो जाती, जब तक कि सन 1971 के युद्ध की जो व्यूह रचयिता हैं, या जिन्हें हम कह सकते हैं कि विजय की गौरव गाथा लिखने वाले नायक हैं, यानी कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, इन्हें हम याद न करें।
3: बिल्कुल बुरुआ जी,
2: यू
3: आर द नेशनल हीरो।
2: जी बिल्कुल, इसलिए इनकी बात करना बहुत जरूरी है सर।
3: बिल्कुल बिल्कुल, इसके बगैर आपने सही बोला कि ये एपिसोड खत्म ही नहीं हो सकता।
2: जी बिल्कुल,
3: ये जो 71 की लड़ाई का किस्सा है हम नहीं खत्म कर सकते हैं।
2: जी सर,
3: इसका इतिहास अधूरा है।
2: जी,
3: जब तक हम फील्ड मार्शल सैम आर्मूस जी, फ्रेम जी, जमशेद जी, मानेकशॉ साहब के बारे में जिक्र ना करें।
2: जी बिल्कुल,
3: देखिए लीडर्स होते हैं, कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो एक चीज में मतलब माहिर होते हैं, जिनका एक कैरेक्टर होता है, दूसरा क्वालिटी होती है। मानेकशॉ सर ऐसे थे जिनके पास सब कुछ था, एक तरह से मतलब वो हर तरह से जिनको मतलब हर एक का प्यार मिलता था।
2: जी,
3: जितना उनको ऑफिसर्स प्यार करते थे उतना जो है इज्जत करते थे, उतना ही जवान उनको प्यार करते थे। और ही वाज वन पर्सन जिनको कि मतलब ही वाज आफ्टर दिस वॉर मतलब ही बिकेम ए हाउसहोल्ड नेम इन द कंट्री।
2: जी बिल्कुल,
3: जो कि बहुत कम ऐसा होता
2: आज
3: है,
2: आज भी सर बच्चा बच्चा उन्हें जानता,
3: बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। तो वो एक तरह से जो शख्सियत है उनकी, जो पर्सनैलिटी थी, जो ऑरा था उनका, वो एक बहुत ही अलग ही था जो है।
2: जी।
3: मुझे भी उनके बारे में जिक्र करते समय बहुत खुशी हो रही है।
2: जी।
3: मैंने भी मतलब जितना उनके बारे में पढ़ा है जो है
2: जी।
3: और बहुत गर्व महसूस होता है
2: जी, बिल्कुल।
3: उनके बारे में जान के, तो थोड़ी बहुत जो बातें मैं जानता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि मानेकशॉ सर जो थे, he was from the first batch of Indian Military Academy, 1932 में, जिसको कि pioneers बोला जाता है।
2: जी।
3: और इस बैच की खासियत ये थी कि इसमें मानेकशॉ सर थे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया के बने थे, उनके जो कोस्टमेट थे मोहम्मद मूसा, वो पाकिस्तान के चीफ बने थे, और स्मिथ डन जो थे वो बर्मा के चीफ बने थे।
2: अच्छा।
3: तो ये जो पायनियर बैच था
2: जी।
3: इसने तीन चीफ दिए थे अलग अलग कंट्री के।
2: जी।
3: सर जो है फाइनली मतलब जो है 8 गोरखा राइफल में आए थे जो है, पहले मतलब उनका कमीशन 2nd बटालियन रॉयल स्कॉट्स में हुआ था, स्काउट्स में हुआ था, फिर उसके बाद देन ही वेंट टू 412 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, एंड फाइनली मतलब आफ्टर पार्टीशन ही वाज इन 8 गुरखा राइफल्स। तो 42 में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, बर्मा में जो है मानेकशॉ सर जो है लीड कर रहे थे कंपनी, उस समय जो है उनको 9 बुलेट्स लगी थी, 9 बुलेट्स जो है मतलब पेट में लगी थी, एंड एवरीबॉडी थॉट कि मतलब ही विल नॉट सरवाइव।
4: सर 9 बुलेट बहुत बड़ी बात होती है, आप सोच नहीं सकते कि कोई जीवित बचेगा।
3: बिल्कुल बिल्कुल, उस समय जो है उनकी बहादुरी के लिए जो है उनको मिलिट्री क्रॉस से भी सम्मानित किया गया था, एंड ही सरवाइव्ड। ठीक है, उन्होंने तो सरवाइव करना ही था, वो हमारे नेशनल हीरो हैं।
4: बिल्कुल सर।
3: तो वेरी राइटली सेड कि 71 का जो युद्ध था वो उसके महानायक थे
4: जी, बिल्कुल।
3: और जो है यस अंडर हिम ओनली, अंडर ही वाज द वन हु प्लान्ड ऑपरेशन। ठीक है, अंडर हिम ओनली वी वॉन दिस वॉर। ही वाज द 8th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, एंड ही हैड शोन मतलब हिज एबिलिटी टू मोटिवेट द फोर्सेस। ठीक है, and with a very mature war strategy he came up, and that is why matlab he became a prime architect of this victory
4: ji।
3: Sam sir ko apni jo life mein unhone jab army military mein bhi unhone jab apna service mein jo hai unko padma bhushan se sammanit kiya gaya tha 68 mein
4: ji,
3: aur uske baad 72 mein again matlab he was awarded padma vibhushan also jo hai। एंड सर जो है एक बार एज ए चीफ ही वाज विजिटिंग हिज रेजिमेंट 8GR जो है
4: जी।
3: तो उसमें उन्होंने एक सोल्जर से पूछा कि भाई आपको आपके चीफ का नाम मालूम है? तो जो है गोरखा सोल्जर ने जवाब दिया कि हाँ, उनका नाम सैम बहादुर है। तो तब से उनका नाम जो है निकनेम बिकम सैम बहादुर। मानेकशॉ सर जो है 15th जनवरी को देन फाइनली ही रिटायर्ड, एंड उससे पहले जो है 1st जनवरी को उनको जो है उनके सम्मान में उनको फील्ड मार्शल, ही बिकेम द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस।
4: यानी अवकाश प्राप्त करने के मात्र कुछ दिनों पहले उन्हें ये ओहदा मिला,
3: ओहदा मिला था
4: जी।
3: डाइड एट विलिंगटन में रहते थे वो जो है, एंड 27 जून 2008 में एट द एज ऑफ 94 उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली
4: जी।
3: लेकिन वो तो चले गए, लेकिन उनकी यादें और उनका जो ऑरा है वो हमेशा
4: बरकरार
3: रहेगा और जीवित है। ही वाज अ वेरी चार्मिंग लीडर, मतलब ना जो ही कमांडेड ग्रेट रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी फ्रॉम हिज ट्रूप्स। ठीक है, एंड ड्यू टू हिज रेपुटेशन आल्सो फॉर हिज पर्सनल ब्रेवरी आल्सो, एंड ही वाज वेरी फेयर, मतलब कहते हैं बहुत ही फेयर थे, एंड जनरली मतलब ही नेवर बिलीव्ड कि अननेसेसरी पनिशमेंट्स के लिए। इवन ये भी अगर इसके बारे में एक और बात बोली जाती है कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे उन्होंने इंश्योर किया था कि किसी भी प्रिजनर ऑफ वॉर को जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे उनके साथ मिसबिहेव ना हो, उनको प्रॉपर फैसिलिटी दी जाए जो है, उनको प्रॉपर ढंग से रखा जाए, मतलब ही इंश्योर दीज थे जो है।
4: तो सर दुश्मन के सैनिक भी उनका इतना ही सम्मान करते हैं जितना हम करते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा आपने, और इवन नेपाल जो कंट्री है नेपाल ने उनको एज ए ऑनररी जनरल ऑफ नेपालीज आर्मी बनाया था, और 77 में उनको वहाँ पे ना ऑर्डर ऑफ ट्राइशक्ता शक्ति पट्टा बोलते हैं, फर्स्ट क्लास, जस्ट लाइक ए नाइटहुड होता है ना जो ब्रिटेन में होता है, तो नाइटहुड ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल, इट वाज प्रेजेंटेड बाय किंग वीरेंद्र टू हिम। तो ही वाज वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन, एंड विदाउट एनी डाउट कि जो है उन्होंने हमें ये विजय दिलाई थी
4: जी,
3: वो हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे जो है, और हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे।
4: बिल्कुल सर, वाकई में सर हर भारतीय सैनिक के ही नहीं हर भारतीय नागरिक के आदर्श रहेंगे सैम मानेकशॉ। और ऐसी कौन सी चीज है उनकी, या ऐसी कौन सी बात है जो हमेशा आपके लिए प्रेरणादायक रही है?
3: उनकी पूरी पर्सनालिटी प्रेरणादायक है
4: जी।
3: कुछ वर्ड्स वो हमेशा बोलते थे जब भी वो लेक्चर्स वगैरह लेते थे
4: जी,
3: जो मैंने सुने हैं, लाइक उनका कहना था कि मेकिंग डिसीजंस इज इजी बट ओनिंग देयर कॉन्सिक्वेंसेस इज हार्ड। काफी बड़ी बात है
4: जी,
3: कि भाई डिसीजन लेना आसान होता है लेकिन उनके जो नतीजे होते हैं अगर वो आपके फेवर में नहीं है तो उसको जो है ओन करना बड़ा
4: स्वीकार करना
3: कठिन होता है।
4: बिल्कुल,
3: लाइक इट वाज वेरी मोटिवेटिंग व्हेन ही यूज्ड टू से कि यू शुड हैव टू फाइट एंड फाइट टू विन, देयर इज नो रूम फॉर द लूजर्स। अगेन आप सोचिए जब ऐसे शब्द के साथ वो अपने जवानों के सामने खड़े होते थे तो कितना मोटिवेट करते थे लोगों को जो है, मतलब उनका एक और भी कोट था जो मुझे याद आ रहा है कि अनलेस यू नो एंड द मेन यू नो यू कमांड नो दैट यू नो योर जॉब यू विल नेवर बी ए लीडर. मतलब सीधे शब्दों में यह है कि आपको अपने काम के बारे में पूरी जानकारी, उसमें आपका मतलब कॉम्पिटेंस जो है 100% होना चाहिए, है ना. शुड एक्सेल इन योर जॉब, तभी आप लीडर बनेंगे, एंड देन ओनली द मेन विल फॉलो यू. दैट इज व्हाट इट इज, है ना. सर का तो एक बहुत ही फेमस जोक भी है, मतलब वो बोला करते हैं कि इफ ए पर्सन सेज कि ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग तो आइदर ही इज लाइंग और इधर गोरखा.
4: जी जी जी.
3: ये गोरखा उनकी जो रेजिमेंट थी उनकी बहादुरी के लिए वो बोलते थे. वंस अगेन आई मस्ट से सो के दैट ही वाज अ वेरी चार्समेटिक लीडर एंड ही विल ऑलवेज रिमेम्बर्ड फॉर हिज क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट ग्रेट मिलिट्री लीडर.
4: जी, तो श्रोताओं इन्हीं पंक्तियों के साथ हम इस श्रृंखला को यानी भारत पाक युद्ध सन 1971 को यहीं समाप्त करते हैं. आशा है आपने इस श्रृंखला को बहुत ही ध्यान से सुना होगा और आपको कई नई बातें इसमें पता चली होंगी. सर आप स्टूडियो में आए और आपने इतना वक्त निकाला और आगे भी हमारे लिए आशा है कि इसी तरह समय निकालते रहेंगे और हमें भारतीय सेना के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे.
3: थैंक यू पूर्वा जी एंड थैंक यू श्रोताओं. मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि जो भी कुछ हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं
4: जी,
3: वो एक तरह से हमारा मकसद ये है कि आप उसके बारे में हम थोड़ा सा बता सकें
4: जी
3: एंड एक उत्सुकता जगा सकें जिससे कि आप जो है और इसके बारे में डीपली जाके पढ़ सकें और जो है इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें. आई एम वेरी श्योर यू विल लाइक इट, यू विल लव इट एंड यू विल फील प्राउड ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. जय हिंद.
4: बिल्कुल बिल्कुल, हमें हमेशा ही गर्व रहेगा हमारी भारतीय सेना पे. बहुत बहुत धन्यवाद सर. तो श्रोताओं ये था हमारा आज का कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व. इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना की अदिति गौड़ ने, ध्वनि संपादन था अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का. और श्रोताओं मैं आपके साथ थी आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले. तो दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से, मिलते हैं एक नई श्रृंखला के साथ कार्यक्रम के अगले एपिसोड में. 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ. देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए.
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व. इस कार्यक्रम में आज हमने भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 पर आधारित कार्यक्रम का छठवां भाग सुना. जानकारी दी सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा ने और इनसे बातचीत कर रही थी पूर्वा खले.
5: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश.

0: चाय और फर का व्यापार। अलास्का की बर्फ में ब्रिटिश साम्राज्य की खोज। क्या आप जानते हैं कि चाय के लिए अंग्रेजों की प्यास इतनी बेकाबू हो गई थी कि उसने साहसी यात्रियों को भारत के तपते बंदरगाहों से अलास्का के जमे हुए अनछुए तटों तक केवल फर यानी जानवरों की खाल के शिकार के लिए जाने पर मजबूर कर दिया। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक भयानक वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। ब्रिटिश जनता साल में 90 लाख पाउंड की चाय पी रही थी, लेकिन चीन का स्वर्गीय साम्राज्य ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। क्या आप जानते हैं कि चाय के बदले में चीनी लोग वास्तव में केवल चांदी को ही महत्व देते थे? इसने व्यापार में एक बहुत बड़ा अंतर यानी ट्रेड गैप पैदा कर दिया। और जब यूरोपीय युद्धों के कारण चांदी की आपूर्ति अत्यंत कम हो गई तो कंपनी एक नई वस्तु के लिए बेताब हो गई जिसके बदले चाय खरीदी जा सके। समाधान कैप्टन जेम्स कुक की पत्रिकाओं से मिला, जिसमें एक ऐसे जीव का वर्णन था जिसका फर इतना शानदार था कि उसे एशिया का एरमाइन कहा जाता था। यह जीव था सी ऑटर, समुद्री ऊदबिलाव। क्या आप जानते हैं कि कैंटन के बाजारों में समुद्री ऊदबिलाव की एक खाल की कीमत शाब्दिक रूप से चांदी के उसके वजन के बराबर थी? उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में इस नए गोल्ड कोस्ट ने एक समुद्री होड़ पैदा कर दी। 1785 में जेम्स स्ट्रेंज नामक एक कंपनी कर्मचारी ने कुक की यात्रा के वृत्तांत पढ़े और बॉम्बे के व्यापारियों को एक अभियान के लिए वित्त पोषित करने के लिए राजी किया। कैप्टन कुक और एक्सपेरिमेंट नामक जहाजों पर सवार होकर जेम्स स्ट्रेंज अमेरिका और चीन के बीच वाणिज्यिक संपर्क का एक नया चैनल स्थापित करने के लिए प्रशांत महासागर की ओर निकल पड़ा। उसी समय कलकत्ता में द बंगाल फॉर सोसाइटी नामक एक प्रतिद्वंद्वी समूह ने कैप्टन जॉन मेयर्स को उसी बर्फीले पानी में भेज दिया। उसी समय कलकत्ता में द बंगाल फॉर सोसाइटी नामक एक प्रतिद्वंद्वी समूह ने कैप्टन जॉन मेयर्स को उसी बर्फीले पानी में भेज दिया। क्या आप जानते हैं कि आपकी सुबह की चाय के प्याले के लिए इन नाविकों ने कितनी भयानक कीमत चुकाई? स्ट्रेंज 1786 में अलास्का के दक्षिणी तट पर पहुंचा, जहां उसने पाया कि उसका प्रतिद्वंद्वी मेयर्स पहले से ही वहां मौजूद था। लेकिन मेयर्स ने आर्कटिक की भीषण सर्दियों को कम करके आंका था। उसका जहाज नूत का स्नक कॉर्नर कोव में बर्फ में फंस गया था। जैसे जैसे बर्फ जमती गई, चालक दल स्कर्वी रोग और ऐसी भीषण ठंड की चपेट में आ गया जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। जब मई में बर्फ पिघली, तब तक उसके 31 में से 21 आदमी मर चुके थे। इतनी मौतों के बावजूद यह व्यापार आर्थिक रूप से एक बड़ी जीत थी। क्या आप जानते हैं कि इन पहले अभियानों द्वारा एकत्रित की गई 3000 खालें कैंटन में इतने भारी मूल्य पर बिकी कि उन्होंने मूल निवेश का मूल्य दुगना कर दिया। इस सफलता के कारण अगले दशक में कम से कम 35 ब्रिटिश जहाज प्रशांत महासागर के पार फर व्यापार में लग गए। क्या आप जानते हैं कि एशिया के एरमाइन के इस व्यापार ने एक वैश्विक कूटनीति संकट को जन्म दिया था? 1789 में स्पेनिश नौसेना ने फर व्यापार करने वाले कई जहाजों को जब्त कर लिया, जिससे नूत का संकट पैदा हुआ, जिसने ब्रिटेन और स्पेन को लगभग एक विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया था। यह एक कड़वा अनुस्मारक है कि ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास केवल भारत के मैदानों में नहीं बल्कि अलास्का की बर्फीली लहरों में भी लिखा गया था। और इस सब के पीछे की वजह लंदन की चाय की केतलियों को उबलते रहने देने की साधारण सी बेताबी थी।
1: गली में मारे फेरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूं सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम देश के संस्थान। इस कार्यक्रम में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे DRDO के संबंध में। इस कार्यक्रम को स्वर देंगे दीपक नेमा और भगवती सक्सेना।

0: नमस्कार, मैं हूं सोनाली राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे DRDO के बारे में, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: चरण स्पर्श दादाजी।
2: अरे अरे अरे अरे बेटा, खुश रहो। क्या बात है, आज तो मेरी प्यारी रुचि बिटिया का जन्मदिन है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा।
1: थैंक यू दादू।
2: तो बताओ आज जन्मदिन पर क्या उपहार चाहिए?
1: दादू, आज मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ।
2: अच्छा, मतलब ज्ञान वाला उपहार चाहिए? तो फिर जरूर पूछो बिटिया, क्या उपहार चाहिए?
1: दादू, अब तक आप मुझे देश की सेनाओं के बारे में बता रहे थे कि कैसे भारतीय थल सेना, वायु सेना और दूसरी सेनाएं हमारे देश की रक्षा करती हैं। लेकिन अब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन सेनाओं के पास जो हथियार, मिसाइलें, रडार, टैंक और रक्षा उपकरण होते हैं, उन्हें कौन बनाता है और वो कौन कौन से संस्थान हैं जो देश की सुरक्षा के लिए नई तकनीक तैयार करते हैं?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। देखो बेटा, अक्सर लोग सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिकों को देखते हैं, लेकिन उनके पीछे हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ भी काम करते हैं, जो देश को मजबूत बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं।
1: मतलब देश की रक्षा सिर्फ सैनिक ही नहीं, वैज्ञानिक भी करते हैं दादाजी?
2: हाँ बेटा, बिल्कुल। सैनिक सीमा पर लड़ते हैं और वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में।
1: सच में दादू?
2: हाँ बेटा।
1: क्या वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं से भी युद्ध लड़े जाते हैं?
2: बिल्कुल। चलो बेटा, आज तुम्हारे जन्मदिन के लिए ये बेहतर उपहार होगा। हम चर्चा करेंगे देश के संस्थानों के बारे में नए सिरे से। चलो चर्चा शुरू करते हैं। अब से मैं तुम्हें देश के ऐसे ही महान संस्थानों की कहानी सुनाऊंगा बेटा, जहां देश की उन्नति के लिए दिन रात तकनीकों पर काम किया जाता है।
1: सच में दादू?
2: हाँ बेटा।
1: तो फिर शुरुआत किससे करेंगे?
2: शुरुआत करेंगे भारत के सबसे बड़े रक्षा अनुसंधान संस्थान से, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी कहते हैं, समझे बेटा? और शॉर्ट में बोलते हैं DRDO।
1: DRDO यानी वो संस्थान जहां देश के लिए मिसाइलें और आधुनिक तकनीक बनाई जाती है।
2: हाँ बिटिया, जहां विज्ञान देशभक्ति से मिलता है और जहां से निकलती है मिसाइलें, रडार, ड्रोन, युद्ध तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की ताकत।
1: दादू, तो बताइए ना कि DRDO क्यों बना, ये कैसे काम करता है और कैसे भारतीय वैज्ञानिक देश को नई शक्ति दे रहे हैं, और DRDO में नौकरी पाना मुश्किल है या फिर आसान है?
2: आसान तो नहीं है बेटा, पर जिसने मेहनत की हो, लगन से पढ़ाई की हो, जिसके मन में देश सेवा का जज्बा हो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं।
1: दादू।
2: हाँ बेटा।
1: आपके एक दोस्त जो हमारे घर आया करते थे, वो मोहन अंकल, वो भी तो DRDO में वैज्ञानिक थे ना? उन्होंने आपको जरूर बताया होगा कि वहाँ मिसाइलें कैसे बनती हैं।
2: तुम्हें खूब याद रहता है हा? मेरा कौन दोस्त कब आया था?
1: हाँ दादाजी।
2: हाँ, DRDO सिर्फ मिसाइल नहीं बनाता, वो तो हमारे देश की रक्षा विज्ञान की रीढ़ है। ये संस्था वो जगह है जहां हमारे वैज्ञानिक रात दिन मेहनत करते हैं ताकि भारत आत्मनिर्भर बने और विश्व में मजबूती से खड़ा हो सके।
1: दादाजी, अब तो मुझे इसके बारे में डिटेल में बताइए, जैसे DRDO की स्थापना कब हुई थी और इसका इतिहास क्या है?
2: देखो बेटा, DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। असल में ये दो संस्थाओं के विलय से बना था, रक्षा विज्ञान संगठन, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन और तकनीकी विकास निदेशालय, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। और इसका उद्देश्य था भारत के सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करना, यानी हमारे सैनिकों को ऐसे हथियार, उपकरण और तकनीक देना जो पूरी तरह हमारे देश में बने हों।
1: मतलब अब हमें हथियारों और अन्य रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। दादाजी
2: बिल्कुल सही कहा बेटा, आज भारत के पास अपनी मिसाइलें हैं, अपने रडार सिस्टम हैं, यहाँ तक कि अपनी लड़ाकू तकनीकें भी हैं, और ये सब DRDO की देन है।
1: वैसे किस तरह की लड़ाकू तकनीक दादाजी?
2: आज DRDO ने देश को अग्नि, पृथ्वी, आकाश जैसी मिसाइलें दी हैं बेटा। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस बनाया है और सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर ड्रोन तक तैयार किए हैं। उनके वैज्ञानिक न केवल रक्षा में बल्कि अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा और मेडिकल तकनीक में भी योगदान दे रहे हैं।
1: वाह दादाजी, मतलब DRDO सिर्फ प्रयोगशाला नहीं बल्कि देश की रक्षा का मस्तिष्क है।
2: हाँ बेटा बिल्कुल सही कहा, DRDO वही है जो सीमा पर सैनिक की बंदूक में जान डालता है और आसमान में उड़ते विमान को भारतीय आत्मा बना देता है।
1: दादाजी अब मैं भी वैज्ञानिक ही बन जाऊं, ऐसा लग रहा है। मैं भी देश के लिए कुछ नया बनाऊंगी ताकि जब कोई कहे मेड इन इंडिया तो उसमें मेरा भी योगदान हो।
2: शाबाश मेरी बच्ची, यही तो असली देशभक्ति है, सिर्फ तिरंगा लहराना नहीं बल्कि अपने ज्ञान, अपनी मेहनत से उसे ऊंचा उठाना भी देशभक्ति है।
1: दादू एक सवाल है कि क्या DRDO एक बहुत बड़ी संस्था है?
2: बहुत विशाल बेटा, बहुत विशाल संस्था। DRDO का लगभग 41 प्रयोगशालाओं और 5 DRDO युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं DYSLS का अपना नेटवर्क है, या कहें कि एक संगठन है जिसमें हजारों वैज्ञानिक, तकनीकी और सहायक कर्मचारी देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कई अलग अलग विषयों को कवर करने वाली रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में काम कर रहे हैं।
1: 5,000 मिसाइलें शामिल हैं दादू?
2: हाँ बेटा, पृथ्वी मिसाइल, त्रिशूल, नाग, आकाश, अलग अलग वर्ग की मिसाइलें इसमें शामिल हैं। DRDO के द्वारा ही विकसित तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान LCA भी हमेशा खूब चर्चा में रहता है। रुस्तम, निशांत, इन जैसे UAVs यानी ड्रोन्स बनाने में DRDO का अहम योगदान है। अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आकाश, ये सभी मिसाइलें तो अभेद मिसाइलें हैं बेटा, जिनको बनाने की उपलब्धियां DRDO ने काफी पहले ही हासिल कर ली थी। अग्नि 5 की रेंज 5,000 किलोमीटर है बेटा, 5,000 किलोमीटर।
1: अच्छा दादाजी, ये तो मिसाइलों का पूरा भंडार है।
2: हाँ बेटा, पूरा भंडार। दरअसल संस्था का विजन है कि देश को अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के साथ सशक्त बनाना है।
1: अच्छा दादू, क्या ये सब DRDO अकेले करता है?
2: नहीं बेटा, DRDO ये सब अकेले नहीं करता। इसे हाल इसरो, BEL और कई निजी कंपनियों से सहयोग मिलता है। आजकल DRDO और प्राइवेट इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप तेजी से बढ़ रही है। इससे न केवल नई तकनीकें तेजी से बनती हैं, बल्कि युवाओं के लिए करियर के मौके भी बढ़ते हैं।
1: अच्छा, तो क्या DRDO ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का डिजाइन भी खुद तैयार किया था?
2: हाँ बेटा, साथ ही UVS जैसे रुस्तम, निशांत का निर्माण DRDO ने किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आधारित आधुनिक युद्ध प्रणालियों के लिए AI आधारित निगरानी और लक्ष्य पहचान, क्वांटम संचार, एनक्रिप्शन और साइबर सुरक्षा

0: बैटलफील्ड रोबोट्स यानी खुद ही ऑपरेशन करने वाले रोबोट्स पर काम कर रहे हैं। देखना तुम भविष्य का भारत आज के भारत से 100 गुना ज्यादा ताकतवर पाओगी बेटा।
1: बिल्कुल होगा दादाजी, हमारे वैज्ञानिक दिन रात इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, इसका मतलब DRDO का काम सिर्फ एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा।
0: हाँ बेटा बिल्कुल, इसमें कई क्षेत्र आते हैं जैसे वैमानिकी, एरोनॉटिक्स, आयुध वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स लड़ाकू वाहन, कॉम्बैट व्हीकल, इंजीनियरिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइल, उन्नत कंप्यूटरिंग और सिमुलेशन, नौसेना प्रणाली, जीवन विज्ञान, प्रशिक्षण, सूचना प्रणाली और यहाँ तक कि कृषि भी।
1: हे भगवान, ये तो काफी लंबी सूची है दादू। मुझे तो लगा था ये कोई एक सब्जेक्ट वाला ऑर्गेनाइजेशन होगा और DRDO बस मिसाइल बनाता होगा, पर ये तो अपने आप में कई संस्थाओं का अच्छा खासा एक संगठन है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का महासागर है दादू।
0: बिल्कुल बेटा, DRDO का विजन है कि भारत को एक ऐसी अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकें देना जो हमारी सुरक्षा को मजबूत करे, और यही आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत है।
1: तो क्या इस संस्था का विजन बेहतर हथियार बनाना है?
0: नहीं, सिर्फ हथियार बनाना नहीं बल्कि DRDO वैज्ञानिक अनुसंधान और रक्षा तकनीकी विकास के कई क्षेत्रों में कार्य करता है। इस संस्था का विजन है देश को अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के साथ सशक्त बनाना।
1: ओ, तो DRDO भारत को आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनाने की दिशा में अग्रसर है।
0: हाँ बेटा, और ये न केवल भारत की सैन्य जरूरतों को पूरा करता है बल्कि निर्यात क्षमता भी बढ़ा रहा है। DRDO की तकनीकों का उपयोग नागरिक क्षेत्र जैसे कृषि, मेडिसिन में भी किया जा रहा है।
1: दादाजी, हमारे पास तो पहले से ही कई अत्याधुनिक रक्षा उपकरण है, तो और हथियारों के निर्माण की जरूरत भला क्यों है? वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा था कि विज्ञान से शांति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, युद्ध को नहीं।
0: हाँ बेटा, देश को मजबूत रखना ही असली शांति है बेटा। अगर हमारे पास तकनीक और हथियार ना हो तो दुश्मन हमारी शांति छीन सकता है। वैसे भी हमारे शास्त्र कहते हैं बलस्य मूलम विज्ञान, मतलब शक्ति का स्रोत विज्ञान है जो शांति और युद्ध दोनों में राष्ट्र को संचालित करता है। इसलिए DRDO ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में राष्ट्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का दृढ़ संकल्प किया है, खासकर सैन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में बेटा।
1: दादाजी, DRDO की और क्या क्या उपलब्धियां हैं? उसके सबसे ताकतवर हथियार कौन कौन से हैं? जरा ये भी बताइए।
0: बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, शाबाश। देखो बेटा, DRDO रोज विकास की नई उड़ान भर रहा है। अब इसने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। क्या तुम यकीन करोगे कि इसकी कुछ खास मिसाइलें दुनिया भर में अब अपनी धाक जमा चुकी हैं, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बेटा। इनके पास अग्नि मिसाइलों की एक पूरी श्रृंखला है जिसमें अग्नि 5 की रेंज करीब 5000 किलोमीटर है। ये भारत की स्ट्रेटेजिक क्षमता है।
1: बिल्कुल होगा दादाजी, हमारे वैज्ञानिक दिन रात इतनी मेहनत जो कर रहे हैं। दादाजी, क्या और भी तकनीकें हैं इस तरह की?
0: हाँ बेटा, क्वांटम कम्युनिकेशन लैब यानी हैकिंग प्रूफ संचार व्यवस्था, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी लेजर और गामा रे बेस्ट हथियार देश के पास होंगे। आने वाली भविष्य की कुछ बेहतरीन तकनीकें हैं बेटा जो भारतीय रक्षा प्रणालियों को और मजबूत बनाएगी।
1: दादाजी, ये सब सुनने में तो बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म के जैसा लग रहा है।
0: हमारे पास मालवेयर डिफेंस, साइबर शील्डिंग और जीरो डे वल्नरेबिलिटी डिक्शन, इन जैसी तकनीकें विकसित हैं। ये सब सुनने में भले ही फिल्मों जैसे लगे बेटा, लेकिन मजे की बात ये है कि ये सब फिल्मों में नहीं बल्कि हम ये सब असली दुनिया में करने की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं।
1: मैं समझी नहीं दादाजी।
0: रुचि बेटा, DRDO सिर्फ हथियार नहीं बना रहा है, ये तो बायो डिफेंस जैसे CBRN, सुटस, केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर और बायो डिटेक्शन किट्स भी बनाता है। कोविड महामारी के वक्त में इनकी टेक्नोलॉजी लाखों जिंदगियां बचाने में काफी मददगार साबित हुई थी बेटा। साइबर लैब जैसी विकसित तकनीकों की मदद से देश की सुरक्षा डिजिटल सीमाओं के माध्यम से की जा रही है।
1: यानी DRDO का मिशन है जमीन, हवा, समुद्र, अंतरिक्ष की सुरक्षा और साथ ही साइबर रक्षा। और सुरक्षा डोमेन में अत्याधुनिक सेंसर, हथियार प्रणालियों, प्लेटफॉर्म और इससे जुड़े उपकरणों के डिजाइन बनाना और इनका विकास करना, साथ ही साथ स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अनुसंधान, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, औषधियाँ, जैविक रक्षा के लिए खोज और अनुसंधान करना। सही समझा ना मैंने दादाजी?
0: शाबाश बेटा, बिल्कुल सही समझा। DRDO को हर तकनीक का परीक्षण टेस्टिंग करना पड़ता है। मुश्किल से मुश्किल हालात में थार रेगिस्तान से लेकर अंडमान तक, रेत, पहाड़, समंदर, हर जगह परिस्थिति, मौसम और तापमान के आधार पर किसी भी परीक्षण में हजारों चुनौतियां होती हैं बेटा। इसके अलावा रिसोर्सेज की लिमिटेशन कई बार लक्ष्य तक पहुंचने में अड़चनें पैदा करती है।
1: दादाजी, फिर तो कभी कभी ये मिशन फेल भी होते होंगे?
0: हाँ बेटा, कई बार ये परीक्षण फेल हो जाते हैं। कई बार विदेशी तकनीक पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, लेकिन वैज्ञानिक हार नहीं मानते। आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ने नया जोश भर दिया है। भारत अब खुद के हथियार बना रहा है और दुनिया को भी बेच रहा है। ये DRDO के वैज्ञानिकों की मेहनत का फल है बेटा। DRDO हर युवा के भविष्य का सपना है।
1: वाओ। अच्छा दादाजी, ये बताइए, क्या DRDO में सिर्फ इंजीनियर ही जा सकते हैं?
0: नहीं बेटा, DRDO में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, साइकोलॉजी, लाइफ साइंसेज, इन सभी कई शाखाओं के लोग काम करते हैं। यहाँ तक कि DRDO में कानूनी विशेषज्ञ, HR, प्रशासनिक अफसर, अकाउंट्स आदि की भी जरूरत होती है बेटा।
1: अच्छा, तो क्या मैं DRDO ज्वाइन कर सकती हूँ?
0: बिल्कुल कर सकते हो। अगर तुम्हें विज्ञान से प्यार है तो DRDO तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है बिटिया। और अभी तो DRDO ने और भी कई कई नई सारी पहल की हुई हैं, जिनमें टेक ड्राइव, यंग साइंटिस्ट लैब्स, आईडेक्स, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस शामिल है, जहां तुम जैसे छात्र छात्राएं न सिर्फ सीख सकते हैं बल्कि नए आइडिया पर काम भी कर सकते हैं।
1: पर दादाजी, जब कोई DRDO में सिलेक्ट हो जाता है तो उसे ट्रेनिंग कहाँ से और कैसे दी जाती है?
0: DRDO में प्रशिक्षण भी एकदम वैज्ञानिक तरीके से होता है। जैसे ही कोई युवा वैज्ञानिक साइंटिस्ट बी के रूप में नियुक्त होता है, उसे सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ट्रेनिंग एकेडमी में भेज दिया जाता है। DRDO हेडक्वार्टर दिल्ली में प्रारंभिक ट्रेनिंग दी जाती है बेटा। ये ट्रेनिंग करीब 4 से 8 हफ्तों की होती है, जिसमें उन्हें रक्षा विज्ञान, संगठन की नीतियाँ, प्रशासनिक प्रक्रिया, साइबर सुरक्षा और कार्यशाला प्रशिक्षण दिया जाता है।
1: यानी सीधा मिसाइल नहीं, पहले तैयारी।
0: हाँ बेटा, सीधा मिसाइल पे ही थोड़ी आ जाएंगे अपन। हाँ, इसके बाद उन्हें उनकी संबंधित प्रयोगशाला में भेजा जाता है बेटा, जहाँ ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। मसलन मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए DRDL और RCL हैदराबाद, कंप्यूटर साइंस और AI के लिए CIR या DYALAI बेंगलुरु, बायोडिफेंस के लिए INMS दिल्ली या DIPAS के अलावा कुछ वैज्ञानिकों को IITS, IISC, इसरो या विदेश तक भेजा जाता है MTech या PhD करने के लिए।
1: अच्छा दादाजी, भारत में DRDO की प्रमुख लैब्स कहाँ-कहाँ पर हैं?
0: देखो बेटा, DRDO की प्रयोगशालाएं पूरे भारत में फैली हुई हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, जैसे कुछ प्रमुख राज्य, तेलंगाना के हैदराबाद में DRDL, RCI, ASL में मिसाइल एवियोनिक्स की लैब है। कर्नाटक के बेंगलुरु में ADA, ADE, CAIR, LRDE में विमानन इलेक्ट्रॉनिक्स AI की।
1: अच्छा, तो इस तरह दिल्ली, मुंबई में और अन्य शहरों में भी तो होंगी?
0: हाँ बेटा, इसी तरह दिल्ली NCR के DRDO हेडक्वार्टर INMS दिल्ली या DIPAS में जीवन विज्ञान बायोडिफेंस की लैब है। वहीं तमिलनाडु चेन्नई के CVRDE में लड़ाकू वाहन और सैन्य इंजीनियरिंग की लैब है बेटा। महाराष्ट्र पुणे, नागपुर, ARDI हथियार प्रणाली की और उत्तराखंड देहरादून में IRDE इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की।
1: दादाजी, क्या इनके कोई परीक्षण लैब्स भी हैं?
0: हाँ बेटा, बिल्कुल है। राजस्थान के जोधपुर में DMRL, DLJ में सामग्री और उच्च तापमान परीक्षण की लैब है। ओडिशा के बालासोर में मिसाइल परीक्षण रेंज RTR की और गुजरात के जगाड़िया में नवीन निर्माण सामग्री की। वहीं गोवा में नौसेना प्रणालियों की टेस्टिंग लैब है बेटा।
1: मतलब DRDO का नेटवर्क पूरे भारत में है दादाजी।
0: बिल्कुल बेटा, और यही इसकी ताकत है। देश के हर कोने में रक्षा विज्ञान की मशाल जल रही है। रुचि बेटा, हमेशा याद रखना, ज्ञान ही शक्ति है और विज्ञान ही रक्षा, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान शक्ति का आधार है और तुम कभी भी इन दोनों में से एक विकल्प लेकर अपना जीवन नहीं चला सकते। तुम्हें हमेशा जीवन में ज्ञान और शक्ति का तालमेल बैठा कर ही चलना होगा।
1: अच्छा दादाजी, DRDO में भर्ती कैसे होती है और इसमें भर्ती के लिए कौन कौन सी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं?
0: DRDO में भर्ती के लिए बेटा RAS रिक्रूटमेंट असिस्मेंट सेंटर, यहाँ साइंटिस्ट बी के लिए परीक्षा और इंटरव्यू होता है। इसके लिए गेट स्कोर बहुत जरूरी होता है। आमतौर पर इंजीनियरिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी के छात्र इसमें शामिल होते हैं। सेप्टेम, सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट, इसके माध्यम से टेक्नीशियन, एडमिन, स्टेनो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए परीक्षा ली जाती है। और इसमें ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर दोनों के लिए बराबर मौके होते हैं। और तीसरा है बेटा इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स के लिए DRDO, IIT नीट और कई कॉलेजों से इंटर्न भी लेता है। इसमें कई छात्र एमटेक या PhD के लिए DRDO के लैब्स में प्रोजेक्ट करते हैं।
1: दादाजी, बहुत कठिन डगर है पनगढ़ की।
0: हाँ तो बेटा, सब कुछ इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाता है। देखो बेटा, तुम्हें या तुम्हारे किसी परिचित को DRDO ज्वाइन करना हो तो ये ध्यान रखना कि तुम्हें गेट की तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा।
1: तो इंजीनियरिंग ही नहीं, ग्रेजुएट भी DRDO में जा सकते हैं दादाजी?
0: बिल्कुल बेटा, DRDO सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, पूरा सिस्टम है।
1: यहाँ इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स किस तरह से करवाए जाते हैं?
0: DRDO में एमटेक PhD के लिए इंटर्नशिप के भी मौके होते हैं बेटा। IIT नीट और बड़ी यूनिवर्सिटी के छात्र वहाँ प्रोजेक्ट करते हैं।
1: दादाजी, क्या मैं कॉलेज के दौरान भी DRDO में इंटर्न कर सकती हूँ?
0: क्यों नहीं बेटा, DRDO के दरवाजे मेहनती छात्रों के लिए हमेशा खुले हुए हैं।
1: दादाजी, क्या लड़कियाँ भी मिसाइल बना सकती हैं?
0: बिल्कुल, महिलाएं आज DRDO की ताकत हैं।
1: दादू, क्या आप महिला वैज्ञानिकों की कहानियाँ सुनाएंगे?
0: बिल्कुल। देखो बेटा, एक महिला वैज्ञानिक थी डॉक्टर टेसी थॉमस, जिन्हें लोग मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। Agni-4 और Agni-5 प्रोजेक्ट के निदेशक डॉक्टर टेसी थॉमस पहली भारतीय महिला हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम लीड कर चुकी हैं।
1: अच्छा।
0: डॉक्टर गगनदीप कंग, जिनका बायो डिफेंस और मेडिकल रिसर्च में अहम योगदान रहा है। डॉक्टर शांति रामास्वामी, जो DRDO में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स की विशेषज्ञ। तो बेटा, लड़कियां ना सिर्फ मिसाइल बना रही हैं बल्कि उन्हें दिशा भी दे रही हैं।
1: वाह दादाजी, फिर तो मैं भी मिसाइल साइंटिस्ट बनूंगी।
0: बिल्कुल बेटा, भारतीय वैज्ञानिकों इंजीनियरों की मेहनत का नतीजा है कि आज भारत ताकतवर और आत्मनिर्भर है।
1: दादाजी, और कोविड में DRDO ने जो काम किया उसके बारे में भी बताइए ना। सब कहते हैं कि उन्होंने बहुत कम समय में चमत्कार कर दिया था।
0: हाँ बेटा, वो समय था जब पूरी दुनिया जैसे थम गई थी, पर हमारे DRDO के वैज्ञानिक दिन रात प्रयोगशालाओं में जुटे रहे। बहुत कम वक्त में उन्होंने डॉक्स वेंटिलेटर बनाया ताकि हर अस्पताल को मदद मिल सके। UV सैनिटेशन टनल्स बनाए ताकि सामान संक्रमण मुक्त रहे।
1: PPE किट्स, फेस शील्ड्स और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स भी इन्होंने ही डिजाइन किए थे।
0: हाँ बेटा, ताकि हमारे डॉक्टर और नर्स सुरक्षित रहें। याद रखो बेटा, DRDO सिर्फ हथियार नहीं बनाता, वो जीवन रक्षक तकनीक भी लाता है।
1: वाह दादाजी, DRDO के वैज्ञानिक तो असली योद्धा हैं। इनकी हर लैब, हर प्रयोग, हर शोध भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: हाँ बेटा, डीआरडीओ का सपना है कि भारत रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बने। हम अपने सैनिकों को दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक दें, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम में दुनिया से मुकाबला करें, और सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं बल्कि अपनी तकनीकें दुनिया को निर्यात करें। यही है आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना।
1: दादाजी, अब तो मैं पक्का तय कर चुकी हूँ, मैं वक्त आने पर डीआरडीओ में वैज्ञानिक बनूंगी।
0: शाबाश मेरी बिटिया, यही तो चाहिए, देश को युवा और विज्ञान की संगत। पर एक मुश्किल है इसमें।
1: वो क्या दादाजी?
0: अगर तुम्हें कल कोई नया टॉपिक ना मिला तो तुम जरूर डीआरडीओ ज्वाइन कर लोगी। है ना? याद रखना बेटा, देश की सेवा सिर्फ सीमा पर खड़े होकर नहीं होती, कभी कलम से, कभी प्रयोग से, कभी विचार से भी देश की रक्षा होती है। हर युवा अगर अपने क्षेत्र में ईमानदारी और समर्पण से काम करे तो वही असली डिफेंस है, अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने मान की रक्षा करना।
1: जय हिंद दादाजी।
0: जय हिंद प्यारी बच्ची, जय हिंद और जय विज्ञान, जो हर राष्ट्र को सशक्त बनाता है।
2: तो श्रोताओं, ये था आज का रेडियो नाटक देश के संस्थान, जिसमें आज हम बात कर रहे थे डीआरडीओ यानी विज्ञान से सुरक्षित भारत की। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का। आपके साथ हम थे आपके रेडियो सेट पर, मैं भगवती सक्सेना
0: और मैं दीपक नेमा।
2: लेखन किया स्वाति गिरी ने। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश के संस्थान, जिसमें आज हमने जानकारी प्राप्त की। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के संबंध में।
1: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश।

0: से हो रहा।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा। हमारी आज की कड़ी रानी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित है।
2: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
3: भारत की वीरांगनाओं में अहिल्याबाई का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। पति और पुत्र की मृत्यु के बाद जब वे मालवा की शासक बनी तो राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। राजकोष खाली था और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उस पर उनके महामंत्री ने सैनिक विद्रोह करा दिया, लेकिन अहिल्याबाई बुद्धिमान भी थी और साहसी भी। उन्होंने विद्रोह को बुरी तरह कुचल दिया। उसके बाद शुरू हुआ राज्य में सुधार का सिलसिला। उन्होंने न सिर्फ सेना का नए ढंग से गठन किया बल्कि नारी सेना को भी सुदृढ़ बनाया। भ्रष्ट अधिकारियों को हटाकर नए सभासद नियुक्त किए गए। उन्होंने बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया, जिनमें कलकत्ते से बनारस तक की पक्की सड़क भी शामिल थी। सड़कों के किनारे धर्मशालाएं बनाकर लुटेरों को नियंत्रित किया गया। इससे राज्य का व्यापार बढ़ा और खाली राजकोष भरने लगे। रानी अहिल्याबाई एक धर्मपरायण शासक थीं। उनके राज्यकाल में ही सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। मालवा के लोग आज भी अहिल्याबाई को याद करते हुए उनके गीत गाते हैं। राजबाड़ा और होलकर शासकों की छतरियां आज भी अहिल्याबाई के यश और गौरव का गान कर रही हैं।
4: मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ओए मेरे देश की धरती ओ सल्लो, ए क्या किताब में मुंह डाल के बैठा है। अरे काम कौन तेरा ताऊ करेगा हैं?
5: क्या कक्का, फिर कर दिया डिस्टर्ब। बड़े मुश्किल से आधी किताब पढ़े थे, अब फिर शुरू से शुरू करनी पड़ेगी।
4: अबे चल ओए, बड़ी अंग्रेजी बोल रहा है हैं? अरे मूलमती, तेरे ताऊ ने पढ़ी है कभी कोई किताब हैं? अरे जरा दिखा तो, कौन सी पोथी बांच रहा, दिखा जरा, दिखा।
5: छोड़ो ना काका।
4: अरे दिखा तो हैं? वीरांगना अहिल्याबाई हैं? तो ये घोंट रहा था 2 हफ्ते से।
5: आओ काका,
4: चल चल सुना क्या पढ़ा, चल बता, चलो जा शुरू।
5: हम कहाँ पढ़े?
4: अरे
5: कहा तो आप डिस्टर्ब कर दिए, अब शुरू से शुरू करनी पड़ेगी।
6: अरे कक्का राम राम।
4: राम राम राम राम राम राम।
6: ओए सल्लू, कैसा है तू?
5: अरे मस्त, एकदम चकाचक।
4: अरे आजा राजू आजा। अरे ये सल्लू कैसा होगा भैया, हमेशा की तरह आराम से है। खैर वो सब छोड़, ये बता कि इस बार इधर को कैसे?
6: अरे बस कक्का, छुट्टियों में जरा घर आया था।
4: हाँ।
6: कॉलेज शुरू हो गया ना, तो वापस इंदौर जा रहा हूँ।
4: हाँ।
6: अब देखो बस कब तक आती है कक्का।
4: अच्छा, तो इंदौर जा रहे हो हैं? फिर तो भैया बहुत सही टाइम पे आए हो तुम। अभी अभी इंदौर की महारानी अहिल्याबाई की तो बात चल रही थी।
6: देवी अहिल्याबाई?
4: हाँ।
6: अरे उनके नाम पे तो कक्का इंदौर में यूनिवर्सिटी भी है।
4: सवा सवा। अरे तुम मिले जानकार है। तो चलो भाई, जरा हमारे सल्लू को कुछ बताओ उनके बारे में, बताओ।
6: अरे काका आप तो टांगे खींचने लगे, मुझे क्या मालूम उनके बारे में। अरे कुछ भी नहीं मालूम।
4: लो फिर वही ढाक के 3 पात। अरे ऐसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। अरे भाई इंदौर में राजबाड़ा गए हो कभी?
6: अरे वहाँ तो रोज अपना उठना बैठना है काका।
4: अरे भैया राजबाड़ा और उसके पास बनी छतरियाँ अहिल्याबाई होलकर के राजवंश की निशानी है।
6: ऐसा?
4: हाँ। अरे तुम दोनों तो बिल्कुल डब्बा निकले यार। अब कौन पूरी करेगा अहिल्याबाई की कहानी?
6: अरे आप और कौन कर?
4: अरे मैं? अरे नहीं, अरे ढेर सारा काम पड़ा है।
6: अरे, अरे
4: मैं नहीं।
6: कक्का सुनो तो, सुना दो जरा, मजा आ जाएगा।
4: अब तुम अब इतना जोर दे रहे हो तो सुनानी ही पड़ेगी। तो भैये कान लगा के सुनियो कहानी अहिल्याबाई की। तो बात शुरू होती है 18वीं सदी के मध्य में, माणकोजी शिंदे के एक गरीब मराठा परिवार में देवी अहिल्याबाई का जन्म हुआ।

0: लाखों में एक है हमारी अहिल्या, बिल्कुल राजकुमारी।
1: हाँ, पर राम जाने क्या होगा इस राजकुमारी का। अरे हम ठीक से इसका लालन पोषण तो कर नहीं पाते हैं, इसका ब्याह कैसे करेंगे।
0: तू चिंता मत कर, जैसे इतनी बड़ी हुई है वैसे ही एक दिन पराए घर भी चली जाएगी। ठाट से इसका ब्याह करूंगा एक राजकुमार से, देखना एक दिन महारानी बनकर रहेगी हमारी अहिल्या।
1: कब तक इन बातों से मन बहलाओगे। पूरे 12 बरस की हो गई है अहिल्या, समय आ गया है कि विवाह योग्य कोई वर देखो।
2: बाबा, मैं जल चढ़ाने शिव मंदिर जाऊं?
0: हाँ बिटिया जा, संभल के जाना, शिव जी ही इसकी नैया पार करेंगे।
3: हाँ, तो उस दिन शिव मंदिर के पास मालवा के राजा मल्हार राव होलकर सैनिक डेरा जमाए बैठे थे।

0: कितना मधुर कंठ है, मुख पर राजसी तेज है। मंत्री जी, कौन है यह दिव्य बालिका?
1: महाराज, प्रतीत होता है निकट ग्राम की ही कोई बालिका है। अभी पूछता हूँ। बालिके, बालिके।
2: प्रसाद।
0: चिरंजीवी भव। पुत्री, क्या नाम है तुम्हारा?
2: जी, अहिल्या।
0: अति सुंदर।
2: क्षमा करें, विलंब हो रहा है, माँ प्रतीक्षा करती होगी।
0: महामंत्री, शीघ्र पता लगाएं, ये संस्कारी बालिका किस ग्राम की है, किस कुटुंब की है। हमने अहिल्या को हमारे पुत्र खंडू जी की वधु के रूप में चुना है। बालिका के माता पिता को शीघ्र न्योता भेजें।
1: ऐसा ही होगा महाराज।
3: बहुत बहुत बधाई हो।
4: उत्सव की बात है,
5: आज महारानी जी लड्डू बंटवाएंगी।
6: बधाई हो, बधाई हो, महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है।
0: क्या, वाह, सारे राज्य में उत्सव की घोषणा करा दी जाए। सबको महाभोज के लिए आमंत्रण भेजो।
1: जैसे आज्ञा महाराज।
5: तो अहिल्या बाई के आने से महल में खुशियां गूंजने लगी। पुत्र भाले राव के बाद महारानी ने पुत्री मुक्ताबाई को भी जन्म दिया। सब कुछ खुशी मंगल से चल ही रहा था कि मालवा पड़ोसी राज्य से युद्ध में फंस गया।
7: क्या कहा काका, युद्ध में फंस गया?
5: हाँ बेटा सल्लू, युद्ध में फंस गया।
1: महाराज, सूचना मिली है कि आपके पुत्र राजा खंडू जी युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए।
8: क्या? नहीं, पुत्री अहिल्या।
1: महाराज, स्वयं को संभालें। यदि हम कमजोर पड़े तो मालवा को हाथ से निकलते देर नहीं लगेगी।
9: महाराज, मैंने निश्चय किया है, मैं राजा जी की चिता में सती बनूंगी।
0: नहीं अहिल्या, राज को तुम्हारी आवश्यकता है, हम तुम्हें सती होने की अनुमति नहीं देते। महामंत्री, राजसी तलवार निकाली जाए, सैनिकों को मोर्चे पर डटे रहने को कहो, सेना की बागडोर अब हम संभालेंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।

0: बताए फिर क्या हुआ सल्लू? कुछ समय बाद महाराज मल्हार राव की मृत्यु हो गई। अहिल्या बाई का पुत्र भाले राव भी बीमार रहने लगा। अरे बहुत इलाज करवाया मगर वो भी काल का ग्रास बन गया। अब राज की पूरी जिम्मेदारी अहिल्या बाई के कंधों पर आ गई थी।
1: सावधान, मालवा शासिका महारानी अहिल्या बाई सभा में पधार रही हैं। सावधान, मालवा शासिका महारानी अहिल्या बाई सभा में पधार रही हैं।
2: राजकोष खाली हो रहा है, राज्य के अधिकारी प्रजा के शोषण में लिप्त हैं। अब इन अव्यवस्थाओं पर लगाम लगानी ही होगी।
3: न्याय करे महारानी, न्याय करे।
2: क्या बात है, निर्भय होकर कहो।
3: महारानी, राज्य में व्यापार करना दूभर हुआ जा रहा है। अधिकारी मनमाने कर वसूलते हैं, लूट मची है लूट। ऐसा अन्याय तो कभी नहीं हुआ महारानी, कभी नहीं हुआ।
2: गंगाधर जी।
4: जी महारानी।
2: शीघ्र पता लगाया जाए कि मसला क्या है, दोषी अधिकारी को उसके पद से मुक्त कर दिया जाए। तुम आश्वस्त रहो फरियादी, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा।
3: जय हो महारानी, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए महारानी। अरे ऐसा न्याय कभी नहीं देखा भैया, ऐसा न्याय कभी नहीं।
5: अरे पकड़ो उसको। अरे कहाँ भागा चला जा रहा है?
6: अरे कहाँ चला जा रहा है?
5: पकड़ो, बचने ना पाए।
6: अरे उधर से घेर लो।
5: दरबार में सीधे घुस गया।
7: उतर से।
5: छोड़ना मत,
6: पकड़ लो।
2: क्या हो रहा है ये सब, छोड़ो उसे। कौन हो तुम?
5: महारानी जी, ये निचली जात का है, पता नहीं कैसे घुस गया यहाँ।
2: हमने प्रश्न आपसे नहीं पूछा था।
5: क्षमा करें।
7: महारानी जी की जय हो।
2: क्या नाम है तुम्हारा और इस तरह आने का कारण? अरे निर्भय होकर कहो।
7: महारानी जी, हम भकलू हैं महारानी जी, निचली जात के हैं, महेश्वर के पास नर्मदा जी के किनारे रहते हैं महारानी जी।
2: क्या समस्या है तुम्हारी?
7: महारानी जी, हमारी बस्ती में आपके सैनिकों ने हाहाकार मचा रखो है, लोग और लुगाइयों को पीटत है, छोरों को मारत है महारानी जी। हमारे पास देने के लाने कच्छु नहीं है, हम आओ जी वो मुश्किल कर दो है, दरबारी आपसे मिलन नहीं देत। हम जाए तो कहाँ जाए महारानी जी, आपकी शरण में आए हैं।
2: गंगाधर जी।
8: जी महारानी जी।
2: ये सब क्या हो रहा है हमारे राज्य में, हमारी प्रजा को हमसे मिलने की अनुमति नहीं?
8: महारानी जी, आपका समय इन छोटी मोटी घटनाओं में उलझने के लिए नहीं है, फिर ये कोई बड़ी बात भी तो नहीं है।
2: हमारी प्रजा परेशान है और आप कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं। आगे से इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि हमसे मिलने के लिए किसी प्रकार की रोक टोक न लगाई जाए।
8: जी महारानी जी।
2: सेनापति जी।
9: जी महारानी जी।
2: ये कौन महेश्वर की बस्तियों में उपद्रव मचा रहा है?
9: महारानी जी, गंगाधर जी ने कुछ सैनिकों को वहाँ कर वसूलने के लिए भेजा है।
2: क्या, हमारी अनुमति के बिना ही भेज दिया? तुरंत सेना वापस बुला ली जाए, छोटों को सताने वालों को हमारे कोप का भाजन बनना ही होगा, और निर्बलों को सताने से बड़ा और कोई पाप नहीं। तुम निश्चिंत रहो भकलू, हमारे द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे।
10: देवी अहिल्या बाई का न्याय।
11: जय हो।
12: महारानी की जय हो।

0: महारानी जी, यदि बात ना जचे तो क्षमा करें, लेकिन प्रजा एक स्त्री प्रशासक के प्रति हमेशा आशंकित रहती है, और फिर शत्रु भी तो हमें कमजोर समझ के मौके का लाभ उठा सकते हैं।
1: गंगाधर, क्या कह रहे हैं आप?
0: महारानी, मेरा आशय आपके सामर्थ्य पर प्रश्न खड़ा करने का नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि भला हो यदि आप एक दत्तक पुत्र गोद ले लें और उसी की संरक्षिका के रूप में प्रशासन की देखरेख करें।
1: नहीं गंगाधर, अब हर मोर्चे पर हमें स्वयं आगे आना होगा। ये वक्त नहीं है कि किसी पर भी भरोसा किया जा सके।
0: आप कहती हैं तो ठीक ही होगा महारानी जी। मैं तो मालवा के भले की ही सोचता हूँ हमेशा।
1: मालवा का हित सोचने के लिए हम जीवित हैं गंगाधर। सभा समाप्त की जाती है।
2: महारानी जी, महारानी जी।
1: क्या हुआ, ये घबराहट कैसी है?
2: महारानी जी, गंगाधर ने एक सैनिक टुकड़ी के साथ विद्रोह कर दिया। महारानी जी,
1: तो हमारी आशंका सच ही निकली। सेना तैयार करो, गंगाधर को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सेना का नेतृत्व हम स्वयं करेंगे।

0: हाँ तो राजू, महारानी अहिल्याबाई ने गंगाधर के दांत खट्टे कर दिए। अरे इस घटना के बाद भी कई विद्रोह हुए, पर अहिल्याबाई विद्रोह दर विद्रोह कुचलते हुए आगे बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई। अब मालवा की वाहवाही दूर दूर तक फैल रही थी। अरे सल्लू, ए तुझे नींद आ रही है क्या बे? हैं?
1: अरे नहीं काका, हम बड़े गौर से सुन रहे हैं काका।
0: अबे तू कम से कम काम पे ध्यान लगाता तो तेरी वाहवाही ढाबे तक तो रहती बे।
1: कैसी बात करता काका।
0: खैर चल सुन ध्यान से।
1: हाँ फिर आगे क्या हुआ काका?
0: हाँ तो मालवा को देखकर सबके मुंह में पानी आ जाता था। मालवा को हड़पने की साजिश रचने वालों में एक और नाम था, राघोबा पेशवा। हाँ
2: महारानी जी, राघोबा पेशवा की सेना के सामने हम नहीं टिक सकेंगे। उनकी सेना संख्या में हमसे 3 गुनी है।
3: सेनापति तुको जी, आप आश्वस्त रहें, बस जैसा हम कहते हैं करते जाएं। राज्य की स्त्रियों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाए, जिसकी सीधी देखरेख स्वयं हम करेंगे।
2: जैसी आज्ञा महाराज।

0: पेशवा साहब, सुना है मालवा की स्त्रियां हमसे मुकाबले के लिए बर्छी और ढाल चलाना सीख रही हैं। महारानी अहिल्याबाई हमारी सेना के सामने स्त्रियों की सेना खड़ी कर रही हैं।
1: क्या अब हमें स्त्रियों से युद्ध करना होगा?
0: यह तो उपहास जनक है। भला स्त्रियों और हम में क्या मुकाबला? हम उनको रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर वो यही चाहते हैं तो यही सही।
1: नहीं नहीं सेनापति, नहीं। इस तरह से दोनों ही ओर से पराजय हमारी ही होगी। स्त्रियों को कुचलकर हम कौन सा यश पा जाएंगे? जनता हम पर थू थू करेगी। और मान लो कि हम पराजित हुए तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे।
0: पर पेशवा साहब, और कोई भी चारा नहीं है। आप ही बताएं, ऐसे में हम क्या करें?
1: सेना को पीछे हटने का आदेश दिया जाए।
0: पर पेशवा साहब, मालवा की गद्दी।
1: हमें अपना आत्मसम्मान खोकर गद्दी हासिल नहीं करनी। मोर्चा वापस लिया जाए।
0: जैसी आज्ञा पेशवा जी की।

0: अहिल्या बाई राजमहल में पधार रही हैं।
1: महारानी जी, बहुत से राजपूत हमारे विरुद्ध हो गए हैं, हमारी उपलब्धियों से जलकर हमें लुटेरा कह रहे हैं, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र शुरू हो गए हैं।
2: क्या? जिस महारानी ने हिंदुस्तान के कोने कोने में धर्म की ध्वजा फहराई, उनका राज्य लुटेरा है? महारानी अहिल्याबाई देवी हैं देवी। देवी अहिल्याबाई ने तो हमेशा जनता की भलाई सोची है, फिर चाहे वो कोई भी राज्य क्यों न हो। महारानी ने सर्वत्र सार्वजनिक निर्माण करवाए हैं, ये लोग महारानी की कृपा दृष्टि के योग्य नहीं।
3: शांत सेनापति, शांत। सारे भारत की जनता एक है, द्वेष तो राजा और नवाबों में है। ये एक दूसरे की निंदा की आड़ में एक दूसरे के प्रदेश को बुरा बतलाते हैं। ये प्रदेश छोटा है, वो बुरा है, हमारा प्रदेश बड़ा है और अच्छा है, वे जंगली हैं, हम श्रेष्ठ हैं। अरे, इस भेदभाव का विष हम सबको किसी दिन नरक में धकेलेगा। इस अराजकता की स्थिति में आपस में लड़ मरने से अच्छा होगा कि हम एकजुट होकर सौहार्द से रहें।
1: महारानी जी, इन षड्यंत्रों को लेकर हमारी क्या नीति होगी?
3: राज्यों के प्रति हमारी नीति मैत्रीपूर्ण होगी। महामंत्री जी, युद्ध केवल जनधन की हानि देते हैं, आप सतही स्तर पर षड्यंत्रों को सुलझाने का प्रयत्न करें।
1: किंतु इस तरह शत्रु हमें दुर्बल समझने की भूल कर सकता है।
3: हमें लोगों के हृदय पर राज करना है महामंत्री, इसके लिए हम युद्ध की त्रासदी को टालने का हर संभव प्रयास करेंगे, किंतु पानी ऊपर चढ़ने पर हम भी शत्रु को धूल चटा सकते हैं।
1: जी, समझ गया।
4: अरे क्या बात है काका, मान गए काका। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी।
5: हाँ सल्लू, महारानी ने अब सेना को मजबूत करना शुरू किया, और पता है नारी सेना बढ़ती चली गई। अब कोई मालवा के खिलाफ फन नहीं उठा सकता था। महारानी ने अब अपना सारा ध्यान मालवा के विकास में लगाना शुरू किया। हाँ,
3: उन्नति के लिए आवश्यक है कि दूसरे राज्यों से हमारा संपर्क बढ़े, राज्यों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाए, प्रजा के सहयोग से हमारे कोषागार में पर्याप्त धन है, इसका प्रयोग सार्वजनिक निर्माण कार्यों में किया जाएगा।

0: राहगीरों के लिए धर्मशालाएं प्याऊ बनवाए जाएं। और हाँ, अब कोई भी फरियादी किसी भी मसले को लेकर सीधे हम तक आ सकता है।
1: माननीय के जय।

0: महारानी ने भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाए। अरे उनके ही शासन काल में कलकत्ते से लेकर बनारस तक पक्की सड़कें बनवाई गईं। अहिल्याबाई बहुत धार्मिक रहीं। उन्होंने स्वराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर बनवाया और बनारस में विश्वेश्वर मंदिर की स्थापना की थी।
1: वाह कक्का,
0: हाँ
1: महारानी तो बड़ी महान थी।
0: हाँ महान तो थी बेटा। अहिल्याबाई ने मालवा पर 30 सालों तक राज किया था।
1: 30 सालों तक?
0: हाँ, लेकिन 13 अगस्त 1795 को उन्होंने दुनिया से विदा ली।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा, आज की कड़ी रानी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित थी। 90.8 MHz पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद। हमारा अगला कार्यक्रम है रेडियो रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम विगत दिवस भोपाल में आयोजित भाव अनुभव कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट सुनवा रहे हैं।
2: नमस्कार, 90.8 MHz पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त रेडियो रिपोर्ट का है। आपके साथ में हूं फराज। रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं भारत भवन के अंतरंग सभागार में, जहां 5 से 7 जून तक नृत्य समारोह भाव अनुभाव का आयोजन किया गया है। इस समारोह के पहले दिन पहली प्रस्तुति रही कथक की। कलाकार थे करण गंगानी और उनके साथ

0: पग मरे समग
1: और यह प्रस्तुति भरतनाट्यम की कलाकार हैं श्वेता देवेंद्र और उनके साथी

जिसके मन जैसे भाए वैसे कृष्ण कन्हैया, बाल मुकुंद माधव मधुसूदन जसोदा लेत बलैया, है देवकी के जाए जसोदा की गोद आए, मन मोहक छवि प्यारी नंद जसोदा अपने लाल पर बलिहारी, झूला झूलत श्री कृष्ण मुरारी, झूला झूलत श्री कृष्ण मुरारी।

0: थी आज की रेडियो रिपोर्ट। अगली रेडियो रिपोर्ट तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे विगत दिनों भोपाल में आयोजित भाव अनुभव कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: जेम्स रबी की हत्या, एक मौत जिसने साम्राज्य को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया। क्या आप जानते हैं कि 1887 में एक सुदूर जंगल में एक अकेले ब्रिटिश नागरिक की हत्या ने ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मी साम्राज्य के बीच लगभग युद्ध छेड़ दिया था। वो व्यक्ति था जेम्स रबी, और नाफ नदी के मुहाने पर हुई उसकी मौत केवल एक साधारण अपराध नहीं थी, ये उस मानवीय आपदा का रक्त रंजित चरमोत्कर्ष था जिसे अंग्रेज हताशा में अनदेखा करने की कोशिश कर रहे थे। कहानी 1785 में शुरू होती है, जब बर्मा ने अराकान पर आक्रमण किया, जिसके कारण हजारों शरणार्थी भागकर कंपनी के चटगांव जिले में आ गए। ये मगह शरणार्थी अंग्रेजों के लिए कृषि श्रम का एक संभावित जरिया थे, लेकिन वे एक राजनयिक दुस्वप्न भी थे। बर्मी जनरल वानकेचा उच्च पदस्थ अराकानी विद्रोहियों को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित था और उसे कंपनी की सीमाओं की कोई परवाह नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने शरणार्थियों की इस पहली लहर को कैसे संभाला? उन्होंने उन्हें जुआओ डी बैरोस नामक एक पुर्तगाली जमींदार की देखरेख में रख दिया और उसे एक मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन जब बर्मी सेना ने वास्तव में सीमा पार की, तो कंपनी की स्थानीय सेना, जो संसाधनों की कमी से जूझ रही थी और अपनी हार से डरी हुई थी, पीछे हट गई। ये महसूस करते हुए कि ब्रिटिश सुरक्षा एक खोखला वादा है, शरणार्थी पहाड़ियों में भाग गए और जीवित रहने के लिए मुक्त लूटपाट और डकैती का रास्ता चुन लिया। इसी अराजकता के बीच जेम्स रबी को लूट लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। रवि की मौत तक स्थानीय कलेक्टर छिपाने की संस्कृति का पालन कर रहा था। वो कलकत्ता में अपने वरिष्ठों के सामने अक्षम न दिखने के लिए बर्मी छापों की रिपोर्ट को हल्का करके पेश करता था। लेकिन एक ब्रिटिश नागरिक की हत्या ने सब कुछ बदल दिया। ये एक ऐसी खबर थी जिसे अधिकारी अब दबा नहीं सकते थे, जिसने फोर्ट विलियम्स की केंद्र सरकार को आखिरकार ये स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया कि उनकी दक्षिणी सीमा एक कानून विहीन शून्य बन गई है। इस संकट का परिणाम वास्तव में विचित्र था। बर्मी गवर्नर वाजा, जिसे पेगु राजा के नाम से जाना जाता है, उसने रवि की हत्या को एक प्रोपेगेंडा हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उसने ब्रिटिश कलेक्टर को एक ताना मारते हुए पत्र लिखा, जिसमें दावा किया गया कि वो 4,000 मस्कटधारियों के साथ चटगांव पर आक्रमण कर रहा है ताकि कानून व्यवस्था लागू की जा सके और उन लुटेरों को पकड़ा जा सके जिन्होंने अंग्रेज को मारा था। क्या आप इस संकट की दुखद विडंबना जानते हैं? कलेक्टर शियरमैन बर्ड ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए शरणार्थियों को लुटेरा घोषित कर दिया और कहा कि वे कभी भी देश की कोई आवश्यक सेवा नहीं करेंगे। वो पूरी तरह से इस तथ्य को भूल गए कि सुरक्षा प्रदान करने में उनकी अपनी विफलता ने ही उन्हें अपराध के लिए मजबूर किया था। जेम्स रबी की मौत इस बात की याद दिलाती है कि विचारों के साम्राज्य में ईआईसी अक्सर अपने झंडे के नीचे रहने वाले लोगों की सुरक्षा से अधिक सत्ता की छवि की परवाह करती थी।
1: पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं विगत दिवस भोपाल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी। भारत भवन में आयोजित 3 दिवसीय नृत्य समारोह भावानुभाव के दूसरे दिन शास्त्रीय नृत्य की छटा बिखरी। ओडिसी और कथक नृत्य शैलियों की भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने दर्शकों को भक्ति, प्रेम, दर्शन और आध्यात्मिक अनुभूतियां करवाई। प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगन कृत्य नरसिंह राणा और उनके साथी कलाकारों ने गीत गोविंदम की मनोहारी प्रस्तुति दी। इसके बाद प्रस्तुत दशावतार में दर्शकों को भगवान विष्णु के 10 अवतारों की यात्रा पर ले जाया गया। बच्चों की रचनात्मकता, कल्पनाशीलता और कलात्मक अभिव्यक्ति को मंच प्रदान करने के लिए रविंद्र भवन की ललित आर्ट गैलरी में बाल कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें 6 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों ने एक से एक बढ़कर पेंटिंग, पोर्ट्रेट, क्ले मॉडलिंग में अपनी प्रतिभा दिखाई। यह कार्यक्रम 7 जून को भी जारी रहेगा। सुप्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर की पुण्यतिथि पर हम थिएटर ग्रुप द्वारा 22वां स्मरण हबीब रंग आलाप नाट्य महोत्सव 8 से 12 जून तक रविंद्र भवन के अंजनी सभागार में आयोजित किया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ 8 जून को जिन लाहौर नहीं व्याख्या के मंचन से होगा। 9 जून को गुड़िया की शादी, 10 जून को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नाटक अगरबत्ती, 11 जून को चेकमेट और 12 जून को हबीब तनवीर के चर्चित नाटक चरणदास चोर का मंचन किया जाएगा। सभी नाटक प्रतिदिन शाम 7 बजे से प्रस्तुत किए जाएंगे। संगीत प्रेमियों के लिए 7 जून को एक विशेष संगीतमय कार्यक्रम सूफी और बॉलीवुड नाइट का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से SV पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। इसके साथ ही हमारा आज का परिक्रमा कार्यक्रम संपन्न होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं
1: मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गुंजन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको कविता रश्मि रथी का पाठ सुनवाएंगे। आज हम इस कार्यक्रम का द्वितीय भाग सुनेंगे। वाचक स्वर है भगवती सक्सेना, संदीप शर्मा और दीपक नेमा के।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। इस गुच्छे में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा गुलदस्ता जिसकी हर पंखुड़ी चमकदार है, हर रंग सूर्य सा उजला है और हर सुगंध संघर्ष से भरी हुई है। श्रोताओं, पिछले अंश में हमने एक ऐसे क्षण को देखा जहां इतिहास जैसे थम सा गया था और समय स्वयं कर्ण की परीक्षा लेने को ठहर गया था। एक ओर राज्यसभा की मर्यादाएं थी, दूसरी ओर एक तेजस्वी आत्मा जो अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए उद्यत थी। जब कर्ण ने धनुष उठाया तो वो केवल एक वीर का साहस नहीं था, वो उस अग्नि का प्रज्वलन था जो वर्षों से उपेक्षा और अपमान की राख में दबकर धधक रही थी। उसकी टंकार में केवल रण की चुनौती नहीं थी बल्कि समाज के कठोर नियमों को प्रश्न करने का साहस भी था। परंतु श्रोताओं, ये कैसी विडंबना, जहां पराक्रम को प्रणाम होना चाहिए था वहां वंश का लेखा मांगा गया, जहां भुजबल की परीक्षा होनी थी वहां जन्म का तराजू रख दिया गया। कर्ण खड़ा था अडिग अचल, पर भीतर कहीं एक मौन वेदना लहरों की तरह उठ रही थी।
2: हाँ श्रोताओं, उस सभा में जो घटित हुआ वह केवल एक वीर का अपमान नहीं था, वह मानवीय गरिमा पर लगा हुआ प्रश्न चिन्ह था। जब कर्ण से उसकी जाति पूछी गई तब जैसे उसकी आत्मा क्षण भर के लिए कांप उठी, पर अगले ही पल वह सत्य बनकर मुखर हो गई। उसकी वाणी में ज्वाला थी, पर वह ज्वाला विनाश की नहीं स्वाभिमान की थी। उसने घोषणा की कि उसका परिचय उसके कर्म है, उसकी शक्ति है, उसका तेज है। पर सत्य का प्रकाश अक्सर आंखों को चुभता है और वही प्रकाश उस सभा को भी असहज कर गया। कर्ण उस समय केवल एक योद्धा नहीं था, वह हर उस हृदय की आवाज बन गया था जो उपेक्षा के अंधकार में भी अपने अस्तित्व की लौ जलाए रखता है।
0: और फिर जब अन्याय अपनी सीमा लांघ जाता है, जब मौन भी अपराध प्रतीत होने लगता है, तब कहीं से एक स्वर उठता है। ये स्वर केवल समर्थन का नहीं, ये नियति के नए अध्याय का उद्घोष है। यही वो क्षण है जहां कर्ण के जीवन की दिशा बदलने को है, जहां अपमान की अग्नि में तपकर उसका व्यक्तित्व और अधिक दीप्त होने वाला है। अब वो केवल अपनी पहचान नहीं खोजेगा बल्कि उसे संसार के समक्ष स्थापित करेगा।
2: श्रोताओं, कथा अब उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां संबंधों के बीज अंकुरित होते हैं, जहां मित्रता केवल भाव नहीं बल्कि इतिहास रचने वाली शक्ति बन जाती है, जहां एक हाथ बढ़ता है सम्मान देने के लिए और दूसरा हाथ उसे थाम लेता है अपने अस्तित्व को स्वीकारने के लिए। अब कथा में करुणा भी है, तेज भी है, संघर्ष भी है और एक नए भविष्य की आहट भी। तो आइए श्रोताओं, हम प्रवेश करते हैं उसी भाव संसार में जहां अपमान से जन्म लेता है स्वाभिमान और संघर्ष से उदित होता है उज्ज्वल व्यक्तित्व। आइए अब बढ़ते हैं रश्मि रथी के प्रथम सर्ग के भाग 5, 6 और 7 की ओर, जहां कर्ण का तेज और भी प्रखर होकर हमारे समक्ष आलोकित होता है। आइए सुनते हैं प्रथम सर्ग के भाग 5 का काव्य पाठ, जहां सुयोधन कह रहे हैं, करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का, बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार, अंगदेश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ।
0: रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस शुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको, हरे धन्य हो जाए प्राण, तू ग्रहण करे यदि मुझको।
3: कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दह। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उरण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करें दिन मान कि आऊं तेरे कोई काम, कृपा करें दिन मान कि आऊं तेरे कोई काम।
0: घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान।
2: श्रोताओं, यहीं से कुछ प्रश्न ऐसे जन्म लेते हैं जो केवल कथा से नहीं हमारी अंतरात्मा से पूछे जाते हैं। क्या सम्मान का ऋण कभी विवेक से बड़ा हो जाना चाहिए? क्या मित्रता सत्य से ऊपर हो सकती है? और क्या न्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस हम तभी दिखाते हैं जब उससे हमें कोई लाभ मिलने की संभावना हो? हमारे लोक में कहा गया है, सत्य सदा अकेला चलता है पर अंततः वही पथ बनाता है। रश्मिरथी हमें इसी सत्य के प्रति सचेत करती है। कर्ण आज भी जीवित है, कभी किसी दफ्तर के कोने में बैठा हुआ, कभी किसी गांव की धूल भरी पगडंडी पर संघर्ष करता हुआ, कभी किसी विश्वविद्यालय के दरवाजे पर अवसर की प्रतीक्षा में खड़ा हुआ। और दुर्योधन भी आज हमारे ही बीच में है, जो मान देता है, पहचान देता है और उस मान की कीमत भविष्य में चुकवाता है। तभी तो किसी कवि ने कहा है, उपकार जो बंधन बन जाए वह उपकार नहीं व्यापार है। श्रोताओं, हर प्रकाश अपने साथ एक छाया भी लेकर आता है। यह सम्मान जितना उज्जवल था उतना ही गहन उसके भीतर छिपा हुआ बंधन भी था। कर्ण की कृतज्ञता उस क्षण स्वाभाविक थी, पर यही कृतज्ञता आगे चलकर उसके निर्णयों की दिशा भी निर्धारित करेगी। यही वह बिंदु है जहां मनुष्य का हृदय और उसका विवेक एक सूक्ष्म द्वंद में प्रवेश करते हैं।
0: मनुष्य का हृदय बड़ा सरल होता है, जहां उसे पहली बार मान मिलता है वहां वो स्वयं को अर्पित कर देता है। कर्ण भी उसी सहज भाव में बह गया, उसने दुर्योधन को केवल मित्र नहीं अपना जीवन ऋण मान लिया। परंतु इतिहास गवाह है, कभी कभी उपकार का ये ऋण इतना गहरा हो जाता है कि वो मनुष्य के निर्णयों पर अधिकार कर लेता है। श्रोताओं, यही वो बिंदु है जहां रश्मिरथी हमें भीतर तक झकझोर देती है। वो पूछती है कि क्या हर उपकार निस्वार्थ होता है, क्या हर सम्मान स्वतंत्रता देता है, या कभी कभी वो एक अदृश्य बंधन भी बन जाता है। कर्ण आज भी हमारे बीच जीवित है, हर उस व्यक्ति में जिसे देर से ही सही पर उसका अधिकार मिला, हर उस हृदय में जो कृतज्ञता और सत्य के बीच संतुलन साधने का प्रयास करता है। और दुर्योधन भी हमारे समय में उपस्थित है, कभी अवसर बनकर, कभी सहारा बनकर, और कभी एक ऐसे संबंध के रूप में जिसकी कीमत समय के साथ समझ आती है।
2: इसी गहन द्वंद के साथ आइए अब हम रश्मिरथी के उस अगले पड़ाव की ओर अग्रसर होते हैं, जहां प्रत्येक चरण केवल गति नहीं नियति का स्पर्श है, जहां उठाया गया हर कदम काल के पटल पर अमिट रेखा बन जाता है और मनुष्य का निर्णय स्वयं इतिहास का विधान बनकर प्रतिष्ठित हो उठता है। ये यात्रा अब और गहरी होने वाली है, जहां मित्रता की ऊष्मा भी है और उसके भीतर छिपी हुई कसौटी भी, जहां सम्मान का उजाला है और उसके साथ चलती हुई एक लंबी छाया भी। आइए सुनते हैं प्रथम सर्ग के भाग 6 को।
0: लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुल का कुल कल कल से। विनय पूर्ण प्रतिवंदन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धन धान। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य ये खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में, बोले छी ये क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को, देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंग भूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरुद्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा ये राहु नया फिर कौन।
2: दिनकर जी के शब्दों की चेतना में कर्ण से मानो स्वयं काव्य बोल उठता है। तुम सूर्य के अंश हो, इसलिए तुम्हारा तेज स्वभाव से तुम्हारे साथ है, पर यह तेज किसी एक छाया का पक्ष नहीं करता, वह सबको आलोकित करने के लिए है। सम्मान जब निःशर्त मिले तब वह प्रसाद बनता है, और जब शर्तों के साथ आए तो वही सम्मान परीक्षा का रूप धर लेता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर यहां ये स्मरण कराते हैं कि कर्ण से प्रश्न समाज नहीं स्वयं धर्म कर रहा है, कि वह अपने तेज से पथ रचेगा या किसी और की राह का दीप बनकर रह जाएगा। क्योंकि मित्रता मधुर हो सकती है, पर सत्य उससे भी अधिक गहन है, और अंततः वही मनुष्य का अपना होता है जो उसे सही दिशा देता है।
0: समय के रथ पर सवार कर्ण अपने जीवन के उस कठिन चक्र से गुजर रहा है, जहां सम्मान और परीक्षा एक साथ सामने खड़ी हैं। ये केवल एक योद्धा की घड़ी नहीं, बल्कि एक मनुष्य की आत्म परीक्षा का क्षण है, जहां तेज विवेक से टकराता है और जहां हर चयन इतिहास में बदल जाने को आतुर है। आइए श्रोताओं, अब हम पहुंचते हैं रश्मिरथी के प्रथम सर्ग के अंतिम पड़ाव पर, जहां गुरु का भय, मित्रता का आलिंगन, सूर्य का स्नेह और मां की मौन वेदना सब समाहित है, जहां भविष्य की रेखाएं और गहरी हो जाती हैं। आइए सुनते हैं प्रथम सर्ग के भाग 7 का काव्य पाठ। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एक लव्य से लिया अंगूठा कढ़ी नमुक से आह, रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक ये युद्ध भट भट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूम केतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा ना कर्ण को ये निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज बनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन औकर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोस्ती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न के जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव।

0: अभा को देखकर स्वयं गुरुओं का धैर्य डगमगाने लगता है। ये वही क्षण है जहां प्रतिभा और व्यवस्था के बीच एक अदृश्य संघर्ष प्रारंभ होता है, एक ऐसा संघर्ष जो आगे चलकर इतिहास की दिशा को मोड़ देगा।
1: कर्ण और दुर्योधन दो शरीर पर एक संकल्प गलबाही डाले जिस प्रकार रंगभूमि से निकलते हैं, वह केवल मित्रता का दृश्य नहीं बल्कि एक ऐसे संबंध का आरंभ है जो समय की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला है। परंतु हर उत्सव के पीछे एक मौन पीड़ा भी छिपी होती है। जब समस्त सभा आनंद में डूबी हो तब एक हृदय ऐसा भी है जो इस दृश्य को देखकर भीतर ही भीतर कहीं टूट रहा है, और वो है कुंती का हृदय।
0: ये मौन केवल एक स्त्री का मौन नहीं, ये उस सत्य का मौन है जो समय से पहले उजागर नहीं हो सकता। ये उस पीड़ा का मौन है जिसमें स्वप्न बिखर जाते हैं और हृदय स्वयं को ही समझाने में असमर्थ हो जाता है। सूर्य भी जैसे इस दृश्य का साक्षी बनकर ठहर जाता है, अपने पुत्र को स्नेहिल किरणों से स्पर्श करता हुआ मानो उसे आशीष दे रहा हो। प्रकृति भी इस क्षण में सहभागी है, क्योंकि ये केवल एक घटना नहीं, ये नियति का गहन संकेत है।
1: आने वाले क्षणों में यह तेजस्वी पुरुष केवल रणभूमि में ही नहीं अपने भीतर भी अनेक युद्ध लड़ेगा, जहां दानवीरता उसकी पहचान होगी और दुविधा उसकी परीक्षा। प्रथम सर्ग की समाप्ति पर दिनकर जी के शब्दों को शीश नवाकर प्रतीत होता है कि कर्ण का रथ अब पूर्ण वेग से काल की दिशा में बढ़ चला है। अपमान की धधकती भट्टी में तपकर उसका पुरुषार्थ कुंदन हुआ है, और मित्रता की सौगंध ने उसके जीवन को रण पथ से बांध दिया है। आगे जो आने वाला है वह केवल युद्ध नहीं, वह धर्म, दुविधा और दानवीरता का महासंग्राम है। सूर्यपुत्र कर्ण अब कथा नहीं रहा, वह इतिहास की छाती पर उगता हुआ वह तेज है जो रक्त से लिखे भविष्य को और भी उजास देना चाहता है।
0: दोस्तों, अब समय है आप सभी से अनुमति लेने का। रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर जी का वो विराट काव्य वृक्ष है जिसकी जड़ें भारतीय चेतना में गहराई तक फैली हैं और जिसकी प्रत्येक शाखा मनुष्य, धर्म और वीरता के किसी नए सत्य को प्रकट करती है। प्रथम सर्ग उस वृक्ष की केवल एक सशक्त शाखा है। आगे द्वितीय सर्ग में ये काव्य और भी गहन छाया और भी प्रखर तेज के साथ हमारे सामने उपस्थित होगा। उसी आशा और प्रतीक्षा के साथ हम पुनः काव्य पाठ लेकर आपके बीच लौटेंगे।
1: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित गुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति लेखन दीपक नेमा का। इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं पर विराम लेती है। आपके साथ हम थे, मैं भगवती सक्सेना,
0: मैं संदीप शर्मा,
2: मैं दीपक नेमा।
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं पर विराम लेती है। फिर मिलेंगे एक नए अंक में, तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
0: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
3: पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गुंजन, जिसके अंतर्गत आपने कविता रश्मि रथी का पाठ सुना। कलाकार थे भगवती सक्सेना, संदीप शर्मा और दीपक नेमा।
4: कॉक्स बाजार एक मानवीय त्रासदी और नौकरशाही का विश्वासघात। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध समुद्र तट स्थलों में से एक कॉक्स बाजार एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जिसकी मृत्यु अत्यंत पेशेवर दुख और हताशा की स्थिति में हुई थी। वो किसी विदेशी सेना से नहीं बल्कि अपने ही सहयोगियों की निरंतर टालमटोल की नीति से हार गया था। वो व्यक्ति था कैप्टन हीराम कॉक्स, और 1799 में उसका दुखद अंत शुरुआती ब्रिटिश राज की उस गलाकाट हकीकत को उजागर करता है, जहां नौकरशाही की ईर्ष्या अक्सर किसी भी युद्ध के मैदान से अधिक घातक होती थी। 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक मानवीय आपदा का सामना कर रही थी। बर्मी हिंसा से बचकर भागे 25,000 से अधिक अराकानी शरणार्थी चटगांव के दक्षिणी जंगलों में भूख से मर रहे थे। इस संकट को सुलझाने के लिए कलकत्ता की केंद्र सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को दरकिनार करते हुए कॉक्स को विशेष आयुक्त नियुक्त किया। वो पैदल सेना के केवल एक मामूली कैप्टन थे, फिर भी उन्हें प्रो कंसुलर शक्तियां दी गई थीं, जिससे वे भूखों को खाना खिलाने के लिए स्थानीय खजाने से असीमित धन निकाल सकते थे। क्या आप जानते हैं कि स्थानीय अधिकारियों ने अपने जिले के इस बाहरी के दखल पर कैसी प्रतिक्रिया दी? उन्होंने सक्रिय असहयोग का एक ऐसा अभियान चलाया जो जितना प्रभावी था उतना ही क्रूर भी। जब कॉक्स ने आपातकालीन राहत के लिए 80,000 रुपए की मांग की, तो चटगांव के कार्यवाहक कलेक्टर थॉमस पाउनी ने खजाना खोलने से साफ मना कर दिया। पाउनी स्थापित प्रक्रिया के पीछे छिप गए और जोर देकर कहा कि उन्हें पैसा जारी करने से पहले राजस्व बोर्ड से 3 प्रतियों में प्राधिकरण चाहिए। जब कॉक्स ने अनाज के लिए पड़ोसी जिलों ढाका और त्रिपुरा की ओर देखा, तो वहां के अधिकारियों ने भी बहाने बनाए। यहां तक कि जब चावल की व्यवस्था हो गई, तो स्थानीय नौकरशाही ने अचानक दावा किया कि उन्हें शरणार्थियों तक अनाज पहुंचाने के लिए कोई नाव नहीं मिल रही है। जब तक कोई सहायता बस्ती तक पहुंचती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों ने आने वाले सामान का अधिकांश हिस्सा हड़प लिया, जबकि शरणार्थी भोजन के अभाव में प्रतिदिन मरते रहे। राजस्व में भारी खर्च और इस अव्यवस्था को देखकर कार्यवाहक गवर्नर जनरल सर अल्यूड क्लार्क ने इन प्रयोगों को विफल घोषित कर दिया। उन्होंने केवल 1 महीने के भीतर कॉक्स को वापस बुला लिया, ये कहते हुए कि उनकी उपस्थिति जिले के नियमित और स्थापित अधिकार में बहुत अधिक हस्तक्षेप करती है। कॉक्स का मनोबल और उनका स्वास्थ्य अपने ही साथियों के इस दैनिक प्रतिरोध के दबाव में टूट गया। ड्यूटी से मुक्त होने के कुछ ही समय बाद वे सीमावर्ती क्षेत्रों की जहरीली जलवायु में गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। कॉक्स बाजार शहर उनका एकमात्र स्मारक है, लेकिन उनकी कहानी लिमिटेड राज की एक दिलचस्प याद दिलाती है। ये साबित करता है कि शुरुआती कंपनी शासन में गवर्नर जनरल का मानवीय मिशन भी कुछ दृढ़ स्थानीय नौकरशाहों द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और पेशेवर क्षेत्र की रक्षा के लिए विफल किया जा सकता था। हीराम कॉक्स केवल असफल नहीं हुए, उन्हें उसी मशीनरी ने व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया जिसकी उन्होंने सेवा की थी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है और अब जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सेवा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारी सांध्यकालीन सेवा आरंभ होगी शाम 5 बजे कार्यक्रम अक्षय निधि के साथ। शाम 5:10 पर सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम। शाम 6 बजे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वचन का राग कार्यक्रम में आज हम भारत रत्न गोपीनाथ बारदोलाई के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। 6:30 पर कार्यक्रम बाल सभा, जिसमें आज का विषय है बुजुर्गों की बातें और बड़प्पन। शाम 7 बजे टेक गुरु कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवाएंगे गूगल सुपर सर्चर एकता सरीन से। शाम 7:30 पर हमारी सेना हमारा गर्व कार्यक्रम में आज का विषय होगा भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत करेंगी पूर्वा खले। रात्रि के 8 बजे कार्यक्रम देश के संस्थान। इस कार्यक्रम में आज हम DRDO पर जानकारी प्राप्त करेंगे। रात्रि के 8:30 पर कार्यक्रम हिंदोस्तान हमारा। आज का कार्यक्रम रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर समर्पित केंद्रित होगा। रात्रि के 9 बजे भोपाल में आयोजित भाव अनुभव कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट और 9:30 पर कार्यक्रम काव्य गुंजन। तो ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। दोपहर के 12 बज चुके हैं, अब हमारी प्रातःकालीन सभा संपन्न होती है। शाम 5 बजे हमारी सांध्यकालीन सेवा का आरंभ होगा। तब तक आप हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत एवं अन्य सांगीतिक प्रस्तुतियों का आनंद ले सकते हैं।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को मेरा शत शत प्रणाम।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: कुछ याद उन्हें भी कर लो।
1: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

मैं अशोक चक्रधर FM रेडियो का अभिनंदन करता हूं जो 90.8 पर आप सुनते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इसका प्रसार और प्रचार निरंतर हो रहा है। ये रेडियो आज़ाद हिंद है। आज़ाद हिंद हमें याद दिलाता है नेताजी सुभाष की, याद दिलाता है हमारे स्वाधीनता संग्राम की, याद दिलाता है हमारे गौरव की। इस गौरवशाली परंपरा को मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूँ।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत प्रमिला के साथ।
0: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भारत भारती।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। अब समय है कार्यक्रम भारत भारती का, जिसमें आप आनंद लेते हैं संगीत का।

आज इस कार्यक्रम में पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं बुंदेली गायन। कलाकार हैं गया प्रसाद प्रजापति और उनके साथी।

क्योंकि माँ भगवती आदि शक्ति दुर्गा और विघ्नों को हरण करने वाले भगवान गजानन के साथ साथ माता

तीन सखियां बड़े प्रेम से पनघट पर आपस में बात कर रही हैं। बोली सखी बताओ आपके बे कैसे हैं? एक दूसरे को बता रही हैं कि मेरो ढोलक बजाए, दूसरी बोली

0: श्रोताओं, कार्यक्रम भारत भारती में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूं सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं बुंदेली गायन। कलाकार हैं फूल सिंह मांडरे और उनके साथी।
2: बुंदेली संस्कार गीत तीज त्योहार पे गाए जाने वाले गीत पेश कर रहे हैं।

0: कार्यक्रम भारत भारती में अभी आप आनंद ले रहे थे बुंदेली गायन का। कलाकार थे फूल सिंह मांडरे और उनके साथी। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अतुल्य भारत।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
3: अतुल्य भारत।
2: हाँ, घूमना किसे पसंद नहीं, नई नई जगहें देखना, नए नए लोगों से मिलना, एक अलग तरह की संस्कृति और एक अलग तरह का नजारा।
4: हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाई, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ घूमने फिरने के लिए।
2: और इन सब का अपना एक अलग ही आनंद होता है।
4: हो भी क्यों ना,
2: एक अलग ही रोमांच है। इस रोमांच की तमन्ना हमें मजबूर करती है कि हम अपने खोल से बाहर निकले और देखें कि दुनिया कितनी बड़ी और कितनी विविध है।
4: बिल्कुल ठीक कहा कंचन तुमने, वरना हमारी जिंदगी तो ऐसी हो जाएगी जैसे कुएं के अंदर एक मेंढक अगर हम घूमने नहीं निकले। एक बात बताऊं तुम्हें?
2: हाँ?
4: प्रसंग बस हमें 14वीं सदी के एक यात्री इब्न बतूता की याद आती है। मोरक्को के टेंजियर शहर का वो रहने वाला था।
2: हाँ?
4: और पैदाइशी तौर पर उसे घूमने का जबरदस्त

0: माने में अकेले तो क्या, कारवा के साथ चलने पर भी जान की कोई गारंटी नहीं होती थी।
1: हाँ, आपको घर बैठे घुमाने का रोमांच अनुभव कराने के लिए चलो आज हम आपको सैर पर ले चलते हैं, एक रेडियो यात्रा पर। इस कड़ी में सबसे पहले हम चलते हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में।
0: वाह, वाराणसी से मुझे कहावत याद आ गई।
1: कौन सी?
0: शाम अवध सुबह काशी, यानी अवध की शाम और काशी की सुबह बड़ी ही सुहानी होती है।
1: ये तो ठीक है,
0: सच बात है। काशी यानी कि वाराणसी में सुबह मुंह अंधेरे ही हर हर गंगे हर हर महादेव करती टोलियां जब गंगा तट की तरफ बढ़ती हैं, तो मन एक बार की भक्तिमय हो उठता है। सूरज के जगने से पहले ही ये शहर जग पड़ता है। मंदिरों की घंटियां बजने लगती हैं और गंगा का घाट चहल पहल से भर जाता है।
1: काशी नगरी पूरी दुनिया में सबसे निराली है। भगवान शिव ने इसे अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है और मानता तो यह भी है कि यह शहर दुनिया में होकर भी मानो दुनिया में नहीं है, और इसलिए जब पूरा विश्व प्रलय में डूब जाएगा तो कहते हैं तब काशी ही अपनी जगह पर कायम रहेगी। ऐसी मान्यता लोगों में आदि काल से चली आ रही।
0: और काशी को वाराणसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वरुणा और असी नदियों के बीच बसा हुआ है। श्रोताओं, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये दोनों ही नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इन नदियों ने अपने प्यार भरे आलिंगन में इस शहर को ऐसे पाला है जैसे दो माताएं किसी बच्चे को पालती हैं।
1: वाह वाह, क्या कल्पना करी है तुमने। दुनिया के इतिहास में अनेक नगरों का उत्थान और पतन होता रहा है। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को ही ले लो। आज से 5000 साल पहले बसे इन शहरों में अब केवल मलबे ही मलबे बचे हैं, लेकिन वाराणसी शायद पूरी दुनिया का ऐसा सबसे पुराना शहर है जो लगातार जिंदा है, अनवरत धड़क रहा है। और हो भी क्यों ना, शिव जी की खास पसंद जो है ये काशी।
0: हाँ, और इसके बारे में मार्क ट्विन ने तो ये भी कहा था कि ये शहर ओल्डर देन हिस्ट्री है। वे लिखते हैं कि ये शहर इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, पुराणों से भी पुराना है, और इन सब की आयु को अगर एक साथ जोड़ लिया जाए तो ये शहर इससे भी दुगना पुराना है।
1: वाराणसी शहर इतना पुराना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है। इस ग्रंथ में इसे काशी कहकर के पुकारा गया है। काशी शब्द का अर्थ होता है सिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का शहर या ज्योति का शहर।
0: और प्रकाश ज्ञान का भी प्रतीक होता है, धर्म का भी और जागरण का भी।
1: बिल्कुल,
0: ये हम नहीं कहते, हमारे पुराने श्लोक कहते हैं।
1: कौन से श्लोक?
0: अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आपको बता दें कि ये पंक्तियां वृदारण्यक उपनिषद के नवरस मंत्र से ली गई हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन वाराणसी के संदर्भ में प्रकाश का अर्थ ज्ञान नहीं, जागरण नहीं, बल्कि कुछ और ही है, और वो क्या है ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: ऋग्वेद के बाद अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ स्कंद पुराण है, जिसमें पूरा का पूरा एक काशी खंड ही है।
1: अच्छा।
0: और इस खंड में 15,000 श्लोक हैं। इनमें से एक श्लोक में भगवान शंकर कहते हैं,
1: क्या?
0: अखिल विश्व के तीनों लोकों में केवल एक ही शहर मेरा है और वो है काशी।
1: भाई वाह, क्या बात है।
0: और इसी शहर में मेरा शाही महल भी है।
1: श्रोताओं, अगर आप भूल रहे हो तो हम आपको याद दिला दें कि गंगा भी शिव की जटा से ही निकली है, यानी हर तरह से वाराणसी शिव में है। तभी तो हर हर गंगे यहाँ का सबसे बड़ा मंत्र है।
0: और रामायण व महाभारत ग्रंथों में भी वाराणसी की चर्चा बारंबार मिलती है। गौतम बुद्ध की बात करें तो उनका समय भी आज से लगभग 2500 साल पहले का है।
1: बिल्कुल।
0: ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना पहला उपनिषद ऋषिपत्तन में दिया था। ये ऋषिपत्तन ही आज सारनाथ है, जो वाराणसी से ही लगा हुआ है, जैसे कि भोपाल और बैरागढ़।
1: हाँ, गौतम बुद्ध बोधगया से ज्ञान प्राप्ति के बाद जब यहाँ आए तब यहाँ पर एक बगीचा हुआ करता था जिसे मृगाड़दव कहा जाता था। इस शब्द का मतलब होता है कि ऐसा बगीचा जिसमें हिरण रहते हों। आज भी यह बगीचा है जिसे डेयर पार्क कहा जाता है और आज भी यहाँ पे हिरण रहते हैं।
0: और इस बगीचे में ही गौतम बुद्ध जी ने 5 ब्राह्मणों को अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। बौद्ध परंपरा में ये घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है, जिसका मतलब होता है धर्म के पहिए का गतिशील होना।
1: हाँ, बुद्ध के निर्वाण के बाद सारनाथ में धमेक स्तूप बनाया गया जिसके आज केवल अवशेष ही मिलते हैं। यहाँ मुलागन गुटी नाम का एक विहार भी हुआ करता था। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला वर्षाकाल यहीं व्यतीत किया था और अब इस विहार को श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी द्वारा पुनर्निर्मित किया गया है।
0: इस तरह बुद्ध से संबंधित होने के कारण सारनाथ आज दुनिया भर के बौद्ध लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। और यहाँ हर समय पर जापान, थाईलैंड, तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार देशों के तीर्थयात्रियों का मेला लगा रहता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सारनाथ का एक और महत्व है और वह यह है कि यहाँ से प्राप्त अशोक की लाट से भारत सरकार का राज्य चिन्ह लिया गया है जिसमें 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं।
0: बौद्ध धर्म के समान ही जैन धर्म से भी वाराणसी का गहरा रिश्ता रहा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म भी यही हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे।
1: वाराणसी अपने खूबसूरत घाटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यूं तो गंगा हर जगह मनोहारी है पर काशी में तो इसकी छटा निराली है। मॉडर्न एज के जाने माने पेंटर मकबूल फिदा हुसैन को तो बनारस व यहाँ का गंगा तट इतना भाया कि उनकी पेंटिंग में अनेकों रंग इसमें बिखरे हुए हैं।
0: यहाँ इसके किनारों पर कुल 80 घाट बने हुए हैं जो राजघाट से शुरू होकर 80 घाट तक फैले हैं। इन्हीं में से एक घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। राम जी के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र ने जब अपने सपने में अपना राज्य दान दे दिया था तब वे यहीं आकर एक डोम के दास बने थे।
1: लाइफ का कंट्रास्ट अगर देखना हो तो मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट देखें। एक मृत्यु का प्रतीक है तो दूसरा जीवन का। एक पर दाह संस्कार के लिए शवों की लाइन लगी रहती है तो दूसरी तरफ शादी विवाह की मन्नतें पूरी करने वालों से अटा पड़ा रहता है। पूरा का पूरा वातावरण जीवन की किलकारियों से भरा रहता है।
0: उस क्षेत्र के वरवधु शादी के बाद दशाश्वमेघ अवश्य आते हैं। गंगा माँ को चुनर चढ़ाई जाती है, दीप दान चलता रहता है, मंदिरों के घंटे जीवन का उद्घोष करते रहते हैं। घाट क्या है, पूरा एक शहर है। विदेशी यात्रियों का सबसे ज्यादा जमावड़ा भी यहीं दिखाई देता है। घाट की सीढ़ियों पर वे ऐसे शांति से बैठे रहते हैं जैसे यहाँ विद्यमान आध्यात्मिक ऊर्जा को चुपचाप आत्मसात कर रहे हो।
1: हाँ, और दूसरी ओर मणिकर्णिका कुछ और नहीं बस मौत का सन्नाटा है। यहाँ यहाँ आकर के कबीर का दोहा याद आता है।
0: कौन सा?
1: पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात।
0: यानी मनुष्य का शरीर और क्या है, बस पानी का एक बुलबुला ही तो है। यहाँ से लौटने के बाद हफ्तों तक जीवन की निसारता पीछा करती रहती है। वैराग्य अनुराग पर चोट करता रहता है पर अंत में जीत अनुराग की ही होती है। ऐसा ना हो तो सब सन्यासी ही हो जाएं।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जब काशी की बात चले तो काशी विश्वनाथ मंदिर की चर्चा भला कैसे ना हो। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आपको बता दे कि इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में भी है, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि वाराणसी को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं और यह लाइट कुछ और नहीं ज्योतिर्लिंग ही है।
0: दरअसल ज्योतिर्लिंग उस देव स्थान को कहते हैं जहाँ शिव मूर्ति की नहीं बल्कि शिवलिंग की उपासना होती है।
1: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि शिव सनातन है, निराकार है। सबसे पहले उन्होंने स्वयं को अरिद्र नक्षत्र की एक रात्रि में एक अग्नि शिखा के रूप में प्रकट किया जो धरती को फाड़ करके बाहर निकल रही थी। इस अग्नि शिखा को ही प्रतीकात्मक रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट किया जाता है।
0: श्रोताओं, तीन ज्योतिर्लिंग के नाम तो आपने सुन ही लिए, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और काशी विश्वनाथ। चलिए अब आपको शेष नौ नाम भी बताए देते हैं। केदारनाथ, वैद्यनाथ, सोमनाथ, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घुश्मेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग।
1: श्रोताओं, काशी के विश्वनाथ मंदिर को कभी कभी गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता था। वजह यह थी कि इस मंदिर के शिखर पर 50 फीट ऊंचा सोने का पत्थर चढ़ा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि यह पत्थर किसने चढ़ाया था? पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने।
0: इस मंदिर का कुछ रिश्ता हमारे मध्य प्रदेश से भी है।
1: हाँ,
0: राजमाता अहिल्याबाई होलकर कितनी शिव भक्त थी ये तो सभी जानते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और गंगा के कुछ घाटों को भी पक्का करवाया था। कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि गंगा में डुबकी लगाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर ले तो मोक्ष का द्वार उसके लिए स्वयमेव खुल जाता है।
1: और शायद यही वजह है कि आदि शंकराचार्य से लेकर के गुरु नानक, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद आदि कितने ही महापुरुषों ने इस मंदिर के दर्शन किए, स्वयं को धन्य किया। इतिहास के लंबे दौर में अनेक बार इस मंदिर को हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार दुगनी शान शौकत के साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया।
0: श्रोताओं, वाराणसी शहर धर्म और आध्यात्म की एक गंगा है, तभी तो यहाँ एक से बढ़कर एक पवित्र स्थल है। अब संकट मोचन को ही ले लीजिए। उल्लेख मिलता है कि वाराणसी में असी नदी के पास एक जगह पर हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास को साक्षात दर्शन दिए थे, सो उन्होंने उस जगह पर संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना की।
1: लेकिन आज जो मंदिर का ढांचा है उसका निर्माण पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में बंदरों के झुंड मिलते हैं, इतने कि आप हैरान हो जाएं। ऐसा लगता है कि हम वानर लोक में आ गए हैं। पता नहीं जाने कैसे मालूम पड़ जाता है कि ये उनके राजा का मंदिर है।
0: जरा याद करें यहाँ पर हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ।
1: कौन सी?
0: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। यानी यहाँ हनुमान जी को कपीश कहा गया है।
1: बिल्कुल,
0: इसका अर्थ है कपि यानी बंदरों के ईश और लौकिक अर्थ में राजा। प्रसंगवश आपको बता दें कि हनुमान चालीसा की रचना भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही की है और उसकी भाषा भी अवधी है।
1: हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि संकट मोचन मंदिर के बंदर भी बड़े नटखट और शरारती होते हैं। हो सकता है कि ये आपकी कोई कीमती चीज उठा ले जाए, लेकिन केवल बार्गेनिंग के लिए नहीं, आप उनसे अपनी चीज को वापस लेना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज उनको देनी पड़ेगी अदला बदली के लिए। बंदरों को आप कुछ खाने पीने की चीज दे दीजिए, वापस बदले में वो आपकी चीज आपको वापस लौटा देंगे।
0: संकट मोचन का रुतबा अगर आपको देखना हो तो जरा कभी मंगलवार या शनिवार को पधार कर देखिए। घंटों के पहले अगर दर्शन करने की आपकी बारी आ जाए तो कहिएगा। कहते हैं अगर किसी की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी ना हो तो उसका सबसे प्रभावशाली उपाय है संकट मोचन के दर्शन करना।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हम वाराणसी की बात करें और वाराणसी के शिल्प की बात ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। वाराणसी का शिल्प बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, खासकर यहाँ की बनी हुई बनारसी साड़ियाँ। इन साड़ियों का भारतीय लोगों के लिए क्या दर्जा है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर दुल्हन की यह अभिलाषा होती है कि वह अपने विवाह के अवसर पर बनारसी साड़ी जरूर पहने।
0: ये साड़ियाँ होती तो सिल्क की हैं, पर इन पर सोने और चांदी की जरी की जाती है। एम्ब्रॉयडरी इतनी जबरदस्त होती है कि साड़ियाँ भारी भरकम हो जाती हैं, इसलिए ये केवल खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें पहनना संभव ही नहीं।
1: भारत की बात छोड़ दें तो विदेशों में भी इन साड़ियों के प्रति भारी दीवानगी देखने को मिलती है। अगर आपने अपने किसी एनआरआई दोस्त की पत्नी को बनारसी साड़ी भेंट कर दी तो समझ लीजिए कि जिंदगी भर के लिए वह आपका हो गया। वास्तव में शादी विवाह के मौके पर इस साड़ी का तोहफा देना एक बड़ी ही महानता मानी जाती है।
0: यहाँ आपको बता दें कि सिल्क की बनी बनारसी साड़ियाँ बनारस की प्राचीन संस्कृति का अंग नहीं रही हैं। लंदन का एक व्यापारी रॉल्फ फिच 16वीं शताब्दी में भारत आया। उस समय भारत पर सम्राट अकबर की हुकूमत थी। फिच ने भारत के अनेक शहर घूमे जिनमें वाराणसी भी था। उसने लिखा है कि वाराणसी सूती कपड़ों का एक प्रमुख केंद्र था।
1: श्रोताओं एक बात हम आपको बता दें, सम्राट अकबर के काल तक वाराणसी सिल्क टेक्सटाइल के लिए नहीं जाना जाता था। वास्तव में बनारस की साड़ियां तो गुजरात के बुनकरों की देन है। 17वीं शताब्दी के बाद गुजरात में भयानक अकाल पड़ा और वहां से बहुत सारे बुनकर पलायन करके बनारस में आ गए और इन्हीं लोगों ने बनारसी साड़ियों की नींव डाली।
0: बनारस की बात चले तो यहाँ की गलियाँ कैसे छूट सकती हैं? पूरी दुनिया में मशहूर हैं यहाँ की गलियाँ।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं तो कई बार भटक चुका हूँ इन गलियों में।
0: बाहर वालों के लिए तो भूल भुलैया ही है, तो यहाँ वालों के लिए तोहफा। सड़क पर जाम लगा है, कोई बात नहीं, भीतर ही भीतर गलियों से निकल जाइए।
1: आप पूरा का पूरा शहर इन गलियों के सहारे नाप सकते हैं। करोड़ों का व्यापार इन गलियों में होता है। बनारसी साड़ियों की अच्छी से अच्छी दुकानें इन्हीं गलियों में हैं। बनारस के नायाब हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी इन्हीं गलियों में मिलते हैं।
0: श्रोताओं विश्वनाथ मंदिर की चर्चा तो हो ही चुकी है। दशाश्वमेध घाट की सड़क से इस मंदिर को जोड़ने का काम भी एक गली ही करती है।
1: बिल्कुल।
0: जिसे विश्वनाथ गली कहा जाता है। गली क्या है, पूरा एक शहर है, मिनी वाराणसी आप देख सकते हैं यहाँ पर।
1: हाँ, एक से बढ़कर एक हैंडीक्राफ्ट के सामान, भगवान की अद्भुत मूर्तियाँ, राजा और सिपाही, पर्स, साड़ियाँ, गहने, ऐसा लगता है कि सपनों की गलियों में तैर रहे हैं आप। विदेशी पर्यटकों की तो भरमार रहती है इस गली में, लेकिन बार्गेनिंग बड़ी जबरदस्त होती है। कुछ खरीदना हो तो होशियार रहिएगा आप।
0: अरे हाँ, बनारस जाइएगा तो बनारसी लस्सी पीना मत भूलिएगा।
1: अच्छा,
0: वो स्वाद, वो सुगंध, आहा, वो स्टाइल आप कहीं और पा ही नहीं सकते। ताजी मलाईदार दही आपके सामने ही फेंटी जाएगी और बर्फ का चूरा मिलाया जाएगा, शक्कर मिलाई जाएगी और ऊपर से गुलाब जल डालकर आपको सर्व की जाएगी मलाई की परत के साथ
1: जी।
0: मिट्टी के ये बड़े बड़े कुल्हड़ में देखते ही बस मुंह में पानी आ जाएगा।
1: अरे मुझे तो सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लस्सी बनाने की परंपरागत कला और पूरी तरह से हैंडमेड काम, ना मिक्सी ना फ्रिज और लस्सी की लस्सी।
0: लस्सी के अलावा एक और भी चीज मशहूर है बनारस की।
1: मुझे पता है आपका इशारा क्या है, बनारसी पान की तरफ ना।
0: हाँ, बनारसी पान भी बनारस की एक पहचान है। यूं तो कलकतिया पान भी मशहूर है।
1: हाँ।
0: पर बनारसी पान की बात ही कुछ और है। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर है?
1: भाई कलकतिया पान बिल्कुल पक्का हरा होता है और बनारसी पान हल्का सा पीलापन लिए हुए होता है। मुझे तो इतना ही पता है और इसीलिए इस कलकतिया पान की तुलना में इनमें कड़वापन कम होता है। बनारस के लोगों की कमजोरी है यह पान और शायद बनारस के बाहर के लोगों की भी। तभी तो डॉन फिल्म का यह गाना कि खाई के पान बनारस वाला आज भी जब बसता है ना तो लोग झूम उठते हैं।
0: हाँ।
1: श्रोता बनारसी पान के बाद आपको याद दिला दे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का बनारसी घराना बड़ा प्रसिद्ध है और यह घराना तबला वादन में महारत रखता है।
0: धर्म प्राण वाराणसी को भारत के 7 मोक्षदायी स्थलों में एक माना जाता है।
1: बिल्कुल।
0: गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका व द्वारवती स्थल मोक्षदायक हैं।
1: भारतीय उपमहाद्वीपों के शक्तिपीठों के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ये वे स्थल है जहां पर दक्ष की पुत्री तथा भगवान शिव की पत्नी के विभिन्न अंग कट करके गिरे थे। इन सभी स्थलों पर आज शक्तिपीठों की स्थापना की गई है और ये पीठ अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। और वाराणसी में सती के कान की बाली गिरी थी, इस स्थान पर ही आज विशालाक्षी मंदिर बना हुआ है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं वाराणसी से संबंधित कुछ महापुरुषों की।
1: बिल्कुल।
0: वाराणसी असाधारण नगर है। यहाँ के वातावरण में चैतन्य लहरियां बहुत होती हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले व्यक्ति को एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है।
1: हाँ।
0: ऐसे लोगों का नाम गिनाने बैठे जो वाराणसी के दीवाने रहे हैं तो एक पूरा ही एपिसोड नाकाफी रहेगा, लेकिन हम कुछ चुनिंदा लोगों की बात करते हैं।
1: चलो शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं महाकवि तुलसीदास से। इन्होंने अपना अंतिम जीवन वाराणसी के एक गंगा घाट पर व्यतीत किया और अंत में देह त्याग भी यहीं किया। इस घाट का नाम तुलसी घाट कहलाता है।
0: गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह कबीर दास जी का भी वाराणसी से गहरा संबंध है। उनका पालन पोषण यहाँ के एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। जिस जगह पर कबीर रहे और पले वो आज कबीर चौरा कहलाता है।
1: अब हम बात करते हैं महामना मदन मोहन मालवीय की। इनका जन्म तो इलाहाबाद में ही हुआ था, पर इनकी असली कर्मभूमि रही वाराणसी, जहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी के BHU की स्थापना करके वे अमर हो गए।
0: श्रोताओं, आपको ये बता दें कि ये यूनिवर्सिटी न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। इसका केवल मुख्य कैंपस ही 1300 एकड़ में फैला हुआ है।
1: हाँ, तो मदन मोहन मालवीय जो पेशे से वकील थे, भारत की गरीबी का सबसे प्रमुख कारण अशिक्षा मानते थे। सो उन्होंने वाराणसी में एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की ठान ली। और उस समय भारत में जो यूनिवर्सिटीज थी वे केवल एफिलेटेड थी।
0: मदन मोहन जी के सामने रास्ता बहुत ही कठिन था। सरकार को राजी करना था, जमीन का इंतजाम करना था और ढेर सारा पैसा चाहिए था। लेकिन जब चाह होती है तो राह निकल ही आती है। राजा बनारस ने जमीन दे दी, भारत के धनपतियों ने अपनी तिजोरियां खोल दी और कांग्रेस के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने कानून भी पास कर दिया।
1: सबसे बड़ा सहयोग तो एनी बेसेंट का मिला, जो पहले ही बनारस हिंदू स्कूल स्थापना कर चुकी थी। यह स्कूल ही BHU के लिए आधारशिला बन गया और इस तरह जनता के पैसे से जनता की ताकत पर सन 1916 में भारत का पहला रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया।
0: जो रोल डॉक्टर हरि सिंह गौर का सागर विश्वविद्यालय की स्थापना में था, उससे भी बढ़कर मदन मोहन मालवीय जी का BHU की स्थापना में रहा, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी के सामने पैसे की जबरदस्त तंगी थी।
1: मदन मोहन केवल एक शिक्षा शास्त्री ही नहीं थे, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महान सेनानी थे। कांग्रेस में उनका क्या स्थान था, यह इस बात से ही प्रमाणित होता है कि एक दो नहीं बल्कि कुल 4 बार वे इस संस्था के प्रेसिडेंट चुने गए। इसी संस्था के मंच पर सबसे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन के दौरान ही उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि वे इस शहर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहते हैं।
0: भारत के सबसे सरल, नेक और ईमानदार प्रधानमंत्रियों में जिनका नाम सबसे पहले जुमा पर आता है, वे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी भी बनारस के ही लाल थे, जो गंगा उस पार के गांव में रहते थे।
1: गरीबी बेइंतहा थी, पढ़ने के लिए गंगा पार करके शहर आना पड़ता था, पर नाव का किराया देने के लिए पैसा नहीं होता था, तो वे तैर करके गंगा पार करते थे। बनारस की गंगा कोई मामूली गंगा नहीं है, इसे पार करना एक जीवट का काम है, और जिसे लाल बहादुर शास्त्री ने किया, दुबले पतले कमजोर से इंसान ने।
0: लेकिन पढ़ाई का जज्बा भुजाओं में बल बनकर नदी पार कराता रहता। शायद ये गंगा जल के स्पर्श का ही प्रभाव रहा होगा कि उनकी रग रग में ईमानदारी और सच्चाई भर गई। कहते हैं कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद जब उनका देहांत हुआ तो वे अपने पीछे संपत्ति नहीं बल्कि कर्ज छोड़ गए थे।
1: हाँ, मुझे याद है। वाराणसी शहर बड़ी शिद्दत से अपने इस लाल को याद करता है। यहाँ के हवाई अड्डे का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश के खुजराव हवाई अड्डे से यहाँ के लिए सीधी उड़ान भी मिलती है।
0: हम वाराणसी के कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, पर इच्छा रखते हैं कि अगर आपने वाराणसी न देखा हो तो एक बार यहाँ जरूर जाएं।
1: बिल्कुल श्रोताओं, अब वाराणसी की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह आपको फिर ले चलेंगे किसी दूसरे नगर की यात्रा पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और प्रस्तुत किया था प्रमोद शर्मा और
0: कंचन राजानी ने।
1: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवा रहे हैं सुनो कहानी। इसके अंतर्गत सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी धिक्कार।
3: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम में आपको सुनाएंगे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी धिक्कार।

ईरान और यूनान में घोर संग्राम हो रहा था। ईरानी दिनों दिन बढ़ते जाते थे और यूनान के लिए संकट का सामना था। देश के सारे व्यवसाय बंद हो गए थे। हल की मुठिया पर हाथ रखने वाले किसान तलवार की मुठिया पकड़ने के लिए मजबूर हो गए। हंडी तौलने वाले भाले तौलते थे। सारा देश आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया था। फिर भी शत्रु के कदम दिनों दिन आगे बढ़ते जाते थे। जिस ईरान को यूनान कई बार कुचल चुका था, वही ईरान आज क्रोध के आवेग की भांति सिर पर चढ़ा जाता था। मर्द तो रणक्षेत्र में सिर कटा रहे थे और स्त्रियां दिन दिन की निराशाजनक खबरें सुनकर सूख जाती थी। क्यों कर लाज की रक्षा होगी? प्राण का भय न था, संपत्ति का भय न था, भय था मर्यादा का। विजेता गर्व से मतवाले होकर यूनानी ललनाओं को घूरेंगे, उनके कोमल अंगों को स्पर्श करेंगे, उनको कैद कर ले जाएंगे। उस विपत्ति की कल्पना से ही इन लोगों के रोएं खड़े हो जाते थे। आखिर अब हालत बहुत नाजुक हो गई तो कितने ही स्त्री पुरुष मिलकर डेल्फी मंदिर में गए और प्रश्न किया, देवी हमारे ऊपर देवताओं की वक्र दृष्टि क्यों है? हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है? क्या हमने नियमों का पालन नहीं किया, कुर्बानियां नहीं की, व्रत नहीं रखे? फिर देवताओं ने क्या हमारे सिरों से अपनी रक्षा का हाथ उठा लिया? पुजारिन ने कहा, देवताओं की असीम कृपा भी देशद्रोही के हाथ से नहीं बचा सकती। इस देश में अवश्य कोई ना कोई द्रोही है। जब तक उसका वध ना किया जाएगा, देश के सिर से यह संकट न टलेगा। देवी वो द्रोही कौन है? जिस घर से रात को गाने की ध्वनि आती हो, जिस घर से दिन को सुगंध की लपटें आती हों, जिस पुरुष की आंखों में मद की लाली झलकती हो, वही देश का द्रोही है। लोगों ने द्रोही का परिचय पाने के लिए और भी कितने ही प्रश्न किए, पर देवी ने कोई उत्तर न दिया। यूनानी ने द्रोही की तलाश करनी शुरू की। जिनके घर में से रात को गाने की आवाजें आती थी, सारे शहर में संध्या होते होते स्यापा सा छा जाता था। अगर कहीं आवाजें सुनाई पड़ती थी तो रोने की, हंसी और गाने की आवाज कहीं ना सुनाई देती थी। दिन को सुगंध की लपटें किस घर से आती हैं? लोग जिधर जाते थे उधर से दुर्गंध आती थी। गलियों में कूड़े के ढेर पड़े रहते थे। किसे इतनी फुर्सत थी कि घर की सफाई करता, घर में सुगंध जलाता? धोबियों का अभाव था। अधिकांश लड़ने के लिए चले गए थे, कपड़े तक न धुलते थे, इत्र फुलेल कौन मलता? किसकी आंखों में मद की लाली झलकती है? लाल आंखें दिखाई देती थी, लेकिन ये मद की लाली न थी, ये आंसुओं की लाली थी। मदिरा की दुकानों पर खाक उड़ रही थी। इस जीवन और मृत्यु के संग्राम में विलास की किसे सूझती? लोगों ने सारा शहर छान मारा, लेकिन एक भी आंख ऐसी नजर न आई जो मद से लाल हो। कई दिन गुजर गए। शहर में पल पल पर रणक्षेत्र से भयानक खबरें आती थीं और लोगों के प्राण सूखे जाते थे। आधी रात का समय था। शहर में अंधकार छाया हुआ था, मानो शमशान हो। किसी की सूरत दिखाई न देती थी। जिन नाट्यशालाओं में तिल रखने की जगह न मिलती थी, वहां सियार बोल रहे थे। जिन बाजारों में मनचले जवान अस्त्र शस्त्र सजाए ऐंठते फिरते थे, वहां उल्लू बोल रहे थे। मंदिरों में न गाना होता था न बजाना, प्रासादों में अंधकार छाया हुआ था। एक बूढ़ा यूनानी जिसका इकलौता लड़का लड़ाई के मैदान में था, घर से निकला और न जाने किन विचारों की तरंग में देवी के मंदिर की ओर चला। रास्ते में कहीं प्रकाश न था, कदम कदम पर ठोकरें खाता था, पर आगे चला जाता। उसने निश्चय कर लिया था कि या तो आज देवी से विजय का वरदान लूंगा या उनके चरणों पर अपने को भेंट कर दूंगा। सहसा वो चौंक पड़ा। देवी का मंदिर आ गया था और उसके पीछे की ओर किसी घर से
मधुर संगीत की ध्वनि आ रही थी।

0: उसको आश्चर्य हुआ। इस निर्जन स्थान में कौन इस वक्त रंगरलियां मना रहा है, उसके पैरों में पर से लग गए। मंदिर के पिछवाड़े जा पहुंचा। उसी घर से जिसमें मंदिर की पुजारिन रहती थी, गाने की आवाजें आती थी। वृद्ध विस्मित होकर खिड़की के सामने खड़ा हो गया। चराग तले अंधेरा। देवी के मंदिर के पिछवाड़े ये अंधेर। बूढ़े ने द्वार से झांका। एक सजे हुए घर में मोमबत्तियां झाड़ों में जल रही थी। साफ सुथरा फर्श बिछा हुआ था और एक आदमी मेज पर बैठा हुआ गा रहा था। मेज पर शराब की बोतल और प्यालियां रखी हुई थी। दो गुलाम मेज के सामने हाथ में भोजन के थाल लिए खड़े थे, जिनसे मनोहर सुगंध की लपटें आ रही थी। बूढ़े यूनानी ने चिल्लाकर कहा,
1: यही देशद्रोही है, यही देशद्रोही है।
0: मंदिर की दीवारों ने दोहराया,
2: द्रोही है, द्रोही है।
0: बगीचे की तरफ से आवाज आई,
2: द्रोही है, द्रोही है।
0: मंदिर की पुजारिन ने घर से सिर निकालकर कहा,
2: हां द्रोही है।
0: यह देशद्रोही उसी पुजारिन का बेटा पासोनियत था। देश में रक्षा के जो उपाय सोचे जाते, शत्रुओं का दमन करने के लिए जो निश्चय किए जाते, उनकी सूचना वो ईरानियों को दे दिया करता था। सेनाओं की प्रत्येक गतिविधि की खबर ईरानियों को मिल जाती थी और उन प्रयत्नों को विफल बनाने के लिए वो पहले से ही तैयार हो जाते थे। यही कारण था कि यूनानियों को जान लड़ा देने पर भी विजय न होती थी। इसी कपट से कमाए हुए धन से वो भोग विलास करता था। उस समय जबकि देश में घोर संकट पड़ा हुआ था, उसने अपने स्वदेश को अपनी वासनाओं के लिए बेच दिया था। अपने विलास के सिवा उसे किसी और बात की चिंता न थी। कोई मरे या जिए, देश रहे या जाए, उसकी बला से। केवल अपने कुटिल स्वार्थ के लिए वो देश की गर्दन में गुलामी की बेड़ियां डलवाने को तैयार था। पुजारिन अपने बेटे के दुराचरण से अनभिज्ञ थी। वो अपनी अधेरी कोठरी से बहुत कम निकलती, वहीं बैठी जप तप किया करती थी। पर लोक चिंतन में उसे इहलोक की खबर न थी। मनेन्द्रियों ने बाहर की चेतना को शून्य सा कर दिया था। वो इस समय भी कोठरी के द्वार बंद किए देवी से अपने देश के कल्याण के लिए वंदना कर रही थी कि सहसा उसके कानों में आवाज आई, यही द्रोही है, यही द्रोही है। उसने तुरंत द्वार खोलकर बाहर की ओर झांका। पासोनियस के कमरे से प्रकाश की रेखाएं निकल रही थी और उन्हीं रेखाओं पर संगीत की लहरें नाच रही थी। उसके पैरों तले जमीन से निकल गई, कलेजा धक्सा हो गया। ईश्वर, क्या मेरा बेटा देशद्रोही है? आप ही आप, किसी अंतः प्रेरणा से पराभूत होकर वो चिल्ला उठी,
1: हां यही देशद्रोही है।
0: यूनानी स्त्री पुरुष झुंड के झुंड उमड़ पड़े और पासोनियस के द्वार पर खड़े होकर चिल्लाने लगे,
2: यही देशद्रोही है, यही देशद्रोही है।
0: पासोनियस के कमरे की रोशनी ठंडी हो गई। संगीत भी बंद था, लेकिन द्वार पर प्रतिक्षण नगरवासियों का समूह बढ़ता जाता था और रह रहकर सहस्त्रों कंठों से ध्वनि निकलती थी, यही देशद्रोही है। लोगों ने मशालें जलाई और अपने लाठी डंडे संभाल कर मकान में घुस पड़े। कोई कहता था सिर उतार लो, कोई कहता था देवी के चरणों पर बलिदान कर दो। कुछ लोग उसे कोठे से नीचे गिरा देने पर आग्रह कर रहे थे। पासोनियस समझ गया कि अब मुसीबत की घड़ी सिर आ गई। तुरंत जीने से उतरकर नीचे की ओर भागा और कहीं शरण की आशा न देखकर देवी के मंदिर में जा घुसा। अब क्या किया जाए? देवी की शरण जाने वाले को अभय दान मिल जाता था। परंपरा से यही प्रथा थी, मंदिर में किसी की हत्या करना महापाप था। लेकिन देशद्रोही को इतने सस्ते कौन छोड़ता? भांति भांति के प्रस्ताव होने लगे।
1: सुअर का हाथ पकड़कर बाहर खींच लो।
2: ऐसे देशद्रोही का वध करने के लिए देवी हमें क्षमा कर देंगी।
3: देवी, आप उसे निगल क्यों नहीं जाती?
1: पत्थरों से मारो, पत्थरों से। आप निकलकर भागेगा।
2: निकलता क्यों नहीं रे कायर, जब वहां मुंह पर कालिक लगाए बैठा है।
0: रात भर यही शोर मचता रहा और पासोनियस न निकला। आखिर यह निश्चय हुआ कि मंदिर की छत खोद कर फेंक दी जाए और पासोनियस दोपहर की तेज धूप और रात की कड़ाके की सर्दी से आप ही आ पकड़ जाए। बस फिर क्या था, आन की आन में लोगों ने मंदिर की छत और कलश ढा दिए। अभागा पासोनियस दिन भर धूप में खड़ा रहा, उसे जोर की प्यास लगी लेकिन पानी कहां, भूख लगी पर खाना कहां, सारी जमीन तवे की भांति जलने लगी लेकिन छाव कहां। इतना कष्ट उसे जीवन भर में न हुआ था। मछली की भांति तड़पता था और चिल्ला चिल्ला कर लोगों को पुकारता था, मगर वहां कोई उसकी पुकार सुनने वाला न था। बार बार कसमें खाता था कि फिर मुझसे ऐसा अपराध ना होगा, लेकिन कोई उसके निकट ना आता था। बार बार चाहता था कि दीवार से टकरा कर प्राण दे दे, लेकिन यह आशा रोक देती थी कि शायद लोगों को मुझ पर दया आ जाए। वो पागलों की तरह जोर जोर से कहने लगा, मुझे मार डालो, एक क्षण में प्राण ले लो, इस भांति जला जला कर न मारो, ओ हत्यारो, तुमको जरा भी दया नहीं। दिन बीता और रात, भयंकर रात आई। ऊपर तारागण चमक रहे थे मानो उसकी विपत्ति पर हंस रही हूं। जो जो रात भीगती थी, देवी विकराल रूप धारण करती जाती थी। कभी वो उसकी ओर मुंह खोलकर लपकती, कभी उसे जलती हुई आंखों से देखती। उधर क्षण क्षण सर्दी बढ़ती जाती थी। पासोनियस के हाथ पांव अकड़ने लगे, कलेजा कांपने लगा, घुटनों में सिर रखकर बैठ गया और अपनी किस्मत को रोने लगा। कुर्ते को भींचकर कभी पैरों को छिपाता, कभी हाथों को, यहां तक कि इस खींचा तानी में कुर्ता भी फट गया। आधी रात जाते जाते बर्फ गिरने लगी। दोपहर को सोचा था कि गर्मी ही सबसे कष्टदायक है, इस ठंड के सामने उसे गर्मी की तकलीफ भूल गई। आखिर शरीर में गर्मी लाने के लिए एक हिकमत सूझी। वो मंदिर में इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन विलासी जीव था, जरा देर में हांफ कर गिर पड़ा। प्रातःकाल लोगों ने किवाड़ खोले तो पासोनियस को भूमि पर पड़े देखा। मालूम होता था उसका शरीर अकड़ गया है। बहुत चीखने चिल्लाने पर उसने आंखें खोली, पर जगह से हिल न सका। कितनी दयनीय दशा थी, किंतु किसी को उस पर दया ना आई। यूनान में देशद्रोह सबसे बड़ा अपराध था और द्रोही के लिए कहीं क्षमा ना थी, कहीं दया ना थी। अभी मरा नहीं है,
1: द्रोहियों को मौत नहीं आती।
2: पड़ा रहने दो, मर जाएगा, मकर किए हुए है,
1: अपने किए की सजा पा चुका, अब छोड़ देना चाहिए।
0: सहसा पासोनियस उठ बैठा और उद्दंड भाव से बोला,
1: कौन कहता है कि छोड़ देना चाहिए? नहीं, मुझे मत छोड़ना, वरना पछताओगे। मैं स्वार्थी हूं, विषय भोगी हूं, मुझ पर भूल कर भी विश्वास न करना। हाँ, मेरे कारण तुम लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा, इसे सोचकर मेरा जी चाहता है कि अपनी इंद्रियों को जलाकर भस्म कर दूं। मैं अगर 100 जन्म लेकर इस पाप का प्रायश्चित करूं तो भी मेरा उद्धार न होगा। तुम भूल कर भी मेरा विश्वास न करो, मुझे स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं। विलास के प्रेमी सत्य का पालन नहीं करते, मैं भी आपकी सेवा करता हूं। मुझे ऐसे ऐसे गुप्त रहस्य मालूम है जिन्हें जानकर आप ईरानियों का संहार कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। और आपसे भी ये कहता हूं कि मुझ पर विश्वास ना कीजिए। आज रात को देवी की सच्चे दिल से वंदना की है और उन्होंने मुझे ऐसे यंत्र बताए हैं जिनसे हम शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। ईरानियों के बढ़ते हुए दल को आज भी आन की आन में उड़ा सकते हैं, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। मैं यहां से निकलकर इन बातों को भूल जाऊंगा। बहुत संशय है कि फिर ईरानियों की गुप्त सहायता करने लगूं, इसलिए मुझ पर विश्वास न कीजिए।
3: देखो देखो क्या कहता है,
2: सच्चा आदमी मालूम होता है।
1: अपने अपराधों को आप स्वीकार कर रहा है,
2: इसे क्षमा कर देना चाहिए और सब बातें पूछनी चाहिए।
1: देखो, ये नहीं कहता कि इसे छोड़ दो, हमको बार बार याद दिलाया जाता है कि मुझ पर विश्वास ना करो।
2: रात रात भर के कष्ट ने होश ठंडे कर दिए, अब आंखें खुली हैं।
1: क्या तुम लोग मुझे छोड़ने की बातचीत कर रहे हो? मैं फिर कहता हूं, मैं विश्वास के योग्य नहीं हूं, मैं द्रोही हूं। मुझे ईरानियों के बहुत से भेद मालूम है, एक बार उनकी सेना में पहुंच जाऊं तो उनका मित्र बनकर सर्वनाश कर दूं, पर मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है।
3: धोखेबाज इतनी सच्ची बात नहीं कह सकता,
2: पहले स्वार्थांध हो गया था पर अब आंखें खुली हैं।
0: देशद्रोही से भी अपने मतलब की बातें मालूम कर लेने में कोई हानि नहीं है, और अगर ये अपने वचन पूरे करे तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए।
2: देवी की प्रेरणा से इसकी काया पलट हुई है।
0: पापियों में भी आत्मा का प्रकाश रहता है और कष्ट पाकर जागृत हो जाता है। यह समझना कि जिसने एक बार पाप किया वो फिर पुण्य ही नहीं कर सकता, मानव चरित्र के एक प्रधान तत्व का अपवाद करना है। हम इसको यहां से गाते बजाते ले चलेंगे। जनसमूह को चकमा देना कितना आसान है, जनसत्तावाद का सबसे निर्बल अंग यही है। जनता तो नेक और बद की तमीज नहीं रहती, उस पर धूर्तों रंगे सियारों का जादू आसानी से चल जाता है। अभी एक दिन पहले जिस पासोनियस की गर्दन पर तलवार चलाई जा रही थी, उसी को जुलूस के साथ मंदिर से निकालने की तैयारियां होने लगी, क्योंकि वो धूर्त था कि जनता की कील क्यों कर घुमाई जा सकती है।
2: अरे गाने बजाने वालों को बुलाओ, पासोनियस शरीफ है। हाँ हाँ, पहले चलकर उससे क्षमा मांगो, हमने उसके साथ जरूरत से ज्यादा सख्ती की है।
0: पासोनियस ने कहा, आप लोगों ने पूछा होता तो मैं कल की कल आपको सारी बातें बता देता, तब आपको मालूम होता कि मुझे मार डालना उचित है या जीता रखना।
2: हाय, हमसे बड़ी भूल हुई हमारे सच्चे पासोनियस।
0: सहसा एक वृद्धा स्त्री किसी तरफ से दौड़ी हुई आई और मंदिर के सबसे ऊंचे जीने पर खड़ी होकर बोली,
4: तुम लोगों को क्या हो गया है? यूनान के बेटे आज इतने ज्ञान शून्य हो गए हैं कि झूठे और सच्चे में विवेक नहीं कर सकते। तुम पासोनियस पर विश्वास करते हो, जिस पासोनियस ने सैकड़ों स्त्रियों और बालकों को अनाथ कर दिया, सैकड़ों घरों में कोई दिया जलाने वाला न छोड़ा, हमारे देवताओं का, हमारे पुरुषों का घोर अपमान किया, उसकी दो चार चिकनी चुपड़ी बातों पर तुम इतने फूल उठे। याद रखो, अब की पासोनियस बाहर निकला तो तुम्हारी कुशल नहीं, फिर यूनान पर ईरान का राज्य होगा और यूनानी ललनाएं ईरानियों की कुदृष्टि का शिकार बनेंगी। देवी की आज्ञा है कि पासोनियस फिर बाहर ना निकलने पाए। अगर तुम्हें अपना देश प्यारा है, अपने पुरुषों का नाम प्यारा है, अपनी माताओं और बहनों की आबरू प्यारी है, तो मंदिर के द्वार को चुन दो, जिससे देशद्रोही को फिर बाहर निकलने और तुम लोगों को बहकाने का मौका ना मिले। ये देखो, पहला पत्थर मैं अपने हाथों से रखती हूं।
0: लोगों ने विस्मित होकर देखा, ये मंदिर की पुजारिन और पासोनियस की माता थी। दम के दम में पत्थरों के ढेर लग गए और मंदिर का द्वार चुन दिया गया। पासोनियस भीतर दांत पीसता रह गया। वीर माता, तुम्हें धन्य है। ऐसी ही माताओं से देश का मुख उज्जवल होता है, जो देश हित के सामने मात्र स्नेह की धूल बराबर परवाह नहीं करती। उनके पुत्र देश के लिए होते हैं, देश पुत्र के लिए नहीं होता।

0: तो अभी आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी धिक्कार। सुनो कहानी के अपने अगले अंक में फिर हाजिर होंगे एक और कहानी एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: तो दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम तराने आजादी के।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती।
2: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, हमारे देश में संगीत की एक समृद्ध परंपरा रही है और संगीत दायरों को नहीं मानता। इतना बड़ा हमारा देश, अलग अलग बोली भाषा के लोग, अलग जाति धर्म के लोग, अलग रीति रिवाज को मानने वाले लोग, अलग जाति धर्म, अलग बोली भाषा और अलग रीति रिवाजों से उत्पन्न कितनी ही स्वर लहरियां संगीत की अलग अलग शैलियों के रूप में आज विख्यात हैं। ऐसी ही एक संगीत शैली है अभंग। आज भारत भारती कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की इसी संगीत परंपरा की वानगी। और विशेष बात ये कि इसे प्रस्तुत करने वाली दो कलाकार चेन्नई से संबद्ध हैं। जी हाँ, कर्नाटक शैली में पारंगत रंजनी और गायत्री। इनके युगल स्वरों में आइए सुनते हैं अभंग गायन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रंजनी और गायत्री का अभंग गायन। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। बहुत जल्द भारत भारती के एक और अंक के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिएगा 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

0: देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 136वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं परुच्छेप देवोदासी, देवता हैं मित्रावरुण, तिलोंक्त और छंद है अत्यष्टि और त्रिष्टुप।
4: प्रसु ज्येष्ठम निचिराभ्याम ब्रहन नमो हव्यम मतिम भरता मृणयद्वयाम स्वादिष्टम मृणयद्भ्याम ता साम्राजा घृता सुती यज्ञे यज्ञ उपस्तुता अथैनोह क्षत्रम न कुतश्चना धृषे देवत्वम नु चिदा घृषे। हे मनुष्यों, वे दोनों मित्र और वरुण देव अति तेजस्वी घृताहुतियों का सेवन करने वाले तथा प्रत्येक यज्ञ में प्रार्थना के लिए उपयुक्त हैं। हम सभी श्रद्धा और भक्ति सहित मित्र वरुण देव को प्रणाम करें तथा उत्तम बुद्धि से उनकी प्रार्थना करें। इनके क्षात्र बल और देवत्व को क्षीण नहीं किया जा सकता। आदर्शी गातु रुरवे वरीयसी पंथा ऋतस्य समयंस्त रश्मिभिश्च क्षुर भगस्य रश्मिभिः द्युक्षम मित्रस्य सादनमर्यम्णो वरुणस्य च अथा दधाते बृहदुक्थ्यम वय उपस्तुत्यम बृहद्वयः। यज्ञ के लिए वेगवती उषा देवी प्रकाशित हुई हैं। रश्मियों से सूर्य मार्ग आलोकित हुआ है। ऐश्वर्यशाली सूर्य देव की रश्मियों से आंखों में चमक आ गई है। मित्र अर्यमा और वरुण देव सभी तेजस्विता संपन्न हुए हैं। अतएव संपूर्ण देवताओं के निमित्त आहुतियों के रूप में प्रशंसनीय हविष्यान्न अर्पित किया जाता है, जिसे वे स्वीकार करते हैं। ज्योतिष्मति मदितिम धारयत क्षतिम स्वर्वर्तीमा सचेते दिवे दिवे जाग्रीवांसा दिवे दिवे। ज्योतिष्मत क्षत्रमाशाते आदित्या दानुनस्पति मित्रस्तोर वरुणो यात यज्जनोर यमा यात यज्जनः। विशिष्ट धारण क्षमता वाली पृथ्वी तथा दिव्य तेजस्विता युक्त आदिति देवी की सेवा में मित्र और वरुण देव नित्य जागृत रहकर प्रवृत्त होते हैं। धन के अधिपति आदित्य गण तेजस्वी शक्ति को नित्य ही प्राप्त करते हैं। मित्र वरुण और अर्यमा तीनों देव मनुष्यों को श्रेष्ठ मार्ग में बढ़ाते हैं। अयम मित्राय वरुणाय शन्तमः सोमो भूत्व वपानेश्वा भगो देवो देवेश्वा भगः तम देवासो जुषेरत विश्वे अद्य सजोषसः। तथा राजाना करथो यदि मह ऋतावाना यदि महे। पेय पदार्थों में सबसे उत्कृष्ट तथा देवताओं में महावैभव संपन्न यह सोम मित्र और वरुण देव दोनों के लिए अति आनंद प्रद हो। सामंजस्य युक्त सद्विचारों और सद्भावनाओं के प्रेरक समस्त देव समूह इस सोम का सेवन करें। हे तेजस्विता संपन्न मित्र और वरुण देव, आप श्रेष्ठ कर्मों के प्रेरक हों। हमारी अभीष्ट कामनाओं को निश्चय ही पूर्ण करें। यो मित्राय वरुणाया विधज्जनो नर्वाणम तम परिपातो अम हसो दाश्वांसम मर्तमाहसः तमर्माभि रक्षत्रे जूयंत मनुव्रतम उक्थैर्य एनोह परिभूषति व्रतम स्तोमै राभूषति व्रतम। जो विद्वेष भावना से रहित होकर मित्र वरुण के प्रति सेवा भाव रखते हैं, जो अपने प्रशंसक कर्मों से दोनों को सुशोभित करते हैं, जो वाणी से उनके कर्मों की महिमा बढ़ाते हैं, उन्हें मित्र और वरुण देव दुष्कर्म रूपी पापों से सुरक्षित करते हैं। जो दानशील सरल और सत्य मार्ग के अवलंबी तथा श्रेष्ठ व्रतों के प्रति अनुशासित हैं, ऐसे सभी मनुष्यों को अर्यमा देव दुखदायी पाप कर्मों से बचाते हैं। नमो दिवे बृहते रोदसिभ्याम मित्राय वोचम वरुणाय मीडहुषे समृद्धिकाय मीडहुषे इंद्रमग्निमुप स्तुहि क्षुद्य मर्यमणं भगम ज्योग जीवन्तः प्रजया सचे महि सोमस्योचि। फिर से कर रहे हैं, सोमस्योति सचे महि। हम द्यावा पृथ्वी सुखप्रद मित्र देव तथा अति सुखदायी वरुण देव की वंदना करते हैं। हे मनुष्यों, आप इंद्र अग्नि दीप्तिमान अर्यमा तथा भगदेव की उपासना करें, जिससे इन सभी देवताओं की कृपा से हम सभी चिरंजीवी होकर संतानादि से युक्त हों और सभी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्थाओं से युक्त हों। ऊती देवानाम वयमिंद्रवंतो मनसी महि स्वयशसो मरुद्भिः अग्निर्मित्रो वरुणः शर्म यंसन तदश्याम मघवानो वयम् च। हम सभी देवताओं द्वारा प्रदत्त सुखों को प्राप्त करें तथा अपनी यशस्विता और बलों से संपन्न होकर देव कृपा से सुरक्षित हों। अग्नि मित्र तथा वरुण देव हमें सुखी करें। ऐसे महान ऐश्वर्यों से युक्त होकर हम सदैव सुखोपभोग करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 136वें सूक्त से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

मूर्खों का संग न करना, विद्वानों का संग करना और पूजनीय पुरुषों का सत्कार करना उत्तम और शुभकारक कर्म है।

ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं, उनमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहां भी हो, चाहे जिस हालत में हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है।

हम ईश्वर की भक्ति ईश्वर को पाने के लिए करते हैं। भक्ति का वास्तविक अर्थ है ईश्वर से मिलने के लिए चलना, और यदि हम ईश्वर को पा लिए तो इसी को मोक्ष कहते हैं।

निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का कार्यक्रम सांतगीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। कोई भी व्यक्ति सही अर्थों में लोकप्रिय तब होता है जब वो लोगों के सुख दुख का भागीदार बनता है, उनके बीच रहता है और उनके हित के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। गोपीनाथ बारदोलोई को मैं एक ऐसा ही राजनेता मानता हूँ जिन्होंने जीवन भर असम के आम लोगों के हित के लिए काम किया और निस्वार्थ भाव से किया। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का ये वक्तव्य भारत रत्न श्री गोपीनाथ बारदोलोई के संपूर्ण व्यक्तित्व को सटीक परिभाषित करता है। वो एक ऐसे बिरले व्यक्ति थे जिन्होंने रचनात्मक राष्ट्रीयता के प्रति अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। असम के स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा और उसके सर्वांगीण विकास की दिशा में उन्होंने अविस्मरणीय काम किया। इसीलिए असम की जनता उन्हें लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई कहा करती है। गोपीनाथ बारदोलोई का जन्म 6 जून सन 1890 को असम के नौगांव जिले के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। कॉटन कॉलेजिएट स्कूल गुवाहाटी में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने सन 1911 में स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता से इतिहास में ऑनर्स स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद सन 1914 में एमए की परीक्षा पास की और 3 साल तक कानून की शिक्षा लेकर गुवाहाटी लौट आए। वे सबसे पहले सोनाराम हाई स्कूल गुवाहाटी में मुख्य अध्यापक के पद पर नियुक्त किए गए। इसी अनुभव के आधार पर उनमें शिक्षा के प्रति बहुत गहरी रुचि पैदा हुई और आगे चलकर पूर्वोत्तर भारत में जो पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया उसके वे प्रमुख संस्थापक बने। पूर्वोत्तर में मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान के कॉलेजों की स्थापना में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। विधि स्नातक होने के बाद सन 1917 में उन्होंने वकालत आरंभ की। ये समय राजनीतिक गुलामी का था। असम में चारों ओर गरीबी थी, लोग अशिक्षित थे, इसीलिए शोषित भी थे। गांधी जी से प्रेरित होकर गोपीनाथ बारदोलोई ने सन 1921 में वकालत छोड़ दी और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए पूर्णतः समर्पित हो गए। उन दिनों असम के चाय बागानों का पूरा लाभ अंग्रेज उठाया करते थे, जनता को सिर्फ मजदूरी मिलती थी। सादुल्ला मंत्रिमंडल की शह पर अंग्रेज इन बागानों के मालिक बने बैठे थे। इस शोषण के खिलाफ उन्होंने कड़ी लड़ाई लड़ी। उधर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के जरिए विदेशी सामान के पूर्ण बहिष्कार का आह्वान किया। गोपीनाथ बारदोलोई ने असम में दक्षिण के गोवालपाड़ा जिले का पैदल दौरा किया और लोगों को जगाया। परिणाम ये हुआ कि असम की जनता ने भी विदेशी वस्तुओं की होली जलाई और चरखे पर सूत कातकर वस्त्र धारण करने लगी। इससे अंग्रेज सरकार बौखला गई और गोपीनाथ जी और उनके साथियों को गिरफ्तार करके 1 वर्ष के कारावास की सजा दी। लेकिन वो अपने संकल्पों के साथ अडिग रहे।

भेजा था। इसलिए गांधी जी के नेतृत्व में इसका विरोध किया और असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। युद्ध समाप्ति के बाद परिस्थितियां बदली और सन 1940 में चुनावों में हिस्सा लेने का निश्चय किया। सन 1946 के चुनावों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और गोपीनाथ जी असम के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि वे आजादी की रक्षा करें और राष्ट्र निर्माण में जुट जाएं। गोपीनाथ जी बेहद साहसी और दृढ़ राजनेता थे। अपना विरोध उन्होंने हमेशा बहुत स्पष्ट और मजबूत तरीके से दर्ज करवाया। चाहे बात सन 1937 में असम विधानमंडल में विपक्ष के नेता के तौर पर बजट की कड़ी आलोचना की हो, या सन 1938-39 में अफीम के व्यापार पर प्रतिबंध लगवाने की हो, या चाय उद्योग द्वारा अर्जित लाभ पर कृषि आयकर विधेयक में निर्धनों को छूट देने की हो, उनके विरोध का हमेशा सकारात्मक परिणाम सामने आया। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान ही अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग हिस्सों में दल बनाने का प्रस्ताव रखा था। इस ग्रुपिंग सिस्टम को गोपीनाथ बारदोलोई ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने तय किया कि असम अपना संविधान खुद बनाएगा। असम की असेंबली ने क्रिप्स मिशन की योजना को खारिज कर दिया। उसने अपना गण परिषद बनाया। इस तरह अंग्रेजों का कुचक्र टूट गया। इसी तरह उन्होंने सन 1946 में कैबिनेट मिशन के उस प्रस्ताव का भी कड़ा विरोध किया जिसमें असम को बंगाल के साथ मिलाने की सिफारिश की गई थी। उनके प्रयासों से ही असम का कुछ हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में जाने से बच गया। असम अपनी अखंडता के साथ भारत में शामिल रहा। वो अपनी मातृभूमि के साथ लगातार जुड़े रहे।

देश की आजादी के बाद गोपीनाथ बारदोलोई असम के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। अपने 3 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में उन्होंने आधुनिक असम की मजबूत नींव रखी। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किए। न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और समतावादी समाज की स्थापना के उद्देश्य से उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जनजातीय सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखने में भी गोपीनाथ बारदोलोई की पहल अविस्मरणीय है। उनकी अध्यक्षता में गठित संविधान उप समिति की सिफारिशों पर ही संविधान में 6ठी अनुसूची शामिल की गई, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के आदिवासी इलाकों के प्रशासन के लिए प्रावधान किया गया। इस तरह आदिवासी भूमि, चारागाहों और जंगलों के संरक्षण का कार्य आरंभ हुआ, ताकि देश की अमूल्य वन संपदा का संरक्षण हो सके। गोपीनाथ बारदोलोई का व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन समाज के सभी वर्गों के प्रति मानवता और भाईचारे की भावना से ओतप्रोत था। असम के महान संत शंकरदेव के दर्शन का उन पर बहुत गहरा असर था। साहित्य, शिक्षा, संगीत तथा संस्कृति, इन सब से उनका आंतरिक जुड़ाव था। गोपीनाथ बारदोलोई एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा और अनासक्ति योग का असमिया में अनुवाद किया था। इसके साथ ही उन्होंने बाल साहित्य की भी रचना की। सर्वधर्म समभाव, विश्व शांति और अहिंसा के प्रति उनकी दृढ़ आस्था थी। उन्होंने भगवान राम, ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद और गौतम बुद्ध जैसे चरित्रों की जीवन गाथाएं समान आस्था और श्रद्धा के साथ लिखीं। धर्मनिरपेक्षता के वे प्रबल समर्थक थे और वसुधैव कुटुंबकम पर उनका पूरा विश्वास था। उनके लिए भाईचारा और समाज सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं था। वे विश्व शांति के हिमायती थे। अपने इन्हीं विचारों पर वो आजीवन चलते रहे और देश की आज़ादी के 3 साल बाद 5 अगस्त सन 1950 को गुवाहाटी में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। सन 1999 में उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। अपनी अंतिम सांस तक देश की सेवा करने वाले ऐसे महान व्यक्तित्व को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बाल सभा।
2: लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बच्चों, मैं हूँ ज्योति पांडे, एक कहानीकार, और आज बाल सभा में बात करेंगे बूढ़ों की बातें और बढ़प्पन।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: अच्छा, एक काम करिए, सबसे पहले ये बताइए कि आपके दादा दादी, नाना नानी या जो भी पड़ोस में बड़े बूढ़े रहते हैं, उनको देखकर आप क्या सोचते हैं? सोचते हैं ना, इन्हें मोबाइल चलाना नहीं आता, ये रिमोट ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाते, ये वर्ड्स गलत प्रोनाउंस करते हैं, इनको शायद इंटरनेट के बारे में कुछ नहीं पता, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है ये भी नहीं पता। लेकिन एक चीज सोचकर देखिएगा, आपके यही दादा दादी, नाना नानी या बड़े बूढ़े अपने साथ में जीवन का अनुभव लिए हुए हैं, जो कि कोई जिसकी बराबरी नहीं कर सकता। अच्छा, सच सच बताना, आप में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अरे इन्हें कुछ नहीं आता, नई दुनिया के बारे में इन्हें कुछ पता ही नहीं है, ना इन्हें सोशल मीडिया के बारे में पता है, ना ही इन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में। लेकिन इन सब के पास एक चीज है जो बेशकीमती है, वो है जीवन का अनुभव, जो हमें कई बार कई परेशानियों में बचाता है। पता है, मैं जब छोटी थी तो मैं अपनी दादी की गोद में लेटकर ढेरों कहानियां सुना करती थी, और उनमें से एक कहानी मुझे अभी तक याद है। सुनोगे? वो बताती थी कि एक बार एक पंडित जी और एक जो नाव चलाने वाला है, वो नदी में जा रहे थे। अब नाव चलाने वाला बेचारा गरीब, फटे पुराने कपड़े, नाव चलाकर अपनी गुजर बसर करता था, और पंडित जी पढ़े लिखे विद्वान। उन्होंने नाविक से पूछा, महाभारत पढ़ी है? नहीं, हम कहाँ पढ़ पाते हैं, सारा दिन इसी में निकल जाता है। तो वेद पुराण तो जानते होगे कुछ उनके बारे में? अरे कहाँ पंडित जी, वेद पुराण, हम तो अपनी गुजर बसर के लिए एक किनारे से दूसरे किनारे यात्रियों को ले जाने का काम करते हैं। अब पंडित जी ने उसे देखा और कहा, बिल्कुल अनपढ़ हो, मतलब तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। अब पंडित जी तो पंडित जी थे, वेद पढ़े थे, पुराण पढ़े थे, रामायण पढ़ी थी, गीता पढ़ी थी, सारी चीजों का बड़ा ज्ञान था। उनको देखकर बड़ा दुख लगा कि अरे ये नाविक, इसको तो कुछ ही नहीं आता है। थोड़ी देर में घने बादल गरजने लगे, तूफान आने की आशंका हो गई, नौका डगमगाने लगी, इधर से उधर, इधर से उधर। अब नाविक ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, वेद पुराण तो सब ठीक है, आपको तैरना तो आता होगा? पंडित जी ने कहा, नहीं, मुझे कहाँ तैरना आता है। और दादी हमेशा मुझे ये कहानी हंसकर ये बताया करती थी कि पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ कला या लाइफ स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। तो ये जो अनुभव होते हैं, ये जिंदगी में हमारे लिए लाइफ स्किल्स का काम करते हैं, हमें जीवन कैसे जीना है इसके बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। सोचो हमारे दादा दादी उस जमाने के हैं जब न सोशल मीडिया था और उन्होंने सारी दुनिया संभाली है। वह हर चीज के लिए गूगल से पूछने नहीं चले जाया करते थे। हम आपकी तरह, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, जहां अटकती हूँ तो गूगल जिंदाबाद और आजकल उससे भी बड़ा चैट जीपीटी। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, सीधे टाइप करिए और जवाब हाजिर। पर ये चैट जीपीटी के पास क्या वो एक्सपीरियंस है, क्या वो कनेक्शन है जो हमारे बड़े बूढ़ों का हमारे साथ था? बिल्कुल नहीं। मैं आज मानती हूं कि आप में से जो भी अपने बड़े बूढ़ों के संग बड़े हो रहे हैं, आप उनको जिस तरह से काम करते हुए देखते हैं, केवल देखने से ही आप बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे। एक कहानी सुनाती हूं आपको। कहानी पुरानी है पर उसमें सीख बहुत सारी है। ये उस समय की बात है जब राजा राज्यों पर राज किया करते थे। प्रजा होती थी, राजा सबसे बड़े होते थे। तो किसी एक राज्य में एक राजा रहता था। तो वो राजा बेहद घमंडी था। वो सोचता था कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है। न किसी की सुनता था न समझता था। उसने जो निश्चय कर लिया वो पूरा ही होना था। एक बार उसके दिमाग में आया, मेरी प्रजा में ये बूढ़े लोगों का क्या काम है, मेरी प्रजा में जवान लोग रहने चाहिए, वही खेतीबाड़ी करते हैं, वही सब चीज करते हैं। और उसने फरमान जारी कर दिया कि 65 साल की उम्र से ऊपर वाले सारे बूढ़ों को जंगल में छोड़ दिया जाए। जंगल में छोड़ दिया जाए, प्रजा परेशान, लोग अपने माँ बाप को जो उनके साथ रहते हैं, जिन्हें वो प्यार करते थे, उनको जंगल में छोड़ दें मरने के लिए। लेकिन राजा का फरमान था, उसने कहा जो ऐसा नहीं करेगा उसे दंड दिया जाएगा। मंत्रियों ने समझाने की कोशिश की लेकिन राजा को कोई बात समझ में ही नहीं आई। लोग दुखी हो गए, क्या करते। उन्होंने ढेरों सामान माँ बाप के साथ बांधकर कि थोड़े दिन तो इनका गुजारा चले, गांव के बाहर जंगल में छोड़ आए। सब बहुत दुखी थे। कौन खुश रहता है अपने माँ बाप को जंगल में छोड़कर। लेकिन राजा का फरमान था, करना पड़ा। इसी गांव में एक जीवाराम नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी माँ बचपन में गुजर गई थी। उसको उसके पिता ने माँ का प्यार देकर पाल पोस कर बड़ा किया था। वह अपने पिता से औरों की तरह बहुत प्यार करता था। पिता 82 वर्ष के हो चुके थे। जब राजा का फरमान आया तो उसने सोचा, मैं अपने पिता को जंगल में छोड़ दूं, कैसे कर पाऊंगा मैं ये, नहीं मैं ये नहीं करूंगा। बहुत सोचा क्या उपाय करूं कि मैं अपने पिता को अपने पास ही रखूं। उसके घर में एक बड़ा सा नगाड़ा था। उसने दिमाग लगाया, नगाड़े में छेद किए, नीचे मुलायम रजाई बिछाई और अपने पिता से कहा कि वो उसके अंदर चले जाए, पूरे दिन बाहर ना निकलें। वहीं पे पानी का छोटा सा बर्तन रख दिया। पिता पूरे दिन नगाड़े के अंदर रहते। जब रात को सारा गांव सो जाता तो वो नगाड़े से पिताजी को बाहर निकालता। दोनों साथ में बैठकर खाना खाते और पिता उसे दुनियादारी की बातें सुनाते। सुबह होती तो फिर नगाड़े के अंदर। दिन गुजरते गए और किसी को इस बात का पता नहीं चला कि जीवाराम के पिता उसके साथ ही रहते हैं, वह उन्हें जंगल में नहीं छोड़ पाया। अब एक बार इस राज्य पर दूसरे राज्य के राजा ने चढ़ाई करने की सोची। अब ऐसे तो लड़ाई कर नहीं सकते थे। उसने कहा कि मैं 3 पहेलियां पूछूंगा, अगर इन 3 पहेलियों का सही उत्तर मिला तो मैं बख्श दूंगा इस राज्य को, छोड़ दूंगा। लेकिन पहेलियों के जवाब देने का एक ही मौका मिलेगा, और अगर सही जवाब रहा तो ठीक है। अब राजा बड़ा परेशान। पता है उसका पहला सवाल क्या था? उसने एक चिकनी लकड़ी का तना भेजा जो दोनों तरफ से एक सा दिखता था, और राजा से पूछा कि इस तने को देखकर, लकड़ी के टुकड़े को देखकर बताओ, जड़ की तरफ कौन सा है और ऊपर वाला कौन सा है। अब लकड़ी तो देखकर कौन बता सकता है? बहुत लोगों ने दिमाग लगाया, मंत्री ने, राज्य के लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया। राजा बड़ा परेशान कि अरे मेरा राज्य चला जाएगा, दूसरा राजा मेरे ऊपर आक्रमण कर देगा, मैं क्या करूं क्या करूं। जीवाराम भी ये सब बातें सुन रहा था। उस दिन जब रात को उसने पिता को नगाड़े से बाहर निकाला तो ये चीज बताई। पिता हंसे, अरे इसमें कौन सी मुश्किल है, एक पानी का बर्तन लो और उसमें लकड़ी का टुकड़ा डाल दो, जड़ की तरफ वाला तैरने लगेगा क्योंकि वो ज्यादा घना होता है, वो नीचे की तरफ चला जाएगा। हाँ, ये बात किसी के दिमाग में ही नहीं गई। दूसरे दिन जब सभा लगी थी तो जीवाराम ने यही बात जाकर राजा को बता दी। पानी लाया गया, लकड़ी के टुकड़े को डाला गया, और जो नीचे की तरफ गया हिस्सा, कहा गया कि ये जड़ का है। राजा को यह जवाब दे दिया गया। राजा हैरान, क्योंकि जवाब बिल्कुल सही था। अब सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि जीवाराम जैसे इंसान को इतनी बुद्धि कहां से आ गई। सबने सोचा कि चलो कहीं से इसको पता चल गया होगा। कोई कुछ नहीं बोला। अब दूसरी पहेली। एक पहेली तो सही निकल गई थी, दूसरी पहेली का भी सही होना बहुत जरूरी था। पता है दूसरी पहेली क्या थी? उसने कहा, राजा ने जो आक्रमण करने वाला था, कि ऐसा ढोल जो बिना किसी इंसान के बजाए संगीत निकाले। अरे ऐसा भी ढोल होता है क्या? ढोल को तो हाथ से बजाना पड़ता है। सारे मंत्री, सारे बुद्धिमान लोग जो थे प्रजा के, सारे दिमाग लगाने बैठे कि कैसे बनाया जाए ढोल, कैसे बनाया जाए ढोल। तरह तरह की कोशिशें की, सब किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। रात को जीवाराम नगाड़े से पिता को निकाला तो बताया कि आज ये पहेली पूछी गई थी। पिता फिर हंसे, अरे इसमें क्या मुश्किल, ऐसा ढोल बन सकता है। भौरों के झुंड को ढोल में चमड़ा लगाने से पहले अंदर डाल दिया जाए, जैसे ही कोई ढोल को पकड़ेगा सारे भौरे गुन गुन गुन गुन गुन करने लगेंगे। दूसरे दिन जीवाराम ने यही चीज जाकर राजदरबार में बताई, और ऐसा ही एक ढोल बनाया गया जिसमें चमड़ा लगाने से पहले भौरों के झुंड को अंदर डाल दिया गया। जैसे ही राजा ने ढोल पकड़ा, भौरों की आवाजें आनी शुरू हो गई। आखिर वो ढोल बन ही गया जो बिना बजाए ही संगीत पैदा करे। अब राजा हैरान, जीवाराम तो बड़ा दिमाग वाला निकला। राजा ने उसे कहा कि वह उसे अपनी फौज में नौकरी देगा। राजा बड़े खुश थे क्योंकि दूसरी पहेली का भी हल मिल गया था। और दूसरा राजा बड़ा परेशान कि इतने जवान लोग में इतना दिमाग कहां से आ गया कि उन्होंने सारी पहेलियों के उत्तर दे दिए, लेकिन तीसरी पहेली अभी बाकी थी। राजा ने सोचा इसका जवाब तो कोई दे ही नहीं पाएगा। उसने दो घोड़े भेजे, एक माँ थी और एक बेटी। अब पहेली ये थी कि ये पता लगाना था कि कौन माँ है और कौन बेटी। अब एक से दिखने वाले, बिल्कुल एक से, उनके खुर देखे गए, उनके दांत देखे गए, उनकी पूंछ देखी गई, लेकिन कोई नहीं पता लगा पाया कि कौन माँ है कौन बेटी। और अगर गलत जवाब देते तो राज्य हाथ से जाता। दूसरे दिन जवाब देना था। उस दिन रात को सब बड़े चिंतित होकर सोए कि अब पता नहीं राजा चढ़ाई कर देगा, राज्य हाथ से चला जाएगा, क्या हाल होगा इस राज्य का, प्रजा का। जीवाराम रात को हमेशा की तरह ही घर पहुंचा, पिता को नगाड़े से बाहर निकाला। उस दिन उसने खाना अच्छा बनाया था, खीर बनाई थी, रोटी बनाई थी, चावल बनाया था, पिता के पसंद की सब्जी। पिता से उसने कहा, क्या पता दोबारा मौका मिले न मिले, क्योंकि ऐसी पहेली पूछी गई है जिसका हल कोई बता ही नहीं सकता। पिता ने कहा, बताओ तो मैं कोशिश करता हूं। और जीवाराम ने सारी बातें पिता को बताई कि घोड़े बिल्कुल एक से दिखते हैं, अब कौन माँ और कौन बेटी कौन बता पाएगा। पिता फिर हंसे, ऐसा करना, एक दिन सुबह से घोड़ों को भूखे रखना और शाम को उनके आगे जौ का ढेर लगा देना, देखना जो घोड़ा दूसरे घोड़े को खाने दे माने वो माँ, और जो खाने लगे और दूसरा उसे ना रोके वो बेटी। और जीवाराम ने राजा को जाकर यह बताया। राजा ने कहा, बात में दम है। उसने ऐसा ही किया, सुबह से घोड़ों को भूखा रखा और शाम को एक जौ का ढेर रखा। जैसे ही जौ का ढेर रखा गया, एक घोड़े ने उस पर मुंह मारा, दूसरा घोड़ा शांत खड़ा रहा। उसने दूसरे घोड़े को जो खा रहा था उसे खाने दिया। अब सबको समझ में आ गया कि कौन माँ थी और कौन बेटी। राजा हैरान, उन्होंने जीवाराम से कहा, सच सच बताओ, ये जरूर किसी बड़े बूढ़े का काम है, ये किसी अनुभवी व्यक्ति का काम है, इतना दिमाग तुम में तो हो नहीं सकता। जीवाराम रोने लगा। उसने कहा, महाराज मैं अपने पिता को नहीं छोड़ पाया, मेरे पिता मेरे ही घर में नगाड़े के अंदर रहते हैं। राजा को उस दिन एहसास हुआ कि बड़े बूढ़ों की, उनके अनुभव की राज्य को कितनी जरूरत है। और उसने उस दिन से सब लोगों से कहा कि जाकर गांव के बाहर से अपने माता पिता को, बड़े बूढ़ों को ले आए, क्योंकि उनका आशीर्वाद, वो एक जो बरगद के पेड़ की तरह होते हैं, अपने अनुभव से, अपनी सीखों से हमें कितना कुछ सिखा जाते हैं। तो ये कहानी मेरी बहुत पसंदीदा कहानी है और मैं कई बार बच्चों को ये सुनाती हूँ कि आप अलग तरह की चीजें जानते हैं, लेकिन बड़े बूढ़े अलग तरह की अपने अनुभव से हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। बड़े बूढ़े होते हैं ना, उनकी पूरी जिंदगी में उनके अनुभवों का सार होता है। उन्होंने बहुत से मौसम देखे होते हैं, उन्होंने फेलियर्स, सक्सेस, जीवन के अनुभव से बहुत सीखा होता है जो उनके अंदर होता है। और हम समझते हैं हमें सब आता है, गूगल हमें सब बता देगा, चैट जीपीटी हमें सब बता देगा, लेकिन वह कभी भी हमारे बड़े बूढ़ों के अनुभव की बराबरी नहीं कर पाएगा। एक छोटी सी और कहानी है जो मैं आपको जाते जाते सुनाना चाहूंगी। एक गांव में बरगद का बहुत बड़ा सा पेड़ था। अब बरगद का पेड़ कोई खास सुंदर नहीं दिखता है, उसकी जड़ें होती हैं, लोग मजाक बढ़ाया करते थे कि इसमें भूत रहते हैं, ये बरगद का पेड़ किस काम का। कई बार लोग कहते थे कि अरे गांव में इतने अच्छे अच्छे पेड़ हैं, ये भद्दा सा बरगद का पेड़ इसको तो कटवा ही देना चाहिए। लेकिन एक बार गांव में भयंकर आंधी आई, तूफान चला, सारे पेड़ आम के और जो पेड़ थे वह निकल कर गिर गए, लेकिन बरगद का पेड़ खड़ा रहा, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत अंदर तक गई थी। और इसी बरगद के पेड़ के नीचे सारे गांव वालों को सहारा मिला। हमारे बड़े बूढ़े इस बरगद के पेड़ की तरह होते हैं, उनके अनुभव की जड़ें जिंदगी में बहुत अंदर तक गई होती हैं, इसीलिए वो हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। मुझे याद है जब मेरी कभी भी लड़ाई किसी से होती थी तो मेरी दादी कहती थी, हमेशा जाकर माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। उस समय मुझे वो बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज मुझे यह समझ में आ गया है कि माफ़ी मांगने से आदमी को बड़प्पन ही मिलता है, और यह बड़प्पन हमारे बड़े बूढ़े हमेशा से हमें सिखाते रहते हैं। सोचिए तो, आपके दादा दादी आपको क्या सिखाते हैं? मेरी दादी तो ये सिखाती थी कि माफ़ी मांग लो, हमेशा लोगों को माफ़ करना सीखो। वह हमेशा कबीर के दोहे गाकर मुझे बताया करती थी, और एक दोहा उनमें से था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो बड़ा ऐसा हो कि जो छाया दे, जो अनुभव दे, और हम उनके अनुभव ले पाएं। आज अपने दादा दादी नाना नानी से ज़रूर पूछिएगा कि वो आपको अपने अनुभव से क्या सिखाना चाहते हैं। तो इसी कहानी के साथ आज की यह बाल सभा खत्म करते हैं। आशा करते हैं आपको यह बाल सभा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, कुछ नया सीखने। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
3: बाल सभा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 आजाद हिंद रेडियो में आपका स्वागत है। ये है टेक गुरु प्रोग्राम। एक सफलता की कहानी आई है भोपाल के ईदगाह हिल स्थित सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। शिक्षिका श्रीमती एकता सरीन बन गई हैं मध्य प्रदेश की पहली गूगल सुपर सर्चर। उन्हें गूगल इंडिया ने उनके पहल के लिए गुरुग्राम में अपने कार्यालय में आमंत्रित किया। चलिए उनसे जानते हैं कि गूगल सुपर सर्चर क्या है। नमस्ते एकता सरीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आजाद हिंद रेडियो में।
2: नमस्ते शिवानी जी।
1: सबसे पहले जो हम आपसे पूछना चाहेंगे वो ये है कि आखिरकार सुपर सर्चर क्या है।
2: सुपर सर्चर्स एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव टेक प्रोग्राम है। जानकारी के लिए आई थिंक हम हर दिन गूगल का इस्तेमाल करते हैं, गूगल का यूज करते हैं, गूगल पे डिफरेंट सर्च करते हैं
1: जी।
2: गूगल का काम है जानकारी देना, उनका लक्ष्य है जानकारी देना, लेकिन क्या वो जानकारी सही है या गलत है ये जानना हमारा काम है। सुपर सर्चर गूगल इंडिया का एक इंफॉर्मेशन टेक प्रोग्राम है जो कि स्टूडेंट्स के डिजिटल परिदृश्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। किस तरह से उनको क्या सर्च करना चाहिए, क्या फेक है, क्या रियल है
1: जी,
2: ये हम इस प्रोग्राम के जरिए बताते हैं। आज हर कोई इंटरनेट पे एक्टिव है, जानकारी के लिए विश्वसनीय स्रोतों का हम इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं जानते कि क्या वो जानकारी जो हमें मिल रही है जो वेबसाइट्स पे है, क्या वो ठीक है या वो गलत है। इस ट्रेनिंग में हम एजुकेशन देते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, और उनको ये बताते हैं कि ऑनलाइन उनको क्या प्राप्त करना चाहिए, उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, उनका किस तरह से मूल्यांकन किया जा सकता है, क्या फेक है, क्या रियल,
1: क्या सही है।
2: दिस इज ऑल अबाउट सुपर सर्चर्स प्रोग्राम।
1: तो आप एक ट्रेन्ड करियर कोच हैं एकता सरीन जी, लैंग्वेज ट्रेनर हैं, तो आप कैसे एक सुपर सर्चर बनी इसके बारे में बताइए।
2: भले ही मैं डायरेक्टली आईटी से लिंक नहीं हूँ, बिकॉज एज ए लैंग्वेज टीचर, एज ए एजुकेटर, एज ए काउंसलर, हम अक्सर गूगल का यूज करते हैं। सो एक बार गूगल इंडिया की तरफ से इंटरनेट ऑसम, बी इंटरनेट ऑसम 2022 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिस टाइम पे जो एजुकेटर्स के लिए ओपन था, जिसमें हमको ट्रेनिंग लेना था और फिर आगे ट्रेनिंग देना था। तो मैंने ये काम किया, मैंने उनके साथ ट्रेनिंग ली और इस तरह से मैं गूगल इंडिया के साथ कनेक्ट हुई। मेरी तरह बहुत से एजुकेटर्स हैं जो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज से थे, जो पोलैंड से हैं, यूएस से हैं, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स से हैं। इस तरह से बहुत सारे एजुकेटर्स इस सेम प्लेटफॉर्म पे आए और हमने ट्रेनिंग लिया और आगे बच्चों को एजुकेट किया। इस तरह से आई बिकेम अ बी इंटरनेट ऑसम, जो मुझे गूगल से अवार्ड मिला, और उसी तरह से ग्रेजुअली मैं सुपर सर्चर्स की डायरेक्शन में पहुंची, और दैट इज हाउ आई वाज invited in Google India office at Gurugram।
1: चलिए तो बहुत ही अच्छी बात है सरीन जी कि आप बी इंटरनेट ऑसम बन गई हैं, लेकिन आप हमें ये बताइए कि हम कैसे बने इंटरनेट ऑसम।
2: इट्स अ ग्रेट आइडिया। आई थिंक हम सबको आज के जमाने में जब हम गूगल का यूज करते हैं, जब हम इंटरनेट पे हैं, तो आई थिंक हम सबको ऑसम बनना, बी इंटरनेट ऑसम की स्टेटमेंट के साथ फ्लो में आना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखिए, बी इंटरनेट ऑसम का मतलब ये होता है कि आप जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ आप देख रहे हो, क्या वो ठीक है या वो नहीं है, क्या वो फेक है या वो नहीं है, तो हम उसको कैसे पता लगाएं
1: जी।
2: इसी तरह से हम बच्चों को अवेयर करें कि आप जो देखते हो बेटा, हम प्रोजेक्ट्स देते हैं बच्चों को, हम उनको रिसर्च वर्क करने के लिए देते हैं। जैसे मेरा एक एग्जाम्पल मैं लूंगी बच्चों को, क्योंकि एजुकेटर हूं मैं, तो बच्चों को मैंने एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि आपको एक डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है एंड दिस इज योर टॉपिक। आप बिलीव नहीं करोगे हर बच्चे का सेम टॉपिक था, क्योंकि उन्होंने नेट से
1: देख लिया
2: और कट एंड पेस्ट करके लेके आ गए।
1: हाँ।
2: तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि ठीक है, आप इंटरनेट का यूज करते हो, लेकिन मेक श्योर कि आप साथ में बुक्स का भी यूज करो, जिससे आपके कोटेशंस, आपका मैटर कहीं ना कहीं डिफर करे। आप पेरेंट्स से डिस्कस करो, आप जीडीज करो, तो आपका टॉपिक बेटर इम्प्रूवमेंट के साथ आएगा और वो कट एंड पेस्ट वाला नहीं होगा।
1: ये आपने बहुत सही कहा कि ग्रुप डिस्कशंस कितना जरूरी है, ताकि हम समझ सके, सोच सके, उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर सके, तब जाके एक आत्ममंथन के साथ, एक इमेजिनेशन के साथ हम कुछ लिख सकते
2: हैं,
1: वरना
2: क्योंकि हम प्रेजेंट
1: कर सकते हैं।
2: Exactly,
1: नहीं तो AI टूल्स ऐसे आ गए जहाँ पे हम डिपेंडेंट हो गए उन चीजों पे, तो इस तरीके से आप स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं।
2: हाँ जी, स्टूडेंट्स को बताना होता है कि बेटा देखो, कई बार बच्चा ऐसा भी होता है कि कुछ भी आप देख रहे हो, किसी पे भी आपने कुछ भी कॉमेंट कर देते हो, किसी की सेल्फी देखी, आपका पर्सनल कुछ किसी बच्चे से कुछ एनमिटी है या आपको पसंद नहीं है वो बच्चा, तो आपने उसकी सेल्फी देख पे उस पे कुछ गलत सा कमेंट कर दिया, तो उनको ये भी बताना बहुत जरूरी होता है कि बेटा व्हेन यू आर ऑन नेट यू शुड बी वेरी पार्टिकुलर विद योर लैंग्वेज. हमारी वैल्यूज जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में जरूरी है, वैसे नेट पे भी वैल्यूज होना बहुत जरूरी है. और उनको अगर आप ठीक से गाइड करोगे वो बच्चा आपके पास आएगा, आपसे शेयर करेगा. और मुझे पेरेंट्स से भी मेरा यही रिक्वेस्ट होता है कि जो आपके साथ में डे टू डे हो रहा है बच्चे से शेयर करते रहिए, क्योंकि आपकी लाइफ स्किल्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. उनको समझ में आता है कि क्या उनको करना चाहिए और क्या उनको नहीं करना चाहिए. सो जो बी इंटरनेट ऑसम है, इट्स अ कंप्लीट प्रोग्राम जिसमें हम बताते हैं कि बच्चे को इवन इंटरनेट पे भी यू हैव टू बी काइंड, इंटरनेट पे भी यू हैव टू बी ब्रेव. सो बी इंटरनेट काइंड, बी इंटरनेट ब्रेव, शेयर विद केयर. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नेट पे हो डजंट मीन कि आपकी मर्जी में जो आएगा वो आप बोलोगे. बी विल सॉफ्ट, क्योंकि हो सकता है कल कोई आपके लिए कॉमेंट करे जो शायद आपको पसंद नहीं आएगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस चिल्ड्रन गेट इनटू बिग ट्रॉमेटिक कंडीशंस.
3: ये आपने बहुत सही बात कही है, हमें भी एहतियात बरतनी है एज पेरेंट्स की क्या देख रहे वो लोग क्या नहीं देख रहे. लेकिन इंटरनेट पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है. जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फेक न्यूज, फेक विज्ञापन, इनसे हम कैसे बच सकते, कैसे पता चल सकता है कि ये एक फेक न्यूज है.
2: इसका मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी इस बात को कि अक्सर आपने एक, मैंने बच्चों के साथ क्लास में एक एक्टिविटी करा, बिकॉज इस प्रोग्राम में हम बहुत सारी एक्टिविटीज भी करते हैं. तो बच्चों को मैंने बोला कि ठीक है आपको किसी चिप्स का एक एड हम लोग देखते हैं, कि आप ये चेक करो कि कोई चिप्स ऐसा अवेलेबल है जिसका जलेबी फ्लेवर है. जस्ट गो एंड चेक
3: चिप्स का जलेबी फ्लेवर.
2: लाइक इट वाज द सेम, जैसे आपने रिएक्ट किया बच्चों ने भी ऐसे रिएक्ट किया. मैं पहले हम चेक करेंगे, क्योंकि इंस्टेंटली हम येस और नो ना बोल के एक बार चेक करते हैं, अपने आप चेक करना है. हम लोग कंप्यूटर रूम में थे, बच्चों ने चेक किया, उनको पता चला कि हाँ एक जलेबी फ्लेवर है. तो बच्चों ने बोला यस, तो मैं कहा ठीक है अब इसका हमें चेक करना है, तो दोस थ्री डॉट्स उसको चेक करके देखो, वहां पर जाओ चेक करो कि वो फेक है या वो रियल है. तो उनको पता चला कि आची जो जलेबी फ्लेवर तो है, लेकिन वो एक जस्ट एक प्रैंक था जो कि सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट की तरह उसको पेश किया गया था ऑन 1st अप्रैल फूल्स डे कि हम ये फ्लेवर लेके आ रहे हैं. तो जिस उस कंपनी ने एक एड लॉन्च किया था, से बच्चों को पता चला कि दिस वाज अ फेक न्यूज. सिमिलरली एक ऐसे ही एक न्यूज थी, मैंने बच्चों को उसके लिए भी बताया कि एक आपका एक शिप ग्राउंडेड एट द मरीन बीच इन बॉम्बे. तो बच्चे कहते हाउ कैन दिस हैपन, मतलब एक शिप, इतनी बड़ी शिप मरीन बीच पे ग्राउंडेड कैसे हो सकती है. लेकिन जब बच्चों ने क्रॉस चेक किया, अभी आप भी अगर ये गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि 2011 में एक ऐसी शिप थी जो ग्राउंडेड हो गई थी.
3: और
2: वो काफी टाइम तक वहां पर थी. तो मेरे पास उस टाइम पे मुंबई की ऑडियंस थी और मुंबई के कुछ एजुकेटर्स थे, उन्होंने ये बताया मुझे कि यस मैम इट्स अ ट्रू न्यूज इट हैपेंड इन मुंबई कि ऐसा हुआ था. तो कुछ चीजें ऐसी थी हमें साउंड करती हैं कि वो गलत ही हैं या वो सही ही हैं, लेकिन जब हम उसको चेक करते हैं तो डोंट गो इमिजिएटली जब आप गूगल सर्च करते हो. तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या फेक है क्या रियल है. विद दैट यू कैन ऑलवेज चेक आउट ऑन दोस थ्री डॉट्स टू लेट अस नो वेदर इट्स फेक न्यूज और अ ट्रू न्यूज.
3: एक तो सरीन जी, अब अगला प्रश्न मुझे ये आ रहा है कि गूगल में वर्ड सर्च का भी कोई तरीका है क्या.
2: ये आपने बहुत अच्छी बात करी शिवानी जी. यहाँ मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल देती हूँ. मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है.
3: अच्छा.
2: तो मैं एक बार वॉशरूम में थी और एक छिपकली मुझे वहां नजर आए, तो मुझे लगा मैं छिपकली को मुझे भगाना है, मैं क्या करूं. तो मेरे को था कि घर में कुछ चीज मिल जाए, मिर्ची विर्ची पाउडर, और मैं डाल दूं और छिपकली चली जाए. तो मुझे समझ नहीं आया, फिर मोबाइल उठाया, उसमें सर्च किया, उसमें वर्ड टाइप किया लिजर्ड DIY. अब उसमें जो रिजल्ट्स आए, विल यू नॉट बिलीव दैट आउट, उसमें आया कि हाउ टू मेक अ लिजर्ड आउट ऑफ अ कार्डबोर्ड. तो मुझे तो चाहिए था कि मुझे लिजर्ड को भगाना
3: कैसे,
2: या तो हो जाएगा कि और सारी लिजर्ड्स मुझे डेवलप करनी है कि आई कैन डेवलप सो मेनी लिजर्ड्स आउट ऑफ अ कार्डबोर्ड. तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप क्या वर्ड टाइप कर रहे हो जिससे आपको एग्जैक्टली डालना है, मुझे क्या डालना चाहिए था उस टाइम पे, मुझे जिससे मैं उस लिजर्ड को भगा पाऊं. तो मेरा होना चाहिए था कि हाउ टू गेट रिड ऑफ द लिजर्ड, लेकिन मैंने क्या डाला उसको, हाउ टू लिजर्ड DIY. तो ये वाला चीज हुई. तो मैंने इस चीज को लेके भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्या डालते हैं. तो गूगल में जब आप सर्च करते हो तो गूगल आपके क्या वर्ड्स होने चाहिए, क्या आपके प्रॉप्स होने चाहिए, वो बहुत जरूरी होता है कि वट एवर यू आर टाइपिंग, सो दैट गूगल कैन गिव यू द राइट रिजल्ट
3: राइट इन्फॉर्मेशन हमें वहां से मिले.
2: एग्जैक्ट.
3: जी. सो जैसे कि अभी इंटरनेट का जमाना है, हम देख रहे हैं कि बार बार हमें कुछ ना कुछ टाइप करना पड़ता है, तो ऐसे हमें पासवर्ड्स टाइप इन करने पड़ते हैं. कभी हमें पता चलता है कि हमारा पासवर्ड पता चल गया किसी को या कुछ हो रहा है, तो हम अपने पासवर्ड को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं.
2: ये मैं बच्चों के साथ गेम खेलती हूँ हमेशा, जब बच्चों को एक्टिविटी करवाती हूँ उनको हमेशा बताती हूँ कि बेटा क्या आज किस किसका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है, लेट्स ट्राई. तो दे डू इट ऑन द बोर्ड, दे जस्ट ट्राई दिस आउट. तो उनको एक एक होता है एक हमारा अपर केस लोअर केस न्यूमरल्स, किस तरह से आपका कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, दिस इज मिक्स ऑफ एवरीथिंग.
3: ओके,
2: सो मैं बच्चों को एक एक बड़ा वे बताती हूँ. जैसे हमारा एक एक सॉन्ग है I'm a Barbie girl in the Barbie world. तो आप इसका सबका फर्स्ट इनिशियल ले लीजिए. That becomes one password for you. क्योंकि आपको पता है वो आपका ये सॉन्ग
3: ये सही तरीका है.
2: So this can be a way out है कि हमारा एक सॉन्ग भी हो गया और साथ में हमने बीच में जहां भी हमको चाहिए हमें अपर केसेस ले लिए, लोअर केसेस ले लिए और बीच में हमने कहीं ना कहीं हैश टैग्स या अपने अंडर स्कोर डाल दिया. That becomes you know. बिकॉज बच्चों को हमेशा होते हैं बच्चे अपने एड्रेस या बर्थडेज या फादर्स नेम या मदर्स नेम लेते हैं जो इज वेरी वेरी रॉन्ग. तो उनको बताना बहुत जरूरी होता है. दिस कैन बी अ वे ऑफ साइबर बुलिंग ऑल्सो. सो आप कोशिश कीजिए कि अपना पर्सनल डिटेल्स कभी भी अपने पासवर्ड में यूज मत कीजिए. इट्स लाइक अ लॉक, इट्स लाइक अ डोर विच कैन बी ओपन एनी टाइम. अपने घर बंद करने से पहले आप चार बार चेक करते हो कि लॉक है कि नहीं. तो नेट इज ऑल्सो लाइक दिस. सो मेक श्योर कि आप जो भी पासवर्ड यूज कर रहे हो शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड.
3: ये आपने सही तरीका बताया बाबी गर्ल सॉन्ग से, और ये भी हमें समझ में आया कि कितना इजिली एक्सेसिबल रख देते हैं बच्चे अपने पासवर्ड्स को. तो बहुत जरूरी है हम ऐसे कॉमन चीजें एड्रेस हुआ, माता पिता का इंट्रोडक्शन हुआ, ये सब ना डालें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को रखें. तो ये बहुत अच्छी बात है. आजकल देखा जाता है एकता जी की क्लासरूम्स में भी इंटरनेट है, एआई की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो कैसे हम वहां पे एहतियात बरत सकते हैं?
2: आई थिंक यहाँ पे फिर बहुत जरूरी है कि क्योंकि देखिए स्मार्ट बोर्ड्स हर जगह आ चुके हैं, एआई ऑलमोस्ट हर उसमें एंटर कर चुका है. तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो यूज कर रहे हो, जो आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें किस तरह के आप वर्ड्स का यूज करो.
3: ओके,
2: आपका मैक्सिमम पर्पस क्या होना चाहिए. टीचर्स उस टाइम एजुकेटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है यहाँ पर कि आप बच्चों को उस टाइम अवेयर कीजिए कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हो तो बच्चों को बताइए इस पर्टिकुलर साइट पे आप जा सकते हो. दिस शुड नॉट बी ओपन टू एवरीथिंग आउट. चैट जीपीटी या बार्ड का यूज वो कर रहे हैं तो उनका अपना क्रिएटिविटी कैसे खत्म होता है. तो डोंट लेट देम गिव अ चांस फॉर दैट. करें वो इस्तेमाल करें उसका, लेकिन उनको साथ में बोलिए बुक्स का यूज, लाइब्रेरी का यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे ग्रुप में जब हम ये प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास वैरायटी आएगी. नहीं तो वो सिमिलर चीज लेके आते हैं तो उनको आप वहां पे हाईलाइट कीजिए कि बेटा आपने चैट जीपीटी का यूज किया है यहाँ पर. तो जब बच्चे को एक बार आप हाईलाइट कर देते हो तो बट ऑब्वियस उसको हम साइडलाइन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे इस एज में उनको गाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेटर्स का जॉब है और डेफिनेटली घर में पेरेंट्स का जॉब है.
3: थोड़ी देर पहले आपसे SIFT के बारे में बात हो रही थी, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएंगे कि क्या है SIFT.
2: SIFT एक्चुअली इज बीन डेवलप्ड बाय मिस्टर माइक कॉल्फी, जो कि एक एक्सपर्ट है. इन्होंने इसको डेवलप किया है. ये भी आपका सुपर सर्चर्स का प्रोग्राम था
3: जी.
2: तो S stands for stop. Stop का मतलब क्या, सपोज आप एक आरजे हो, आपके पास कल एक कॉल आता है दुबई से कि शिवानी तुम्हारी आवाज सुनी, इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल वॉइस, और दुबई में एक जस्ट सेंड मी योर CV और तुम्हारा जॉब तो बिल्कुल फाइनलाइज है, प्लीज कम ओवर. आपको बड़ा अच्छा साउंड करेगा, बट प्लीज चेक द सोर्स, चेक द पर्सन आउट कि कौन ये इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है. तो स्टॉप इज दैट, स्टॉप. हम बहुत जल्दी से यू नो फ्लो में आ जाते हैं, जो आजकल की जनरेशन का मेजर प्रॉब्लम है कि आपने कुछ सुना, आप हाँ मेरे को भी अप्लाई करना है. तो बिफोर सेंडिंग योर CV जस्ट स्टॉप एंड थिंक. उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस सोर्स से आ रहा है क्या वो ठीक है क्या वो गलत है. सेकेंड इज आई इज इन्वेस्टिगेट द सोर्स,
3: इन्वेस्टिगेट.
2: सो इन्वेस्टिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे पास जिस सोर्स से आया है हम इजिली उसको चेक कर सकते हो कि आप पूछ सकते हो किस कंपनी में है ये, किस रेडियो स्टेशन में है, ठीक है. Love to come over to Dubai, लेकिन let me know about the details. So आप investigate कर सकते हो और अपने level पे कर सकते हो very easily. Third comes is F. F is find better coverage. You can always find out because everything is available. Is it right? Is it wrong? कितना fake है, कितना true है? Because suddenly कोई आपकी आवाज सुनके आपको as a RG invite नहीं कर सकता. So let's find out क्या उसके पीछे. और ऐसे बहुत लोग होते हैं जो पैसे दे देते हैं और आप जब जाते हो तो कुछ भी नहीं होता वहाँ पे. इस कारण बहुत ज्यादा आपके साथ में hoax calls होते हैं, right? So this is something to very much understand and get the reality. Again, टी स्टैंड्स फॉर ट्रेसिंग द क्लेम्स. दिस इज यूजली डन बाय द गवर्नमेंट, जो आपकी गवर्नमेंट की साइट्स होती हैं वो प्राइमरी होता है. ये सेकेंडरी के लेवल पे हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर हमको इसकी जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती. बट एज अ सेकेंडरी सोर्स हमको ये पता करना होता है कि क्या वो गवर्नमेंट साइट थी जहाँ से हमारे इन्फॉर्मेशन आया, तो इट कैन बी ट्रू. बट इफ इट वॉज समथिंग विच वॉज समथिंग कोई बिजनेस पर्पज से वो हुआ, तो लेट्स चेक इट आउट वेदर दैट वॉज अ राइट क्लेम और रॉन्ग क्लेम.
3: बिल्कुल सही. तो SIFT के बारे में हमें पता चला. तो आप हमें बताइए एकता जी, टिप्स टू बिकम सुपर सर्चर, आखिरकार हम कैसे बन सकते हैं, ये इसके बारे में बताइए.
2: टिप्स कैन बी, वी हैव अ क्विक टिप्स अबाउट इट कि क्या कर सकते हैं हम एज अ सुपर सर्चर. सो पहली चीज तो है हमको सर्च बाय वॉइस, जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है. जो हमारे आजकल के बुजुर्ग है उनको टाइपिंग करना में बहुत मुश्किल होता है
3: जी,
2: लेकिन ऑलवेज सर्च By the voice. आप जैसे भी आप सर्च करोगे, कुछ भी आप बोलोगे, इमिजिएटली आपको आपका वॉइस आपको ट्रेस कर लेती है. और अभी दिस थिंग नॉट इज वेरी मच अवेलेबल ऑन योर मोबाइल्स, वेरी वेरी

0: परफ्यूम गिफ्ट किया कोई जापान से आया था, बट नाउ मुझे उस लैंग्वेज को समझ में नहीं है बिकॉज आई डोंट नो जापानीज. सो मैंने गूगल लेंस के थ्रू उसको चेक किया, अपनी लैंग्वेज में उसको डाला कि आई वांट टू सी इन हिंदी कि क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर. मुझे पता चला उसके डायरेक्शंस कैसा यूसेज है उसका. तो इवन दिस कैन बी डन वेरी इजीली बाय गूगल लेंस. सो वी कैन डू द रेगुलर थिंग्स एंड दैट्स हाउ यू कैन बिकम अ सुपर सर्चर फॉर श्योर.
1: ओके, तो एकता जी आप हमें बताइए कुछ क्लेम सोर्सिंग के बारे में, ट्रेसिंग के बारे में, इसके बारे में हम कैसे कर सकते हैं.
0: सी, इसका बहुत सारा वेज हो सकता है कि आपका जो डिफरेंट वेज होते हैं जब हम सोर्सेज पे जाते हैं, जब डिफरेंट क्लेम्स देखते हैं, तो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. हमारी कुछ साइट्स हैं जो हमेशा आपको विच यू कैन जस्ट ऑलवेज रिलाई अपॉन. देयर आर सर्टेन साइट्स जो हमेशा जो गवर्नमेंट की साइट्स होती हैं, जैसे सपोज आपके आजकल रिजल्ट आ रहा है, बोर्ड के बच्चे अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या होगा, वो किस साइट पे जाए. जैसे आप खोलते हो बोर्ड रिजल्ट्स, यू विल फाइंड सो मेनी साइट्स टेलिंग यू आउट, बट बेस्ट टू गो टू .cbse. एग्जैक्ट राइट थिंग आउट की दिस इज वॉट द थिंग्स आर. सो जो भी आप इन्फॉर्मेशन देते हो शुड बी ऑन अ गवर्नमेंट साइट, एंड गवर्नमेंट साइट्स आर देयर विच विल गिव यू द राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट. सो दे कैन बी सर्टेन साइट्स विच वन कैन रिलाई अपॉन एंड हाउ वी कैन जस्ट गो अबाउट. सो दिस दीज आर फ्यू डोमेन्स लाइक .gov, nic.in, education.edu.in, .org, .ac.in. So these are few sites which are reliable, जहाँ पे आपको कभी भी आप गलत नहीं होगे और they can be always the right sites for you.
1: आजकल एकता जी क्या हो रहा है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग बहुत प्रचलित है और ऐसा भी होता है कभी कभी वीडियो कॉलिंग आ जाता है, आपको कहीं से हेलो हो जाता है और वहां से कुछ वापस आवाज नहीं आती या कोई गंदी बात शुरू हो जाती है, तो ऐसे स्कैम से भी हम कैसे बच सकते हैं.
0: आई थिंक पहले तो बहुत जरूरी है आपका सेफ सर्च. सेफ सर्च ऑप्शन आई थिंक हमारे पास अवेलेबल होता है, क्योंकि मैं बोलूंगी घर में हम सब, घर में बच्चे भी हैं जो सेम लैपटॉप यूज करते हैं या सेम डेस्कटॉप यूज कर रहे होते हैं. सो डेफिनेटली अपना सेफ सर्च का ऑप्शन हमको ओपन करके रखना चाहिए. उसमें हमेशा क्या होता है कि आपका फिल्टर्ड हो जाता है, जो भी सेक्सुअल फिल्म्स आ रही हैं या नोटिफिकेशन आ रहे हैं या इवन कुछ वायलेंस से लिंक जो चीज आती है, वो ऑटोमेटिकली फिल्टर होके आएगी, तो वो बच्चों के रीच तक नहीं रहेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, आपके पास कहीं से भी कुछ कॉल आता है और वो वीडियो कॉल आ रहा है, सो मेक श्योर अपने कैमरे पे अपना थंब प्रेस करके जरूर रखिए, जिससे आपका कोई भी वीडियो सामने तक ना पहुंचे जहां से भी कॉल आ रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल, गलत नंबर जो आपके पास सेव नंबर नहीं है उसको आपको रिसीव ही नहीं करना चाहिए. फिर आगे गेमिंग की बात, गेमिंग के साथ भी आई थिंक हमको बहुत क्लियर होना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों को गाइडेंस देते रहना चाहिए कि क्या जरूरी है. कई बार बच्चों को स्टेप्स मिलते हैं कि इसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल ये रहेगा, आपको ये करना है, ये चैलेंजेस आपको एक्सेप्ट करने हैं. सो आस्क देम टू स्टॉप देयर, बिकॉज कई कई गेम्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को उनके पर्सनालिटी के लिए, उनके पर्सनालिटी को डेवलप करने की जगह उनको ऑल डिप्रेशन में ले जाते हैं, जो आप अक्सर बच्चों को देखते रहते हो. तो टीनेजर्स के साथ बहुत जरूरी है कि उनको हमको वहां पर स्टॉप करना चाहिए. स्टॉप जो आपका सेव बटन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि उनको जरूर पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सेव सर्च का बटन हमेशा ऑन रखें.
1: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई सेव सर्च के बारे में कि कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट हो गया है ये. और वैसे देखा जाता है साइबर बुलिंग का बुरा प्रभाव होता है, इससे प्रभावित लोगों को कैसे मदद मिल सकती है जो इससे प्रभावित हो चुके हैं. अब
0: देखिए, साइबर बुलिंग एक तरह का, जैसे आप रेगुलर डेज में इतने बच्चों का रैगिंग होता है या बुलिंग होता है, साइबर बुलिंग भी उससे वर्स चीज है.
1: क्या है ये साइबर बुलिंग बेसिकली?
0: देखिए, साइबर बुलिंग में क्या है, आपने कोई पिक डाला, एक इट्स वेरी वेरी वेरी कॉमन एग्जांपल, बच्चे अपनी पिक्स अपलोड करते रहते हैं, तो बच्चों की पिक पे बच्चे उसके बाद कॉमेंट्स भी देखते हैं. बच्चे जब कमेंट्स देखते हैं तो हर तरह के कमेंट्स आ सकते हैं, हो सकता है आपको चार अच्छे कमेंट आए तो 10 खराब कमेंट्स भी आ जाएं. उसके बाद जो उनको गलत कमेंट दे रहे हैं उससे लिंक भी लोग जुड़ जाते हैं, तो बच्चा को किसी तरह से भी पुट डाउन किया जा सकता है. अभी तो आप रियल लाइफ में हम ये बात करें, साइबर बुलिंग चल रहा है, बस उसको आप बच्चे क्लासरूम तक, अपने ग्रुप्स तक भी लेके चले जाते हैं, तो बच्चे का कई बार घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है कि मेरे साथ साइबर बुलिंग हो रही है, कॉन्स्टेंटली कोई मुझे वॉच कर रहा है, कॉन्स्टेंटली मुझे कोई गलत कॉमेंट कर रहा है, ग्रुप में उसको सबके सामने इंसल्ट कर रहे हैं, लुक्स अच्छे नहीं, आपके लिप्स बहुत मोटे हैं, यू डोंट लुक लाइक गुड at all, you are not worth, आपका हेयर स्टाइल आपको सूट नहीं करता, आप एक ऐसा ड्रेस पहन के आए हो. तो इस एज में ये छोटी छोटी चीजें बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं बच्चे, और बच्चे पब्लिक आने को तैयार नहीं होते हैं, उनका सोशल लाइफ जीरो हो जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लेट्स टॉक देम आउट. और पेरेंट्स को भी अप्रोचेबल होना चाहिए, अगर बच्चा आपको लग रहा है उनके सिम्टम्स की बच्चा लोगों से मिलने को तैयार नहीं है, आपके घर में कोई आ रहा है बच्चा बाहर आने को तैयार नहीं है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग. सो लेट्स टॉक टू अ चाइल्ड. अगर हम बच्चे से बात करेंगे तो डेफिनेटली अ चाइल्ड शुड ऑल्सो बी आस्क्ड टू गो टू अ काउंसलर, गो टू अ एजुकेटर, जिससे आप कंफर्टेबल हो, स्पीक इट आउट. तो दिस इज वी कॉल यू आर ब्रेव. आप ब्रेव हो इसलिए आप आके बात कर रहे हो. सो टॉक इट आउट. जब हम बात करते हैं तो बहुत हद तक चीजें क्लियर हो जाती हैं. और अगर आपको लगता है कि किसी को आपको ब्लॉक करना है तो प्लीज डू दैट. उसमें हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं.
1: बिल्कुल,
0: है कई बार बच्चे इस बात से भी घबराते हैं कि अगर मैंने ब्लॉक करा तो
1: क्या होगा,
0: हाउ विल द थिंग्स कम टू अस. तो इट्स इंपॉर्टेंट आप ब्लॉक कर सकते हो, जिप इट आउट, यू नो, कंप्लीटली जिप अ पर्सन आउट, ब्लॉक इट आउट एंड फ्लैग इट आउट. दिस इज थ्री थिंग्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग साइबर बुलिंग कि वन शुड नो अबाउट इट. एंड बच्चों को हमें ट्रेन करना बहुत जरूरी है. इस प्रोग्राम के थ्रू हर एजुकेटर को और हर पेरेंट्स को जुड़ना चाहिए.
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस. जैसे कि हम एहतियात बरत सकते हैं इन चीज़ों से कि हम साइबर बुलिंग की ओर ना जाए, या कैसे उस डिप्रेशन से बचा जा सकता है, कैसे हम पहले अवॉइड कर सकते हैं ऐसे सिचुएशंस कि हम साइबर बुलिंग की ओर जाए ही ना, उससे हम प्रभावित ना हो. लेकिन कोई ऐसी जगह है जहां हम शिकायत कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में? जैसे आपने बताया ब्लॉक कर दीजिए, वो एक मेथड है, लेकिन क्या कहीं शिकायत भी दर्ज की जा सकती
0: है? यस, साइबर स्टेट्स के सेशंस रहते हैं, आप डेफिनेटली गो एंड कंप्लेन ओवर देयर. इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है, वन शुड गो ऑन informed directly there. तो उनके पास इस तरह की complaints आती हैं और वो action भी लेते हैं.
1: एक तो सरीन जी, कोई message जो आप श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं बताइए.
0: मैं यहाँ पे एक quote से end करना चाहूंगी, that internet gives us the access to various things, right? It's just one click, but you have to be wise, you have to be internet awesome, so definitely you will be the super surgeon.
1: तो श्रोताओं, आपको समझ में आया कैसे हम गूगल सर्चर बन सकते हैं, बी इंटरनेट ऑसम बन सकते हैं एकदम एकता सरीन जी की तरह. बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
0: धन्यवाद शिवानी जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके और अपने लिसनर्स से बात करके.
1: जी, तो आप सुन रहे हैं टेक गुरु प्रोग्राम, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.8, देश का चैनल देश के लिए.

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को और सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। भारतीय सेना को इतिहास के झरोखे से झांकते हुए कार्यक्रम की उन कड़ियों पर हमारी नजरें हैं जहां सन 1971 के युद्ध को हमारा देश जीत चुका है और केवल 14 दिनों की लड़ाई में विश्व पटल पर भारतीय सेना ने भारत को एक मजबूत और सुदृढ़ राष्ट्र, एक सशक्त और सुलझी हुई वैश्विक सोच वाले राष्ट्र के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। श्रोताओं, इस युद्ध ने न केवल आजाद भारत की सैन्य शक्ति से पूरी दुनिया को परिचित करवाया बल्कि हमारे देश की सुलझी हुई रणनीति और मानवीयता के पक्ष को सामने रखा कि किसी देश का निर्माण करके उस पर एकाधिकार की चेष्टा न करते हुए उसकी स्वतंत्रता का सम्मान किस तरह से किया जाना चाहिए, इसका उदाहरण हमने विश्व में पेश किया। यहाँ हमारी भारतीय सेना के जो आधारभूत मानवता के मूल्य हैं वो एक बार फिर श्रोताओं उजागर हो जाते हैं। श्रोताओं, यदि 1971 की इस लड़ाई का विश्लेषण किया जाए, और जो कि इस लिहाज से जरूरी है कि यही तो वो युद्ध था जिसने आजादी के बाद भारत को स्वयं की दृष्टि में और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूरी दुनिया की दृष्टि में एक नया दृष्टिकोण से देखने का अवसर दिया। आइए कार्यक्रम की आज की कड़ी में इसी पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं और इस चर्चा को करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। सर, एक बार फिर आपका स्वागत है।
3: नमस्कार पूर्वाजी, जय हिंद श्रोताओं। पूर्वाजी, आपने बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया है।
2: जी, धन्यवाद सर।
3: 71 वॉर वॉज द थर्ड वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
2: जी।
3: एंड इन टोटैलिटी इंडिया के लिए ये फोर्थ मेजर वॉर था सिंस इंडिपेंडेंस। तो चारों वॉर्स में अगर एक बात आप देखते हैं कि इट वॉज नॉट द इंडिया हु टुक द इनिशिएटिव। हमने कभी अपनी तरफ से किसी के ऊपर हमला नहीं किया।
2: जी, बिल्कुल।
3: हमेशा ये हुआ है कि हमारे ऊपर हमला करा गया है।
2: जी।
3: हाँ, ये बात जरूर है कि जब भी हमारे पे हमला हुआ है हमने उसका डट के मुकाबला किया और विजय हासिल करी है।
2: जी, बिल्कुल।
3: और ये जो विक्ट्री थी 71 की, इसमें एक और बात थी कि जो तीनों फोर्सेस थी उनका जो पार्टिसिपेशन था फुल स्केल पार्टिसिपेशन था।
2: जी।
3: जो है, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स में जिक्र किया था, ज्यादातर हमने देखा था कि 62, 65 और इसके पहले 47 में भी इट वाज आर्मी एंड एयरफोर्स विच हैड प्लेड द मेजर रोल। तीनों के तीनों फोर्सेस ने जॉइंटमैनशिप का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था। हमने जैसे देखा कि हेलीबॉर्न ऑपरेशंस हुए, इसमें एयरबॉर्न ऑपरेशंस हुए, एम्फीबियस ऑपरेशंस हुए, जो है तो वो एक जॉइंटमैनशिप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल उदाहरण है। पाकिस्तान ने सरेंडर किया, उसका भी कोई और एग्जाम्पल नहीं मिलता है हिस्ट्री में आपको उस तरह का, जो है इतना बड़ा सरेंडर लेना जो है। और इसके लिए जो ऑफिसर्स मैन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, निसंदेह ये उनकी बहादुरी, उनका जज्बा, उनकी लीडरशिप, सारी चीज़ें मायने रखती हैं, उनके सिंसियरिटी, ये सब मायने रखती हैं। और बिल्कुल सही है कि इस पूरे युद्ध में जो है 600 से ज़्यादा ऑफिसर्स और जवानों को गैलेंट्री अवार्ड्स मिले, जिसमें कि हमने ऑलरेडी जिक्र किया था कि 4 पीवीसीज के बारे में, परमवीर चक्र विजेता का हमने जिक्र भी किया है था, 75 से ज़्यादा जो है महावीर चक्र मिले थे और ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा जो है वीर चक्र, और भी काफ़ी सारे अवार्ड्स से लोगों को सम्मानित किया गया जो कि वो बहुत डिजर्व करते थे। जो यूनिट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन यूनिट्स ने भी बहुत अच्छा काम किया था एंड उनको भी जो है बैटल ऑनर से, थिएटर ऑनर से और भी जो है साइटेंशियस मिली थी जो है। अब हर युद्ध में जो होता है सेक्रीफाइस भी होता है, शहीद भी होते हैं, तो सेम इसमें भी आप देखेंगे तो 12,000 से ज़्यादा मतलब जो है कैजुअल्टीज थी। जब मैं कैजुअल्टीज की बात कर रहा हूँ तो उसमें 3,000 जो है शहीद हुए थे, ऑफिसर्स और जवान जो है 3,000 शहीद हुए थे और बाकी जो है जिनको मतलब घायल हुए थे वो थे। ये एक तरह से जो है कुर्बानी होती है वो तो
2: हर विजय
3: बलिदान है जो कि जरूरी भी होता है। और देखने वाली बात यह है कि इस बलिदान के लिए भी हर सैनिक हमेशा तैयार रहता है, वही हमने इसमें भी देखा। सीज फायर जब हुआ था 17 दिसंबर को, जिसको कि हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, और उससे पहले जो है इंडियन आर्म फोर्सेस ने अप्रोक्सीमेटली 15,000 square kilometers पाकिस्तान की टेरिटरी कैप्चर करी थी वेस्ट पाकिस्तान में जो है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा जो है। एंड ये सीज फायर होने के बाद जो है वो सोल्जर्स जिनको प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया हुआ था वो हमारे साथ थे। तो शिमला एग्रीमेंट जो हुआ, जो शिमला एग्रीमेंट जो हुआ है वो 2 जुलाई 1972 को हुआ था, जिसमें कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल का डिमार्केशन हुआ, प्रिजनर ऑफ वॉर्स का जो मतलब रिपैट्रिएशन होता है मतलब वापस अपने देश में भेजना जो वो हुआ, और बाकी जो काफ़ी सारे जो मुद्दे थे उनको मतलब सॉर्ट आउट हुआ। तो एक तरह से 1972 में जाके हम ये कह सकते हैं ये फाइनली सेटल हुआ। ये एक युद्ध ऐसा था, ये हम पे सारे युद्ध इम्पोज हुए थे, ठीक है, थोपे गए थे, बट हर एक में जो है वी टुक ओवर द चैलेंज इन ए वेरी ब्रेव मैनर, ठीक है। और जो हमारे सोल्जर्स हैं तो स्टूड फॉर्म ऑन द ग्राउंड। हमारी जब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सॉवरिनिटी की बात आती है, देश की संप्रभुता की बात आती है, तो जवान की कोई सानी नहीं है, वो हमेशा जो है डट के खड़े रहते हैं। इन सारे युद्ध ने 47 ऑनवर्ड्स जितने भी हुए हैं, आप देखेंगे हम जब जिक्र भी कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो है आर्म फोर्सेस जो है मैच्योर होती चली गई, अनुभव बढ़ता चला गया एंड मॉडर्नाइजेशन साथ साथ होता रहा। जैसे इस समय तक 71 तक जो है इंडियन एयरफोर्स वाज वन ऑफ द बेस्ट, लाइक वी डिस्कस्ड इट कि फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स बन गई थी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मॉडर्नाइजेशन होता गया एंड डॉक्ट्रिन चेंज होती गई, उसके बाद ट्रेनिंग जो है उसमें काफी बदलाव आए जो है, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी हुआ और सेल्फ रिलायबिलिटी जो थी डिफेंस सेक्टर में जो है और जो कि आज देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। तो ये जो है एक प्रोसेस था, तो एक तरह से ये युद्ध होने के कारण भी जो है लगातार चलते रहे, तो उस कारण से भी इसमें काफी बढ़ोतरी रही जो है।
2: जिस तरह से सर राष्ट्र का विकास हुआ वैसे ही सेना का भी विकास हुआ, सेना का भी वैसे ही अनुभव बढ़ता चला गया ग्रेजुअली।
3: बिल्कुल वैसे ही ग्रेजुअली वो बढ़ता चला गया और इनके सामने चैलेंजेस आते रहे जो है बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते रहे। एंड यू सी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हर चैलेंज को जो है बहुत डटके जो है बहुत बहादुरी से उसका स्वीकार किया, उसका मुकाबला किया गया है ना। तो एंड वी फाइंड कि 47 से 71 तक पहुंचते पहुंचते देयर वाज अ मार्क इंप्रूवमेंट इन द फाइटिंग कैपेबिलिटी बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट अपग्रेडेशन, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन के कारण थी। इन सब में जो है मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है सोल्जर, जो द मैन ऑन द ग्राउंड, ठीक है, जो सोल्जर है। मैं खुद भी मतलब आर्म फोर्सेस में रहा हूँ, आर्मी में रहा हूँ, और हमारे जो सोल्जर्स हैं उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। मैंने भी मतलब जो है बहुत डिफिकल्ट जगह पे सर्विसेज करी हैं और मैंने कभी अपने सोल्जर्स को कभी पीछे हटते हुए नहीं देखा, कभी किसी भी ऑपरेशन में कहीं पे भी ये नहीं सुना कि बहुत हो गया या जो है किसी तरह से बोला कि नहीं अब हम ये नहीं कर पाएंगे, ये कभी नहीं सुना। चाहे मैं सियाचिन में रहा, कारगिल में रहा, एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस में रहे, मैंने कभी ये बात नहीं सुनी और इसके बाद का मुझे बहुत गर्व है।
2: जी, बिल्कुल। और हमें भी गर्व है सर।
3: बिल्कुल, ये तो होना भी चाहिए, ठीक है, और इनके कारण ही हमारी देश की सुरक्षा है, ठीक है। और ये सिर्फ मतलब अगर आप पीस स्टेशन पीस में भी बात करें, जब लड़ाई नहीं होती तब भी जिस तरह की कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है कहीं पे भी जो है जरूरत होती है, तो सोल्जर्स आर ऑलवेज देयर ऑन द फ्रंट लाइन, हमेशा रहते हैं। तो इनका जो रोल रहा है और उस समय रहा और आज भी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब अनकम्पेरेबल। और एक और बात होती है कि इट इज़ नॉट द मशीन, इट इज़ द मैन बिहाइंड द मशीन हु मैटर्स। तो हमने 65 में भी देखा, हमने 71 में भी देखा, युद्ध में देखा, इवन अगर देखा जाता है 47 के टाइम पे भी देखा, जो हमारा इक्विपमेंट उस समय जब अच्छा नहीं भी था, हमसे जो बेहतर इक्विपमेंट के साथ पाकिस्तान ने जब हम पे अटैक किया तब भी हमने विजय हासिल करी, तब भी हमने जो है उसके इरादों में उसको सफल नहीं होने दिया।
2: तो हमारे इरादे मजबूत थे ना?
3: जी, हमारे इरादे मजबूत थे। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा सोल्जर है, ठीक है, ही स्टूड फॉर्म, ठीक है
2: जी।
3: तो इक्विपमेंट से ज्यादा जो है, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन हु मैटर्स एंड इट इज ऑलवेज देयर, ठीक है ना। और यही ट्रेडिशन जो है हमेशा से कंटिन्यू रहा है,
2: यही हमारी विरासत है,
3: ये हमारी विरासत है। और आज भी ये चीज जो है मायने रखती है, हमेशा से रही है। और जो हम बोलते हैं नाम नमक निशान, उसके लिए हमारा सोल्जर जो है हमेशा खड़े रहते हैं। बहुत मतलब जो है इस बात के लिए मुझे बहुत गर्व होता है।
2: जी सर, हम भी इसी में शामिल हैं आप ही के साथ।
3: कि मुझे भगवान ने मौका दिया कि मैं भी उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिला के काम कर पाया।
2: सर बहुत भाग्यशाली है सर आप।
3: थैंक यू।
2: तो श्रोताओं, एक तरह से देखा जाए तो भारत ने ये युद्ध जीता ही नहीं बल्कि इतिहास की दिशा को ही इस युद्ध ने बदल कर रख दिया। विश्व का भूगोल ही नहीं बदला बल्कि अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा को भी इस युद्ध ने बढ़ा दिया। और इस तरह हमारी भारतीय सेना ने मानवीय पक्ष को सर्वोपरि रखने वाली हमारी सोच को एक बार फिर दुनिया के सामने सिद्ध कर दिया। तो ये तो थी सन 1971 के भारत पाकिस्तान जंग की दास्तान, जिसे हमारे सामने बड़े ही तफसील से सर आपने पेश किया। लेकिन ये बात यहीं और यूं ही समाप्त नहीं हो जाती, जब तक कि सन 1971 के युद्ध की जो व्यूह रचयिता हैं, या जिन्हें हम कह सकते हैं कि विजय की गौरव गाथा लिखने वाले नायक हैं, यानी कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, इन्हें हम याद न करें।
3: बिल्कुल बुरुआ जी,
2: जी,
3: he was a national hero।
2: जी बिल्कुल, किसी इनकी बात करना बहुत जरूरी है सर।
3: बिल्कुल बिल्कुल, इसके बगैर आपने सही बोला कि ये एपिसोड खत्म ही नहीं हो सकता।
2: जी बिल्कुल,
3: ये जो 71 की लड़ाई का किस्सा है हम नहीं खत्म कर सकते हैं।
2: जी सर,
3: इसका इतिहास अधूरा है।
2: जी,
3: जब तक हम फील्ड मार्शल सैम आर्मूस जी, फ्रेम जी, जमशेद जी, मानेकशॉ साहब के बारे में जिक्र ना करें।
2: जी बिल्कुल,
3: देखिए लीडर्स होते हैं, कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो एक चीज में मतलब माहिर होते हैं, जिनका एक कैरेक्टर होता है, दूसरा क्वालिटी होती है। मानेकशॉ सर ऐसे थे जिनके पास सब कुछ था, एक तरह से मतलब वो हर तरह से जिनको मतलब हर एक का प्यार मिलता था।
2: जी,
3: जितना उनको ऑफिसर्स प्यार करते थे उतना जो है इज्जत करते थे, उतना ही जवान उनको प्यार करते थे। और ही वाज वन पर्सन जिनको कि मतलब ही वाज आफ्टर दिस वॉर मतलब ही बिकेम ए हाउसहोल्ड नेम इन द कंट्री।
2: जी बिल्कुल,
3: जो कि बहुत कम ऐसा होता
2: आज
3: है,
2: भी सर बच्चा बच्चा उन्हें जानता,
3: बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। तो वो एक तरह से जो शख्सियत है उनकी, जो पर्सनैलिटी थी, जो ऑरा था उनका, वो एक बहुत ही अलग ही था जो है।
2: जी।
3: मुझे भी उनके बारे में जिक्र करते समय बहुत खुशी हो रही है।
2: जी।
3: मैंने भी मतलब जितना उनके बारे में पढ़ा है जो है, और बहुत गर्व महसूस होता है उनके बारे में जान के। तो थोड़ी बहुत जो बातें मैं जानता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि मानेकशॉ सर जो थे, ही वॉज फ्रॉम द फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन मिलिट्री अकेडमी 1932 में, जिसको कि पायनियर्स बोला जाता है। और इस बैच की खासियत ये थी कि इसमें मानेकशॉ सर थे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया के बने थे, उनके जो कोस्टमेट थे मोहम्मद मूसा, वो पाकिस्तान के चीफ बने थे, और स्मिथ डन जो थे वो बर्मा के चीफ बने थे।
2: अच्छा।
3: तो ये जो पायनियर बैच था
2: जी,
3: इसने तीन चीफ दिए थे अलग अलग कंट्री के।
2: जी।
3: सर जो है फाइनली मतलब जो है 8 गोरखा राइफल में आए थे, पहले मतलब उनका कमीशन 2nd बटालियन रॉयल स्कॉट्स में हुआ था, स्काउट्स में हुआ था, फिर उसके बाद देन ही वेंट टू 412 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, एंड फाइनली मतलब आफ्टर पार्टीशन ही वाज इन 8 गुरखा राइफल्स। तो 42 में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, बर्मा में जो है मानेकशॉ सर जो है लीड कर रहे थे कंपनी, उस समय जो है उनको 9 बुलेट्स लगी थी, 9 बुलेट्स जो है मतलब पेट में लगी थी, एंड एवरीबॉडी थॉट कि मतलब ही विल नॉट सरवाइव।
2: सर 9 बुलेट बहुत बड़ी बात होती है, आप सोच नहीं सकते कि कोई जीवित बचेगा।
3: बिल्कुल बिल्कुल, उस समय जो है उनकी बहादुरी के लिए जो है उनको मिलिट्री क्रॉस से भी सम्मानित किया गया था, एंड ही सरवाइव्ड। ठीक है, उन्होंने तो सरवाइव करना ही था, वो हमारे नेशनल हीरो हैं।
2: बिल्कुल सर।
3: तो वेरी राइटली सेड कि 71 का जो युद्ध था वो उसके महानायक थे
2: जी, बिल्कुल।
3: और जो है यस अंडर हिम ओनली, अंडर ही वाज द वन हु प्लान्ड ऑपरेशन, ठीक है, अंडर हिम ओनली वी वन दिस वॉर। ही वाज द 8th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, एंड ही हैड शोन मतलब हिज एबिलिटी टू मोटिवेट द फोर्सेस, ठीक है, and with a very mature war strategy he came up, and that is why matlab he became a prime architect of this victory
2: ji।
3: Sam sir ko apni jo life mein unhone jab army military mein bhi unhone jab apna service mein hai unko padma bhushan se sammanit kiya gaya tha 68 mein
2: ji,
3: aur uske baad 72 mein again matlab he was awarded padma vibhushan also jo hai। एंड सर जो है एक बार एज ए चीफ ही वाज विजिटिंग हिज रेजिमेंट 8GR जो है
2: जी।
3: तो उसमें उन्होंने एक सोल्जर से पूछा कि भाई आपको आपके चीफ का नाम मालूम है, तो जो है गोरखा सोल्जर ने जवाब दिया कि हाँ उनका नाम सैम बहादुर है। तो तब से उनका नाम जो है निकनेम बिकम
2: सैम बहादुर,
3: सैम बहादुर। मानेकशॉ सर जो है 15th जनवरी को देन फाइनली ही रिटायर्ड, एंड उससे पहले जो है 1st जनवरी को उनको जो है उनके सम्मान में उनको फील्ड मार्शल, वी बिकेम द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस।
2: यानी अवकाश प्राप्त करने के मात्र कुछ दिनों पहले उन्हें ये ओहदा मिला,
3: ओहदा मिला था
2: जी।
3: डाइड एट विलिंगटन में रहते थे वो जो है, एंड 27 जून 2008 में एट द एज ऑफ 94 उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली
2: जी।
3: लेकिन वो तो चले गए, लेकिन उनकी यादें और उनका जो ऑरा है वो हमेशा
2: हमेशा
3: बरकरार रहेगा और जीवित है। ही वाज अ वेरी चार्मिंग लीडर, मतलब ना जो ही कमांडेड ग्रेट रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी फ्रॉम हिज ट्रूप्स, ठीक है, एंड ड्यू टू हिज रेपुटेशन आल्सो फॉर हिज पर्सनल ब्रेवरी आल्सो, एंड ही वाज वेरी फेयर, मतलब कहते हैं बहुत ही फेयर थे, एंड जनरली मतलब ही नेवर बिलीव्ड की अननेसेसरी पनिशमेंट्स के लिए। इवन ये भी अगर इसके बारे में एक और बात बोली जाती है कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे उन्होंने इंश्योर किया था कि किसी भी प्रिजनर ऑफ वॉर को जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे उनके साथ मिसबिहेव ना हो, उनको प्रॉपर फैसिलिटी दी जाए जो है, उनको प्रॉपर ढंग से रखा जाए, मतलब ये इंश्योर दीज थे जो है।
2: तो सर दुश्मन के सैनिक भी उनका इतना ही सम्मान करते हैं जितना हम करते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा आपने, और इवन नेपाल जो कंट्री है नेपाल ने उनको एज ए ऑनररी जनरल ऑफ नेपालीज आर्मी बनाया था, और 77 में उनको वहाँ पे ना ऑर्डर ऑफ त्रिशक्ता शक्ति पट्टा बोलते हैं, फर्स्ट क्लास, जस्ट लाइक ए नाइटहुड होता है ना जो ब्रिटेन में होता है, तो नाइटहुड ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल, इट वाज प्रेजेंटेड बाय किंग वीरेंद्रा टू हिम। तो ही वाज वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन, एंड विदाउट एनी डाउट कि जो है उन्होंने हमें ये विजय दिलाई थी
2: जी,
3: वो हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे और हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे।
2: बिल्कुल सर, वाकई में सर हर भारतीय सैनिक के ही नहीं हर भारतीय नागरिक के आदर्श रहेंगे सैम मानेकशॉ। और ऐसी कौन सी चीज है उनकी, या ऐसी कौन सी बात है जो हमेशा आपके लिए प्रेरणादायक रही है?
3: उनकी पूरी पर्सनालिटी प्रेरणादायक है
2: जी।
3: कुछ वर्ड्स वो हमेशा बोलते थे जब भी वो लेक्चर्स वगैरह लेते थे
2: जी,
3: जो मैंने सुने हैं, लाइक उनका कहना था कि मेकिंग डिसीजंस इज इजी बट ओनिंग देयर कॉन्सिक्वेंसेस इज हार्ड। काफी बड़ी बात है
2: जी,
3: कि
2: भाई
3: डिसीजन लेना आसान होता है लेकिन उनके जो नतीजे होते हैं अगर वो आपके फेवर में नहीं है तो उसको जो है ओन करना बड़ा
2: स्वीकार करना
3: कठिन होता है।
2: बिल्कुल,
3: लाइक इट वाज वेरी मोटिवेटिंग व्हेन ही यूज्ड टू से कि यू शुड हैव टू फाइट एंड फाइट टू विन, देयर इज नो रूम फॉर द लूजर्स। अगेन आप सोचिए जब ऐसे शब्द के साथ वो अपने जवानों के सामने खड़े होते थे तो कितना मोटिवेट करते थे लोगों को जो है, मतलब उनका एक और भी कोट था जो मुझे याद आ रहा है कि अनलेस यू नो एंड द मेन यू नो यू कमांड नो दैट यू नो योर जॉब, यू विल नेवर बी ए लीडर. मतलब सीधे शब्दों में यह है कि आपको अपने काम के बारे में पूरी जानकारी, उसमें आपका मतलब कॉम्पिटेंस जो है 100% होना चाहिए, है ना. शुड एक्सेल इन योर जॉब,
2: तभी
3: आप लीडर बनेंगे, एंड देन ओनली द मेन विल फॉलो यू. दैट इज व्हाट इट इज, है ना. सर का तो एक बहुत ही फेमस जोक भी है, मतलब वो बोला करते हैं कि इफ ए पर्सन सेज कि ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, तो आइदर ही इज लाइंग और इधर गोरखा.
2: जी जी जी.
3: ये गोरखा उनकी जो रेजिमेंट थी, उनकी बहादुरी के लिए वो बोलते थे. वंस अगेन आई मस्ट से सो के दैट ही वाज अ वेरी चार्समेटिक लीडर एंड ही विल ऑलवेज रिमेम्बर्ड फॉर हिज क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट ग्रेट मिलिट्री लीडर.
2: जी, तो श्रोताओं इन्हीं पंक्तियों के साथ हमें श्रृंखला को यानी भारत पाक युद्ध सन 1971 को यहीं समाप्त करते हैं. आशा है आपने इस श्रृंखला को बहुत ही ध्यान से सुना होगा और आपको कई नई बातें इसमें पता चली होंगी. सर, आप स्टूडियो में आए और आपने इतना वक्त निकाला, और आगे भी हमारे लिए आशा है कि इसी तरह समय निकालते रहेंगे और हमें भारतीय सेना के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे.
3: थैंक यू पूर्वा जी, एंड थैंक यू श्रोताओं. मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि जो भी कुछ हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं
2: जी,
3: वो एक तरह से हमारा मकसद ये है कि आप उसके बारे में हम थोड़ा सा बता सकें
2: जी,
3: एंड एक उत्सुकता जगा सकें जिससे कि आप जो है और इसके बारे में डीपली जाके पढ़ सकें और जो है इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें. आई एम वेरी श्योर यू विल लाइक इट, यू विल लव इट, एंड यू विल फील प्राउड ऑफ इट नाउ फोर्सेस. जय हिंद.
2: बिल्कुल बिल्कुल, हमें हमेशा ही गर्व रहेगा हमारी भारतीय सेना पे. बहुत बहुत धन्यवाद सर. तो श्रोताओं ये था हमारा आज का कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व. इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना की अदिति गौड़ ने, ध्वनि संपादन था अमित गोंदानी का, और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का. और श्रोताओं मैं आपके साथ थी आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले. तो दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से, मिलते हैं एक नई श्रृंखला के साथ कार्यक्रम के अगले एपिसोड में. 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ. देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए.

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित भवानी प्रसाद मिश्र

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे डीआरडीओ के बारे में, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: चरण स्पर्श दादाजी।
2: अरे अरे अरे अरे बेटा, खुश रहो। क्या बात है, आज तो मेरी प्यारी रुचि बिटिया का जन्मदिन है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा।
1: थैंक यू दादू।
2: तो बताओ, आज जन्मदिन पर क्या उपहार चाहिए
1: दादू? आज मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ।
2: अच्छा, मतलब ज्ञान वाला उपहार चाहिए? तो फिर जरूर पूछो बिटिया, क्या उपहार चाहिए
1: दादू? अब तक आप मुझे देश की सेनाओं के बारे में बता रहे थे कि कैसे भारतीय थल सेना, वायु सेना और दूसरी सेनाएं हमारे देश की रक्षा करती हैं। लेकिन अब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन सेनाओं के पास जो हथियार, मिसाइलें, रडार, टैंक और रक्षा उपकरण होते हैं, उन्हें कौन बनाता है और वो कौन कौन से संस्थान हैं जो देश की सुरक्षा के लिए नई तकनीक तैयार करते हैं?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। देखो बेटा, अक्सर लोग सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिकों को देखते हैं, लेकिन उनके पीछे हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ भी काम करते हैं, जो देश को मजबूत बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं।
1: मतलब देश की रक्षा सिर्फ सैनिक ही नहीं, वैज्ञानिक भी करते हैं दादाजी?
2: हाँ बेटा बिल्कुल, सैनिक सीमा पर लड़ते हैं और वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में।
1: सच में दादू?
2: हाँ बेटा।
1: क्या वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं से भी युद्ध लड़े जाते हैं?
2: बिल्कुल। चलो बेटा, आज तुम्हारे जन्मदिन के लिए ये बेहतर उपहार होगा। हम चर्चा करेंगे देश के संस्थानों के बारे में नए सिरे से। चलो चर्चा शुरू करते हैं। अब से मैं तुम्हें देश के ऐसे ही महान संस्थानों की कहानी सुनाऊंगा बेटा, जहां देश की उन्नति के लिए दिन रात तकनीकों पर काम किया जाता है।
1: सच में दादू?
2: हाँ बेटा।
1: तो फिर शुरुआत किससे करेंगे?
2: शुरुआत करेंगे भारत के सबसे बड़े रक्षा अनुसंधान संस्थान से, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी कहते हैं, समझे बेटा? और शॉर्ट में बोलते हैं DRDO।
1: DRDO यानी वो संस्थान जहां देश के लिए मिसाइलें और आधुनिक तकनीक बनाई जाती है।
2: हाँ बिटिया, जहां विज्ञान देशभक्ति से मिलता है और जहां से निकलती है मिसाइलें, रडार, ड्रोन, युद्ध तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की ताकत।
1: दादू तो बताइए ना कि DRDO क्यों बना, ये कैसे काम करता है और कैसे भारतीय वैज्ञानिक देश को नई शक्ति दे रहे हैं, और DRDO में नौकरी पाना मुश्किल है या फिर आसान है?
2: आसान तो नहीं है बेटा, पर जिसने मेहनत की हो, लगन से पढ़ाई की हो, जिसके मन में देश सेवा का जज्बा हो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं।
1: दादू।
2: हाँ बेटा।
1: आपके एक दोस्त जो हमारे घर आया करते थे, वो मोहन अंकल, वो भी तो DRDO में वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने आपको जरूर बताया होगा कि वहाँ मिसाइलें कैसे बनती हैं।
2: तुम्हें खूब याद रहता है मेरा कौन दोस्त कब आया था।
1: हाँ दादाजी।
2: हाँ, DRDO सिर्फ मिसाइल नहीं बनाता, वो तो हमारे देश की रक्षा विज्ञान की रीढ़ है। ये संस्था वो जगह है जहां हमारे वैज्ञानिक रात दिन मेहनत करते हैं ताकि भारत आत्मनिर्भर बने और विश्व में मजबूती से खड़ा हो सके।
1: दादाजी, अब तो मुझे इसके बारे में डिटेल में बताइए, जैसे DRDO की स्थापना कब हुई थी और इसका इतिहास क्या है?
2: देखो बेटा, DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। असल में ये दो संस्थाओं के विलय से बना था, रक्षा विज्ञान संगठन, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन और तकनीकी विकास निदेशालय, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। और इसका उद्देश्य था भारत के सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करना, यानी हमारे सैनिकों को ऐसे हथियार, उपकरण और तकनीक देना जो पूरी तरह हमारे देश में बने हों।
1: मतलब अब हमें हथियारों और अन्य रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। दादाजी
2: बिल्कुल सही कहा बेटा, आज भारत के पास अपनी मिसाइलें हैं, अपने रडार सिस्टम हैं, यहाँ तक कि अपनी लड़ाकू तकनीकें भी हैं, और ये सब DRDO की देन है।
1: वैसे किस तरह की लड़ाकू तकनीक दादाजी?
2: आज DRDO ने देश को अग्नि, पृथ्वी, आकाश जैसी मिसाइलें दी हैं बेटा। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस बनाया है और सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर ड्रोन तक तैयार किए हैं। उनके वैज्ञानिक न केवल रक्षा में बल्कि अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा और मेडिकल तकनीक में भी योगदान दे रहे हैं।
1: वाह दादाजी, मतलब DRDO सिर्फ प्रयोगशाला नहीं बल्कि देश की रक्षा का मस्तिष्क है।
2: हाँ बेटा बिल्कुल सही कहा, DRDO वही है जो सीमा पर सैनिक की बंदूक में जान डालता है और आसमान में उड़ते विमान को भारतीय आत्मा बना देता है।
1: दादाजी अब मैं भी वैज्ञानिक ही बन जाऊं, ऐसा लग रहा है। मैं भी देश के लिए कुछ नया बनाऊंगी ताकि जब कोई कहे मेड इन इंडिया तो उसमें मेरा भी योगदान हो।
2: शाबाश मेरी बच्ची, यही तो असली देशभक्ति है। सिर्फ तिरंगा लहराना नहीं बल्कि अपने ज्ञान, अपनी मेहनत से उसे ऊंचा उठाना भी देशभक्ति है।
1: दादू एक सवाल है कि क्या DRDO एक बहुत बड़ी संस्था है?
2: बहुत विशाल बेटा, बहुत विशाल संस्था। DRDO का लगभग 41 प्रयोगशालाओं और 5 DRDO युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं DYSLS का अपना नेटवर्क है, या कहें कि एक संगठन है जिसमें हजारों वैज्ञानिक, तकनीकी और सहायक कर्मचारी देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कई अलग अलग विषयों को कवर करने वाली रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में काम कर रहे हैं।
1: 5,000 मिसाइलें शामिल हैं दादू?
2: हाँ बेटा, पृथ्वी मिसाइल, त्रिशूल, नाग, आकाश, अलग अलग वर्ग की मिसाइलें इसमें शामिल हैं। DRDO के द्वारा ही विकसित तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान LCA भी हमेशा खूब चर्चा में रहता है। रुस्तम, निशांत, इन जैसे UAVs यानी ड्रोन्स बनाने में DRDO का अहम योगदान है। अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आकाश, ये सभी मिसाइलें तो अभेद मिसाइलें हैं बेटा, जिनको बनाने की उपलब्धियां DRDO ने काफी पहले ही हासिल कर ली थी। अग्नि 5 की रेंज 5,000 किलोमीटर है बेटा, 5,000 किलोमीटर।
1: अच्छा दादाजी, ये तो मिसाइलों का पूरा भंडार है।
2: हाँ बेटा, पूरा भंडार। दरअसल संस्था का विजन है कि देश को अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के साथ सशक्त बनाना है।
1: अच्छा दादू, क्या ये सब DRDO अकेले करता है?
2: नहीं बेटा, DRDO ये सब अकेले नहीं करता। इसे हाल इसरो, BEL और कई निजी कंपनियों से सहयोग मिलता है। आजकल DRDO और प्राइवेट इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप तेजी से बढ़ रही है। इससे न केवल नई तकनीकें तेजी से बनती हैं, बल्कि युवाओं के लिए करियर के मौके भी बढ़ते हैं।
1: अच्छा, तो क्या DRDO ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का डिजाइन भी खुद तैयार किया था?
2: हाँ बेटा, साथ ही UVS जैसे रुस्तम, निशांत का निर्माण DRDO ने किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आधारित आधुनिक युद्ध प्रणालियों के लिए AI आधारित निगरानी और लक्ष्य पहचान, क्वांटम संचार, एनक्रिप्शन और साइबर सुरक्षा पर शोध, ये सब DRDO की उपलब्धियां हैं।
1: मतलब विज्ञान सिर्फ नई खोजों के लिए ही नहीं, सुरक्षा के लिए भी होता है दादाजी।
2: बिल्कुल सही बेटा। मोहन जी से चर्चा चल रही थी तब उन्होंने बताया,
1: अच्छा,
2: कि आजकल के युवा वैज्ञानिक हमसे भी एक कदम आगे हैं।
1: वो कैसे भला?
2: देखो बेटा, अब AI आधारित सर्विलांस सिस्टम यानी आर्टिफिशियल सर्विलांस से दुश्मन की पहचान ऑटोनोमस ड्रोन्स यानी बिना इंसान के उड़ने वाले ड्रोन्स और बैटलफील्ड रोबोट्स यानी खुद ही ऑपरेशन करने वाले रोबोट्स पर काम कर रहे हैं। देखना, तुम भविष्य का भारत आज के भारत से 100 गुना ज्यादा ताकतवर पाओगी बेटा।
1: बिल्कुल होगा दादाजी, हमारे वैज्ञानिक दिन रात इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, इसका मतलब DRDO का काम सिर्फ एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा।
2: हाँ बेटा बिल्कुल, इसमें कई क्षेत्र आते हैं, जैसे वैमानिकी, एरोनॉटिक्स, आयुध वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स लड़ाकू वाहन, कॉम्बैक्ट व्हीकल, इंजीनियरिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइल, उन्नत कंप्यूटरिंग और सिमुलेशन, नौसेना प्रणाली, जीवन विज्ञान, प्रशिक्षण, सूचना प्रणाली और यहाँ तक कि कृषि भी।
1: हे भगवान, ये तो काफी लंबी सूची है दादू। मुझे तो लगा था ये कोई एक सब्जेक्ट वाला ऑर्गेनाइजेशन होगा और DRDO बस मिसाइल बनाता होगा, पर ये तो अपने आप में कई संस्थाओं का अच्छा खासा एक संगठन है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का महासागर है दादू।
2: बिल्कुल बेटा, DRDO का विजन है कि भारत को एक ऐसी अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकें देना जो हमारी सुरक्षा को मजबूत करे, और यही आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत है।
1: तो क्या इस संस्था का विजन बेहतर हथियार बनाना है?
2: नहीं, सिर्फ हथियार बनाना नहीं, बल्कि DRDO वैज्ञानिक अनुसंधान और रक्षा तकनीकी विकास के कई क्षेत्रों में कार्य करता है। इस संस्था का विजन है देश को अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के साथ सशक्त बनाना।
1: ओ, तो DRDO भारत को आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनाने की दिशा में अग्रसर है।
2: हाँ बेटा, और ये न केवल भारत की सैन्य जरूरतों को पूरा करता है बल्कि निर्यात क्षमता भी बढ़ा रहा है। DRDO की तकनीकों का उपयोग नागरिक क्षेत्र जैसे कृषि, मेडिसिन में भी किया जा रहा है।
1: दादाजी, हमारे पास तो पहले से ही कई अत्याधुनिक रक्षा उपकरण है, तो और हथियारों के निर्माण की जरूरत भला क्यों है? वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा था कि विज्ञान से शांति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, युद्ध को नहीं।
2: हाँ बेटा, देश को मजबूत रखना ही असली शांति है बेटा। अगर हमारे पास तकनीक और हथियार ना हो तो दुश्मन हमारी शांति छीन सकता है। वैसे भी हमारे शास्त्र कहते हैं बलस्य मूलम विज्ञान, मतलब शक्ति का स्रोत विज्ञान है जो शांति और युद्ध दोनों में राष्ट्र को संचालित करता है। इसलिए DRDO ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में राष्ट्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का दृढ़ संकल्प किया है, खासकर सैन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में बेटा।
1: दादाजी, DRDO की और क्या क्या उपलब्धियां हैं? उसके सबसे ताकतवर हथियार कौन कौन से हैं, जरा ये भी बताइए।
2: बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, शाबाश। देखो बेटा, DRDO रोज विकास की नई उड़ान भर रहा है। अब इसने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। क्या तुम यकीन करोगे कि इसकी कुछ खास मिसाइलें दुनिया भर में अब अपनी धाक जमा चुकी हैं, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बेटा। इनके पास अग्नि मिसाइलों की एक पूरी श्रृंखला है जिसमें अग्नि 5 की रेंज करीब 5,000 किलोमीटर है। ये भारत की स्ट्रेटेजिक क्षमता है।
1: बिल्कुल होगा दादाजी, हमारे वैज्ञानिक दिन रात इतनी मेहनत जो कर रहे हैं। दादाजी, क्या और भी तकनीकें हैं इस तरह की?
2: हाँ बेटा, क्वांटम कम्युनिकेशन लैब यानी हैकिंग प्रूफ संचार व्यवस्था, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी लेजर और गामा रे बेस्ट हथियार देश के पास होंगे।

0: आरडीओ सिर्फ हथियार नहीं बना रहा है, ये तो बायो डिफेंस जैसे सीबीआरएन, सुटस, केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर और बायो डिटेक्शन किट्स भी बनाता है। कोविड महामारी के वक्त में इनकी टेक्नोलॉजी लाखों जिंदगियां बचाने में काफी मददगार साबित हुई थी बेटा। साइबर लैब जैसी विकसित तकनीकों की मदद से देश की सुरक्षा डिजिटल सीमाओं के माध्यम से की जा रही है।
1: यानी डीआरडीओ का मिशन है जमीन, हवा, समुद्र, अंतरिक्ष की सुरक्षा और साथ ही साइबर रक्षा। और सुरक्षा डोमेन में अत्याधुनिक सेंसर, हथियार प्रणालियों, प्लेटफॉर्म और इससे जुड़े उपकरणों की डिजाइन बनाना और इनका विकास करना, साथ ही साथ स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अनुसंधान, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, औषधियाँ, जैविक रक्षा के लिए खोज और अनुसंधान करना। सही समझा ना मैंने दादाजी?
0: शाबाश बेटा, बिल्कुल सही समझा। डीआरडीओ को हर तकनीक का परीक्षण टेस्टिंग करना पड़ता है। मुश्किल से मुश्किल हालात में थार रेगिस्तान से लेकर अंडमान तक, रेत, पहाड़, समंदर, हर जगह परिस्थिति, मौसम और तापमान के आधार पर किसी भी परीक्षण में हजारों चुनौतियां होती हैं बेटा। इसके अलावा रिसोर्सेज की लिमिटेशन कई बार लक्ष्य तक पहुंचने में अड़चनें पैदा करती है।
1: दादाजी, फिर तो कभी कभी ये मिशन फेल भी होते होंगे?
0: हाँ बेटा, कई बार ये परीक्षण फेल हो जाते हैं। कई बार विदेशी तकनीक पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, लेकिन वैज्ञानिक हार नहीं मानते। आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ने नया जोश भर दिया है। भारत अब खुद के हथियार बना रहा है और दुनिया को भी बेच रहा है। ये डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की मेहनत का फल है बेटा। डीआरडीओ हर युवा के भविष्य का सपना है।
1: वाओ। अच्छा दादाजी, ये बताइए, क्या डीआरडीओ में सिर्फ इंजीनियर ही जा सकते हैं?
0: नहीं बेटा, डीआरडीओ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, साइकोलॉजी, लाइफ साइंसेज, इन सभी कई शाखाओं के लोग काम करते हैं। यहाँ तक कि डीआरडीओ में कानूनी विशेषज्ञ, एचआर, प्रशासनिक अफसर, अकाउंट्स आदि की भी जरूरत होती है बेटा।
1: अच्छा, तो क्या मैं डीआरडीओ ज्वाइन कर सकती हूँ?
0: बिल्कुल कर सकते हो। अगर तुम्हें विज्ञान से प्यार है तो डीआरडीओ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है बिटिया। और अभी तो डीआरडीओ ने और भी कई कई नई सारी पहल की हुई हैं, जिनमें टेक ड्राइव, यंग साइंटिस्ट लैब्स, आईडेक्स, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस शामिल है, जहां तुम जैसे छात्र छात्राएं न सिर्फ सीख सकते हैं बल्कि नए आइडिया पर काम भी कर सकते हैं।
1: पर दादाजी, जब कोई डीआरडीओ में सिलेक्ट हो जाता है तो उसे ट्रेनिंग कहाँ से और कैसे दी जाती है?
0: डीआरडीओ में प्रशिक्षण भी एकदम वैज्ञानिक तरीके से होता है। जैसे ही कोई युवा वैज्ञानिक साइंटिस्ट बी के रूप में नियुक्त होता है, उसे सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ट्रेनिंग एकेडमी में भेज दिया जाता है। डीआरडीओ हेडक्वार्टर दिल्ली में प्रारंभिक ट्रेनिंग दी जाती है बेटा। ये ट्रेनिंग करीब 4 से 8 हफ्तों की होती है, जिसमें उन्हें रक्षा विज्ञान, संगठन की नीतियां, प्रशासनिक प्रक्रिया, साइबर सुरक्षा और कार्यशाला प्रशिक्षण दिया जाता है।
1: यानी सीधा मिसाइल नहीं, पहले तैयारी।
0: हाँ बेटा, सीधा मिसाइल पे ही थोड़ी आ जाएंगे अपन। हाँ, इसके बाद उन्हें उनकी संबंधित प्रयोगशाला में भेजा जाता है बेटा, जहाँ ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। मसलन मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए DRDL और RCL हैदराबाद, कंप्यूटर साइंस और AI के लिए CIR या DYALAI बेंगलुर, बायो डिफेंस के लिए INMS दिल्ली या DIPAS के अलावा कुछ वैज्ञानिकों को IITS, IISC, इसरो या विदेश तक भेजा जाता है MTech या PhD करने के लिए।
1: अच्छा दादाजी, भारत में DRDO की प्रमुख लैब्स कहाँ कहाँ पर हैं?
0: देखो बेटा, DRDO की प्रयोगशालाएं पूरे भारत में फैली हुई हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, जैसे कुछ प्रमुख राज्य, तेलंगाना के हैदराबाद में DRDL, RCI, ASL में मिसाइल एवियोनिक्स की लैब है। कर्नाटक के बेंगलोर में ADA, ADE, CAIR, LRDE में विमानन इलेक्ट्रॉनिक्स AI की।
1: अच्छा, तो इस तरह दिल्ली, मुंबई में और अन्य शहरों में भी तो होंगी?
0: हाँ बेटा, इसी तरह दिल्ली एनसीआर के डीआरडीओ हेडक्वार्टर आईएनएमएस दिल्ली या डीआईपीएएस में जीवन विज्ञान बायो डिफेंस की लैब है। वहीं तमिलनाडु चेन्नई के सीवीआरडीई में लड़ाकू वाहन और सैन्य इंजीनियरिंग की लैब है बेटा। महाराष्ट्र पुणे नागपुर एआरडीआई हथियार प्रणाली की और उत्तराखंड देहरादून में आईआरडीई इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की।
1: दादाजी क्या इनकी कोई परीक्षण लैब्स भी हैं?
0: हाँ बेटा बिल्कुल है। राजस्थान के जोधपुर में डीएमआरएल डीएलजे में सामग्री और उच्च तापमान परीक्षण की लैब है। ओडिशा के बालासोर में मिसाइल परीक्षण रेंज आरटीआर की और गुजरात के जगाड़िया में नवीन निर्माण सामग्री की। वहीं गोवा में नौसेना प्रणालियों की टेस्टिंग लैब है बेटा।
1: मतलब डीआरडीओ का नेटवर्क पूरे भारत में है दादाजी।
0: बिल्कुल बेटा, और यही इसकी ताकत है। देश के हर कोने में रक्षा विज्ञान की मशाल जल रही है। रुचि बेटा हमेशा याद रखना, ज्ञान ही शक्ति है और विज्ञान ही रक्षा, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान शक्ति का आधार है और तुम कभी भी इन दोनों में से एक विकल्प लेकर अपना जीवन नहीं चला सकते। तुम्हें हमेशा जीवन में ज्ञान और शक्ति का तालमेल बैठा कर ही चलना होगा।
1: अच्छा दादाजी, डीआरडीओ में भर्ती कैसे होती है और इसमें भर्ती के लिए कौन कौन सी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं?
0: डीआरडीओ में भर्ती के लिए बेटा आरएएस रिक्रूटमेंट असिस्मेंट सेंटर, यहाँ साइंटिस्ट बी के लिए परीक्षा और इंटरव्यू होता है। इसके लिए गेट स्कोर बहुत जरूरी होता है। आमतौर पर इंजीनियरिंग साइंस और टेक्नोलॉजी के छात्र इसमें शामिल होते हैं। सेप्टेम सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट, इसके माध्यम से टेक्नीशियन एडमिन स्टेनो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए परीक्षा ली जाती है। और इसमें ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर दोनों के लिए बराबर मौके होते हैं। और तीसरा है बेटा इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स के लिए डीआरडीओ आईआईटी नीट और कई कॉलेजों से इंटर्न भी लेता है। इसमें कई छात्र एमटेक या पीएचडी के लिए डीआरडीओ के लैब्स में प्रोजेक्ट करते हैं।
1: दादाजी बहुत कठिन डगर है पनगढ़ की।
0: हाँ तो बेटा सब कुछ इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाता है। देखो बेटा, तुम्हें या तुम्हारे किसी परिचित को डीआरडीओ ज्वाइन करना हो तो ये ध्यान रखना कि तुम्हें गेट की तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा।
1: तो इंजीनियरिंग ही नहीं ग्रेजुएट भी डीआरडीओ में जा सकते हैं दादाजी?
0: बिल्कुल बेटा, डीआरडीओ सिर्फ साइंटिस्ट नहीं पूरा सिस्टम है।
1: यहाँ इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स किस तरह से करवाए जाते हैं?
0: डीआरडीओ में एमटेक पीएचडी के लिए इंटर्नशिप के भी मौके होते हैं बेटा। आईआईटी नीट और बड़ी यूनिवर्सिटी के छात्र वहाँ प्रोजेक्ट करते हैं।
1: दादाजी क्या मैं कॉलेज के दौरान भी डीआरडीओ में इंटर्न कर सकती हूँ?
0: क्यों नहीं बेटा, डीआरडीओ के दरवाजे मेहनती छात्रों के लिए हमेशा खुले हुए हैं।
1: दादाजी क्या लड़कियाँ भी मिसाइल बना सकती हैं?
0: बिल्कुल, महिलाएं आज डीआरडीओ की ताकत हैं।
1: दादू क्या आप महिला वैज्ञानिकों की कहानियाँ सुनाएंगे?
0: बिल्कुल। देखो बेटा, एक महिला वैज्ञानिक थी डॉक्टर टेसी थॉमस, जिन्हें लोग मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। अग्नि 4 और अग्नि 5 प्रोजेक्ट के निदेशक डॉक्टर टेसी थॉमस पहली भारतीय महिला हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम लीड कर चुकी हैं।
1: अच्छा।
0: डॉक्टर गगनदीप कंग, जिनका बायो डिफेंस और मेडिकल रिसर्च में अहम योगदान रहा है। डॉक्टर शांति रामास्वामी, जो डीआरडीओ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स की विशेषज्ञ। तो बेटा लड़कियां ना सिर्फ मिसाइल बना रही हैं बल्कि उन्हें दिशा भी दे रही हैं।
1: वाह दादाजी, फिर तो मैं भी मिसाइल साइंटिस्ट बनूंगी।
0: बिल्कुल बेटा, भारतीय वैज्ञानिकों इंजीनियरों की मेहनत का नतीजा है कि आज भारत ताकतवर और आत्मनिर्भर है।
1: दादाजी और कोविड में डीआरडीओ ने जो काम किया उसके बारे में भी बताइए ना। सब कहते हैं कि उन्होंने बहुत कम समय में चमत्कार कर दिया था।
0: हाँ बेटा, वो समय था जब पूरी दुनिया जैसे थम गई थी, पर हमारे डीआरडीओ के वैज्ञानिक दिन रात प्रयोगशालाओं में जुटे रहे। बहुत कम वक्त में उन्होंने डॉक्स वेंटिलेटर बनाया ताकि हर अस्पताल को मदद मिल सके। यूवी सैनिटेशन टनल्स बनाए ताकि सामान संक्रमण मुक्त रहे।
1: पीपीई किट्स, फेस शील्ड्स और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स भी इन्होंने ही डिजाइन किए थे।
0: हाँ बेटा, ताकि हमारे डॉक्टर और नर्स सुरक्षित रहें। याद रखो बेटा, डीआरडीओ सिर्फ हथियार नहीं बनाता, वो जीवन रक्षक तकनीक भी लाता है।
1: वाह दादाजी, डीआरडीओ के वैज्ञानिक तो असली योद्धा हैं। इनकी हर लैब, हर प्रयोग, हर शोध भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: हाँ बेटा, डीआरडीओ का सपना है कि भारत रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बने। हम अपने सैनिकों को दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक दें, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम में दुनिया से मुकाबला करें, और सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं बल्कि अपनी तकनीकें दुनिया को निर्यात करें। यही है आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना।
1: दादाजी, अब तो मैं पक्का तय कर चुकी हूँ, मैं वक्त आने पर डीआरडीओ में वैज्ञानिक बनूंगी।
0: शाबाश मेरी बिटिया, यही तो चाहिए, देश को युवा और विज्ञान की संगत। पर एक मुश्किल है इसमें।
1: वो क्या दादाजी?
0: अगर तुम्हें कल कोई नया टॉपिक ना मिला तो तुम जरूर डीआरडीओ ज्वाइन कर लोगी। है ना? याद रखना बेटा, देश की सेवा सिर्फ सीमा पर खड़े होकर नहीं होती, कभी कलम से, कभी प्रयोग से, कभी विचार से भी देश की रक्षा होती है। हर युवा अगर अपने क्षेत्र में ईमानदारी और समर्पण से काम करे तो वही असली डिफेंस है, अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने मान की रक्षा करना।
1: जय हिंद दादाजी।
0: जय हिंद प्यारी बच्ची, जय हिंद और जय विज्ञान, जो हर राष्ट्र को सशक्त बनाता है।
2: तो श्रोताओं, ये था आज का रेडियो नाटक देश के संस्थान, जिसमें आज हम बात कर रहे थे डीआरडीओ यानी विज्ञान से सुरक्षित भारत की। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का। आपके साथ हम थे आपके रेडियो सेट पर, मैं भगवती सक्सेना
0: और मैं दीपक नेमा।
2: लेखन किया स्वाति गिरी ने। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
0: नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा।

0: रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: भारत की वीरांगनाओं में अहिल्या बाई का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। पति और पुत्र की मृत्यु के बाद जब वे मालवा की शासक बनी तो राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। राजकोष खाली था और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उस पर उनके महामंत्री ने सैनिक विद्रोह करा दिया, लेकिन अहिल्या बाई बुद्धिमान भी थी और साहसी भी। उन्होंने विद्रोह को बुरी तरह कुचल दिया। उसके बाद शुरू हुआ राज्य में सुधार का सिलसिला। उन्होंने न सिर्फ सेना का नए ढंग से गठन किया बल्कि नारी सेना को भी सुदृढ़ बनाया। भ्रष्ट अधिकारियों को हटाकर नए सभासद नियुक्त किए गए। उन्होंने बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया, जिनमें कलकत्ते से बनारस तक की पक्की सड़क भी शामिल थी। सड़कों के किनारे धर्मशालाएं बनाकर लुटेरों को नियंत्रित किया गया। इससे राज्य का व्यापार बढ़ा और खाली राजकोष भरने लगे। रानी अहिल्याबाई एक धर्मपरायण शासक थीं। उनके राज्यकाल में ही सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। मालवा के लोग आज भी अहिल्याबाई को याद करते हुए उनके गीत गाते हैं। राजबाड़ा और होलकर शासकों की छत्रियां आज भी अहिल्याबाई के यश और गौरव का गान कर रही हैं।
3: मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ओए मेरे देश की धरती ओ सल्लो, ए क्या किताब में मुंह डाल के बैठा है? अरे काम कौन तेरा ताऊ करेगा हैं?
4: क्या कक्का, फिर कर दिया डिस्टर्ब। बड़े मुश्किल से आधी किताब पढ़े थे, अब फिर शुरू से शुरू करनी पड़ेगी।
3: अबे चल ओए, बड़ी अंग्रेजी बोल रहा है हैं? अरे मूलमती, तेरे ताऊ ने पढ़ी है कभी कोई किताब हैं? अरे जरा दिखा तो, कौन सी पोथी बांच रहा, दिखा जरा, दिखा।
4: छोड़ो ना काका।
3: अरे दिखा तो हैं? वीरांगना अहिल्या बाई हैं? तो ये घोंट रहा था 2 हफ्ते से।
4: आओ काका,
3: चल चल सुना क्या पढ़ा, चल बता, चलो जा शुरू।
4: हम कहाँ पढ़े?
3: अरे
4: कहा तो आप डिस्टर्ब कर दिए, अब शुरू से शुरू करनी पड़ेगी।
5: अरे कक्का राम राम।
3: राम राम राम राम राम राम।
5: ओए सल्लू, कैसा है तू?
4: अरे मस्त, एकदम चकाचक।
3: अरे आजा राजू, आजा। अरे ये सल्लू कैसा होगा भैया, हमेशा की तरह आराम से है। खैर वो सब छोड़, ये बता कि इस बार इधर को कैसे?
5: अरे बस कक्का, छुट्टियों में जरा घर आया था।
3: हाँ।
5: कॉलेज शुरू हो गया ना, तो वापस इंदौर जा रहा हूँ।
3: हाँ।
5: अब देखो बस कब तक आती है कक्का।
3: अच्छा, तो इंदौर जा रहे हो हैं? फिर तो भैया बहुत सही टाइम पे आए हो तुम। अभी इंदौर की महारानी अहिल्याबाई की तो बात चल रही थी।
5: देवी अहिल्याबाई?
3: हाँ।
5: अरे उनके नाम पे तो कक्का इंदौर में यूनिवर्सिटी भी है।
3: सवा सवा। अरे तुम मिले जानकार है। तो चलो भाई, जरा हमारे सल्लू को कुछ बताओ उनके बारे में, बताओ।
5: अरे काका आप तो टांगे खींचने लगे, मुझे क्या मालूम उनके बारे में? अरे कुछ भी नहीं मालूम।
3: लो फिर वही ढाक के 3 पात। अरे ऐसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। अरे भाई इंदौर में राजबाड़ा गए हो कभी?
5: अरे वहाँ तो रोज अपना उठना बैठना है काका।
3: अरे भैया राजबाड़ा और उसके पास बनी छतरियाँ अहिल्याबाई होलकर के राजवंश की निशानी है।
5: ऐसा?
3: हाँ। अरे तुम दोनों तो बिल्कुल डब्बा निकले यार। अब कौन पूरी करेगा अहिल्याबाई की कहानी?
5: अरे आप और कौन कर?
3: अरे मैं? अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, अरे ढेर सारा काम पड़ा है।
5: अरे, अरे मैं नहीं। कक्का सुनो तो, सुना दो जरा, मजा आ जाएगा।
3: अब तुम अब इतना जोर दे रहे हो तो सुनानी ही पड़ेगी। तो भैये कान लगा के सुनियो कहानी अहिल्याबाई की। तो बात शुरू होती है 18वीं सदी के मध्य में। माणकोजी शिंदे के एक गरीब मराठा परिवार में देवी अहिल्याबाई का जन्म हुआ।

0: लाखों में एक है हमारी अहिल्या, बिल्कुल राजकुमारी।
1: हाँ, पर राम जाने क्या होगा इस राजकुमारी का। अरे, हम ठीक से इसका लालन पोषण तो कर नहीं पाते हैं, इसका ब्याह कैसे करेंगे?
0: तू चिंता मत कर, जैसे इतनी बड़ी हुई है वैसे ही एक दिन पराए घर भी चली जाएगी। ठाट से इसका ब्याह करूंगा एक राजकुमार से, देखना एक दिन महारानी बनकर रहेगी हमारी अहिल्या।
1: कब तक इन बातों से मन बहलाओगे? पूरे 12 बरस की हो गई है अहिल्या, समय आ गया है कि विवाह योग्य कोई वर देखो।
2: बाबा, मैं जल चढ़ाने शिव मंदिर जाऊं?
0: हाँ बिटिया जा, संभल के जाना, शिव जी ही इसकी नैया पार करेंगे।
3: हाँ, तो उस दिन शिव मंदिर के पास मालवा के राजा मल्हार राव होलकर सैनिक डेरा जमाए बैठे थे।

0: कितना मधुर कंठ है, मुख पर राजसी तेज है। मंत्री जी, कौन है यह दिव्य बालिका?
1: महाराज, प्रतीत होता है निकट ग्राम की ही कोई बालिका है। अभी पूछता हूँ। बालिके, बालिके।
2: प्रसाद।
0: चिरंजीवी भव। पुत्री, क्या नाम है तुम्हारा?
2: जी, अहिल्या।
0: अति सुंदर।
2: क्षमा करें, विलंब हो रहा है, माँ प्रतीक्षा करती होगी।
0: महामंत्री, शीघ्र पता लगाएं ये संस्कारी बालिका किस ग्राम की है, किस कुटुंब की है। हमने अहिल्या को हमारे पुत्र खंडू जी की वधू के रूप में चुना है। बालिका के माता पिता को शीघ्र न्योता भेजें।
1: ऐसा ही होगा महाराज।
3: बहुत बहुत बधाई हो।
4: बधाई हो, बधाई हो, महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है।
0: क्या, वाह, सारे राज्य में उत्सव की घोषणा करा दी जाए। सबको महाभोज के लिए आमंत्रण भेजो।
1: जैसी आज्ञा महाराज।
5: तो अहिल्या बाई के आने से महल में खुशियां गूंजने लगी। पुत्र भाले राव के बाद महारानी ने पुत्री मुक्ता बाई को भी जन्म दिया। सब कुछ खुशी मंगल से चल ही रहा था कि मालवा पड़ोसी राज्य से युद्ध में फंस गया।
6: क्या कहा काका, युद्ध में फंस गया?
5: हाँ बेटा सल्लू, युद्ध में फंस गया।
1: महाराज, सूचना मिली है कि आपके पुत्र राजा खंडू जी युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए।
0: क्या? नहीं, पुत्री अहिल्या।
1: महाराज, स्वयं को संभालें। यदि हम कमजोर पड़े तो मालवा को हाथ से निकलते देर नहीं लगेगी।
7: महाराज, मैंने निश्चय किया है, मैं राजा जी की चिता में सती बनूंगी।
0: नहीं अहिल्या, राज्य को तुम्हारी आवश्यकता है, हम तुम्हें सती होने की अनुमति नहीं देते। महामंत्री, राजसी तलवार निकाली जाए। सैनिकों को मोर्चे पर डटे रहने को कहो। सेना की बागडोर अब हम संभालेंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।

0: बताए फिर क्या हुआ सल्लू? कुछ समय बाद महाराज मल्हार राव की मृत्यु हो गई। अहिल्या बाई का पुत्र भाले राव भी बीमार रहने लगा। अरे बहुत इलाज करवाया, बहुत इलाज करवाया, मगर वो भी काल का ग्रास बन गया। अब राज्य की पूरी जिम्मेदारी अहिल्या बाई के कंधों पर आ गई थी।
1: सावधान, मालवा शासिका महारानी अहिल्या बाई सभा में पधार रही हैं। सावधान, मालवा शासिका महारानी अहिल्या बाई सभा में पधार रही हैं।
2: राजकोष खाली हो रहा है, राज्य के अधिकारी प्रजा के शोषण में लिप्त हैं। अब इन अव्यवस्थाओं पर लगाम लगानी ही होगी।
3: न्याय करे महारानी, न्याय करे।
2: क्या बात है, निर्भय होकर कहो।
3: महारानी, राज्य में व्यापार करना दूभर हुआ जा रहा है। अधिकारी मनमाने कर वसूलते हैं, लूट मची है लूट। ऐसा अन्याय तो कभी नहीं हुआ महारानी, कभी नहीं हुआ।
2: गंगाधर जी।
4: जी महारानी।
2: शीघ्र पता लगाया जाए कि मसला क्या है, दोषी अधिकारी को उसके पद से मुक्त कर दिया जाए। तुम आश्वस्त रहो फरियादी, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा।
3: जय हो महारानी, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए महारानी। अरे ऐसा न्याय कबू नहीं देखा भैया, ऐसा न्याय कबू नहीं।
5: अरे पकड़ो उसको। अरे कहाँ भागा चला जा रहा है?
6: अरे कहाँ चला जा रहा है?
5: पकड़ो, बचने न पाए।
6: अरे अंदर से घेर लो, घेर लो।
5: दरबार में सीधे घुस गया। छोड़ना मत, छोड़ना मत,
6: पकड़ लो।
2: क्या हो रहा है ये सब, छोड़ो उसे। कौन हो तुम?
5: महारानी जी, ये निचली जात का है, पता नहीं कैसे घुस गया यहाँ।
2: हमने प्रश्न आपसे नहीं पूछा था,
5: क्षमा करें।
7: महारानी जी की जय हो, महारानी जी की जय हो।
2: क्या नाम है तुम्हारा और इस तरह आने का कारण? अरे निर्भय होकर कहो।
7: महारानी जी, हम भकलू हैं महारानी जी, निचली जात के हैं, महेश्वर के पास नर्मदा जी के किनारे रहते हैं महारानी जी।
2: क्या समस्या है तुम्हारी?
7: महारानी जी, हमारी बस्ती में आपके सैनिकों ने हाहाकार मचा रखो है, लोग और लुगाइयों को पीटा थे, छोरों को मारा थे महारानी जी। हमारे पास देने के लाने कच्छू नहीं है, हमारो जी वो मुश्किल कर दो है, दरबारी आपसे मिलन नहीं देते। हम जाएं तो कहां जाएं महारानी जी, आपकी शरण में आए हैं।
2: गंगाधर जी।
8: जी महारानी जी।
2: ये सब क्या हो रहा है हमारे राज्य में, हमारी प्रजा को हमसे मिलने की अनुमति नहीं?
8: महारानी जी, आपका समय इन छोटी मोटी घटनाओं में उलझने के लिए नहीं है, फिर ये कोई बड़ी बात भी तो नहीं है?
2: हमारी प्रजा परेशान है और आप कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं। आगे से इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि हमसे मिलने के लिए किसी प्रकार की रोक टोक न लगाई जाए।
8: जी महारानी जी।
2: सेनापति जी।
9: जी महारानी जी।
2: ये कौन महेश्वर की बस्तियों में उपद्रव मचा रहा है?
9: महारानी जी, गंगाधर जी ने कुछ सैनिकों को वहाँ कर वसूलने के लिए भेजा है।
2: क्या, हमारी अनुमति के बिना ही भेज दिया? तुरंत सेना वापस बुला ली जाए, छोटों को सताने वालों को हमारे कोप का भाजन बनना ही होगा, और निर्बलों को सताने से बड़ा और कोई पाप नहीं। तुम निश्चिंत रहो भकलू, हमारे द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे।
10: देवी अहिल्या बाई का न्याय।

0: महारानी जी, यदि बात ना जचे तो क्षमा करें, लेकिन प्रजा एक स्त्री प्रशासक के प्रति हमेशा आशंकित रहती है, और फिर शत्रु भी तो हमें कमजोर समझ के मौके का लाभ उठा सकते हैं।
1: गंगाधर, क्या कह रहे हैं आप?
0: महारानी, मेरा आशय आपके सामर्थ्य पर प्रश्न खड़ा करने का नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि भला हो यदि आप एक दत्तक पुत्र गोद ले लें और उसी की संरक्षिका के रूप में प्रशासन की देखरेख करें।
1: नहीं गंगाधर, अब हर मोर्चे पर हमें स्वयं आगे आना होगा। ये वक्त नहीं है कि किसी पर भी भरोसा किया जा सके।
0: आप कहती हैं तो ठीक ही होगा महारानी जी, मैं तो मालवा के भले की ही सोचता हूँ हमेशा।
1: मालवा का हित सोचने के लिए हम जीवित हैं गंगाधर। सभा समाप्त की जाती है।
2: महारानी जी, महारानी जी,
1: क्या हुआ? ये घबराहट कैसी है?
2: महारानी जी, गंगाधर ने एक सैनिक टुकड़ी के साथ विद्रोह कर दिया। महारानी जी,
1: तो हमारी आशंका सच ही निकली। सेना तैयार करो, गंगाधर को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सेना का नेतृत्व हम स्वयं करेंगे।

0: हाँ तो राजू, महारानी अहिल्याबाई ने गंगाधर के दांत खट्टे कर दिए। अरे इस घटना के बाद भी कई विद्रोह हुए, पर अहिल्याबाई विद्रोह दर विद्रोह कुचलते हुए आगे बढ़ती गई बढ़ती गई। अब मालवा की वाहवाही दूर दूर तक फैल रही थी। अरे सल्लू, ए तुझे नींद आ रही है क्या बे? हैं?
1: अरे नहीं काका, हम बड़े गौर से सुन रहे हैं काका।
0: अबे तू कम से कम काम पे ध्यान लगाता तो तेरी वाहवाही ढाबे तक तो रहती बे।
1: कैसी बात करता काका।
0: खैर चल सुन ध्यान से।
1: हाँ फिर आगे क्या हुआ काका?
0: हाँ तो मालवा को देखकर सबके मुंह में पानी आ जाता था। मालवा को हड़पने की साजिश रचने वालों में एक और नाम था, राघोबा पेशवा। हाँ
2: महारानी जी, राघोबा पेशवा की सेना के सामने हम नहीं टिक सकेंगे। उनकी सेना संख्या में हमसे 3 गुनी है।
3: सेनापति तुको जी, आप आश्वस्त रहें, बस जैसा हम कहते हैं करते जाएं। राज्य की स्त्रियों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाए, जिसकी सीधी देखरेख स्वयं हम करेंगे।
2: जैसी आज्ञा महाराज।

0: पेशवा साहब, सुना है मालवा की स्त्रियां हमसे मुकाबले के लिए बर्छी और ढाल चलाना सीख रही हैं। महारानी अहिल्याबाई हमारी सेना के सामने स्त्रियों की सेना खड़ी कर रही हैं।
1: क्या अब हमें स्त्रियों से युद्ध करना होगा?
0: यह तो उपहासजनक है। भला स्त्रियों और हम में क्या मुकाबला? हम उनको रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर वो यही चाहते हैं तो यही सही।
1: नहीं नहीं सेनापति, नहीं। इस तरह से दोनों ही ओर से पराजय हमारी ही होगी। स्त्रियों को कुचलकर हम कौन सा यश पा जाएंगे? जनता हम पर थू थू करेगी। और मान लो कि हम पराजित हुए तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे।
0: पर पेशवा साहब, और कोई भी चारा नहीं है। आप ही बताएं, ऐसे में हम क्या करें?
1: सेना को पीछे हटने का आदेश दिया जाए।
0: पर पेशवा साहब, मालवा की गद्दी?
1: हमें अपना आत्मसम्मान खोकर गद्दी हासिल नहीं करनी। मोर्चा वापस लिया जाए।
0: जैसी आज्ञा पेशवा जी की।

0: अहिल्या बाई राजमहल में पधार रही हैं।
1: महारानी जी, बहुत से राजपूत हमारे विरुद्ध हो गए हैं, हमारी उपलब्धियों से जलकर हमें लुटेरा कह रहे हैं, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र शुरू हो गए हैं।
2: क्या? जिस महारानी ने हिंदुस्तान के कोने कोने में धर्म की ध्वजा फहराई, उनका राज्य लुटेरा है? महारानी अहिल्याबाई देवी हैं। देवी अहिल्याबाई ने तो हमेशा जनता की भलाई सोची है, फिर चाहे वो कोई भी राज्य क्यों न हो। महारानी ने सर्वत्र सार्वजनिक निर्माण करवाए हैं, ये लोग महारानी की कृपा दृष्टि के योग्य नहीं।
3: शांत सेनापति, शांत। सारे भारत की जनता एक है, द्वेष तो राजा और नवाबों में है। ये एक दूसरे की निंदा की आड़ में एक दूसरे के प्रदेश को बुरा बतलाते हैं। ये प्रदेश छोटा है, वो बुरा है, हमारा प्रदेश बड़ा है और अच्छा है, वे जंगली हैं, हम श्रेष्ठ हैं। अरे, इस भेदभाव का विष हम सबको किसी दिन नरक में धकेलेगा। इस अराजकता की स्थिति में आपस में लड़ मरने से अच्छा होगा कि हम एकजुट होकर सौहार्द से रहें।
1: महारानी जी, इन षड्यंत्रों को लेकर हमारी क्या नीति होगी?
3: राज्यों के प्रति हमारी नीति मैत्रीपूर्ण होगी। महामंत्री जी, युद्ध केवल जनधन की हानि देते हैं, आप सतही स्तर पर षड्यंत्रों को सुलझाने का प्रयत्न करें।
1: किंतु इस तरह शत्रु हमें दुर्बल समझने की भूल कर सकता है।
3: हमें लोगों के हृदय पर राज करना है महामंत्री, इसके लिए हम युद्ध की त्रासदी को टालने का हर संभव प्रयास करेंगे, किंतु पानी ऊपर चढ़ने पर हम भी शत्रु को धूल चटा सकते हैं।
1: जी, समझ गया।
4: अरे क्या बात है काका, मान गए काका, मान गए। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी।
5: हाँ सल्लू, महारानी ने अब सेना को मजबूत करना शुरू किया, और पता है नारी सेना बढ़ती चली गई। अब कोई मालवा के खिलाफ फन नहीं उठा सकता था। महारानी ने अब अपना सारा ध्यान मालवा के विकास में लगाना शुरू किया। हाँ,
3: उन्नति के लिए आवश्यक है कि दूसरे राज्यों से हमारा संपर्क बढ़े, राज्यों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाए, प्रजा के सहयोग से हमारे कोषागार में पर्याप्त धन है, इसका प्रयोग सार्वजनिक निर्माण कार्यों में किया जाएगा।

0: राहगीरों के लिए धर्मशालाएं प्याऊ बनवा जाएं। और हाँ, अब कोई भी फरियादी किसी भी मसले को लेकर सीधे हम तक आ सकता है।
1: महारानी की जय हो, महारानी की जय हो, महारानी अहिल्याबाई की जय हो, महारानी अहिल्याबाई की जय हो।
0: होलकर राजवंश में सबको न्याय मिलेगा।

0: महारानी ने भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाए। अरे उनके ही शासन काल में कलकत्ते से लेकर बनारस तक पक्की सड़कें बनवाई गई। अहिल्याबाई बहुत धार्मिक रही। उन्होंने सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर बनवाया और बनारस में विश्वेश्वर मंदिर की स्थापना की थी।
1: वाह कक्का,
0: हाँ
1: महारानी तो बड़ी महान थी।
0: हाँ महान तो थी बेटा। अहिल्याबाई ने मालवा पर 30 सालों तक राज किया था।
1: 30 सालों तक?
0: हाँ, लेकिन 13 अगस्त 1795 को उन्होंने दुनिया से विदा ली।

0: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त रेडियो रिपोर्ट का है। आपके साथ में हूँ फराज। रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं भारत भवन के अंतरंग सभागार में, जहां 5 से 7 जून तक नृत्य समारोह भाव अनुभाव का आयोजन किया गया है। इस समारोह के पहले दिन पहली प्रस्तुति रही कथक की। कलाकार थे करण गंगानी और

0: पग मरे
1: और यह है प्रस्तुति भरतनाट्यम की कलाकार हैं श्वेता देवेंद्र और उनके साथी

जिसके मन जैसे भाए वैसे कृष्ण कन्हैया, बाल मुकुंद माधव मधुसूदन जसोदा लेत बलैया, है देवकी के जाए जसोदा की गोद आए, मन मोहक छवि प्यारी नंद जसोदा अपने लाल पर बलिहारी, झूला झूलत श्री कृष्ण मुरारी, झूला झूलत श्री कृष्ण मुरारी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। इस गुच्छे में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा गुलदस्ता जिसकी हर पंखुड़ी चमकदार है, हर रंग सूर्य सा उजला है और हर सुगंध संघर्ष से भरी हुई है। श्रोताओं, पिछले अंश में हमने एक ऐसे क्षण को देखा जहां इतिहास जैसे थम सा गया था और समय स्वयं कर्ण की परीक्षा लेने को ठहर गया था। एक ओर राज्यसभा की मर्यादाएं थी, दूसरी ओर एक तेजस्वी आत्मा जो अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए उद्यत थी। जब कर्ण ने धनुष उठाया तो वो केवल एक वीर का साहस नहीं था, वो उस अग्नि का प्रज्वलन था जो वर्षों से उपेक्षा और अपमान की राख में दबकर धधक रही थी। उसकी टंकार में केवल रण की चुनौती नहीं थी बल्कि समाज के कठोर नियमों को प्रश्न करने का साहस भी था। परंतु श्रोताओं, ये कैसी विडंबना, जहां पराक्रम को प्रणाम होना चाहिए था वहां वंश का लेखा मांगा गया, जहां भुजबल की परीक्षा होनी थी वहां जन्म का तराजू रख दिया गया। कर्ण खड़ा था अडिग अचल, पर भीतर कहीं एक मौन वेदना लहरों की तरह उठ रही थी।
2: हाँ श्रोताओं, उस सभा में जो घटित हुआ वह केवल एक वीर का अपमान नहीं था, वह मानवीय गरिमा पर लगा हुआ प्रश्न चिन्ह था। जब कर्ण से उसकी जाति पूछी गई तब जैसे उसकी आत्मा क्षण भर के लिए कांप उठी, पर अगले ही पल वह सत्य बनकर मुखर हो गई। उसकी वाणी में ज्वाला थी, पर वह ज्वाला विनाश की नहीं स्वाभिमान की थी। उसने घोषणा की कि उसका परिचय उसके कर्म है, उसकी शक्ति है, उसका तेज है। पर सत्य का प्रकाश अक्सर आंखों को चुभता है और वही प्रकाश उस सभा को भी असहज कर गया। कर्ण उस समय केवल एक योद्धा नहीं था, वह हर उस हृदय की आवाज बन गया था जो उपेक्षा के अंधकार में भी अपने अस्तित्व की लौ जलाए रखता है।
1: और फिर जब अन्याय अपनी सीमा लांघ जाता है, जब मौन भी अपराध प्रतीत होने लगता है, तब कहीं से एक स्वर उठता है। ये स्वर केवल समर्थन का नहीं, ये नियति के नए अध्याय का उद्घोष है। यही वो क्षण है जहां कर्ण के जीवन की दिशा बदलने को है, जहां अपमान की अग्नि में तपकर उसका व्यक्तित्व और अधिक दीप्त होने वाला है। अब वो केवल अपनी पहचान नहीं खोजेगा बल्कि उसे संसार के समक्ष स्थापित करेगा।
2: श्रोताओं, कथा अब उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां संबंधों के बीज अंकुरित होते हैं, जहां मित्रता केवल भाव नहीं बल्कि इतिहास रचने वाली शक्ति बन जाती है, जहां एक हाथ बढ़ता है सम्मान देने के लिए और दूसरा हाथ उसे थाम लेता है अपने अस्तित्व को स्वीकारने के लिए। अब कथा में करुणा भी है, तेज भी है, संघर्ष भी है और एक नए भविष्य की आहट भी। तो आइए श्रोताओं, हम प्रवेश करते हैं उसी भाव संसार में जहां अपमान से जन्म लेता है स्वाभिमान और संघर्ष से उदित होता है उज्जवल व्यक्तित्व। आइए अब बढ़ते हैं रश्मि रथी के प्रथम सर्ग के भाग 5, 6 और 7 की ओर, जहां कर्ण का तेज और भी प्रखर होकर हमारे समक्ष आलोकित होता है। आइए सुनते हैं प्रथम सर्ग के भाग 5 का काव्य पाठ, जहां सुयोधन कह रहे हैं, करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार, अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ।
1: रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस शुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको, हरे धन्य हो जाए प्राण, तू ग्रहण करे यदि मुझको।
3: कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उरण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करें दिन मान कि आऊं तेरे कोई काम, कृपा करें दिन मान कि आऊं तेरे कोई काम।
1: घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान।
2: श्रोताओं, यहीं से कुछ प्रश्न ऐसे जन्म लेते हैं जो केवल कथा से नहीं हमारी अंतरात्मा से पूछे जाते हैं। क्या सम्मान का ऋण कभी विवेक से बड़ा हो जाना चाहिए? क्या मित्रता सत्य से ऊपर हो सकती है? और क्या न्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस हम तभी दिखाते हैं जब उससे हमें कोई लाभ मिलने की संभावना हो? हमारे लोक में कहा गया है, सत्य सदा अकेला चलता है पर अंततः वही पथ बनाता है। रश्मिरथी हमें इसी सत्य के प्रति सचेत करती है। कर्ण आज भी जीवित है, कभी किसी दफ्तर के कोने में बैठा हुआ, कभी किसी गांव की धूल भरी पगडंडी पर संघर्ष करता हुआ, कभी किसी विश्वविद्यालय के दरवाजे पर अवसर की प्रतीक्षा में खड़ा हुआ। और दुर्योधन भी आज हमारे ही बीच में है, जो मान देता है, पहचान देता है और उस मान की कीमत भविष्य में चुकवाता है। तभी तो किसी कवि ने कहा है, उपकार जो बंधन बन जाए वह उपकार नहीं व्यापार है। श्रोताओं, हर प्रकाश अपने साथ एक छाया भी लेकर आता है। यह सम्मान जितना उज्जवल था उतना ही गहन उसके भीतर छिपा हुआ बंधन भी था। कर्ण की कृतज्ञता उस क्षण स्वाभाविक थी, पर यही कृतज्ञता आगे चलकर उसके निर्णयों की दिशा भी निर्धारित करेगी। यही वह बिंदु है जहां मनुष्य का हृदय और उसका विवेक एक सूक्ष्म द्वंद में प्रवेश करते हैं।
1: मनुष्य का हृदय बड़ा सरल होता है, जहां उसे पहली बार मान मिलता है वहां वो स्वयं को अर्पित कर देता है। कर्ण भी उसी सहज भाव में बह गया। उसने दुर्योधन को केवल मित्र नहीं अपना जीवन ऋण मान लिया। परंतु इतिहास गवाह है, कभी कभी उपकार का ये ऋण इतना गहरा हो जाता है कि वो मनुष्य के निर्णयों पर अधिकार कर लेता है। श्रोताओं, यही वो बिंदु है जहां रश्मिरथी हमें भीतर तक झकझोर देती है। वो पूछती है कि क्या हर उपकार निस्वार्थ होता है, क्या हर सम्मान स्वतंत्रता देता है, या कभी कभी वो एक अदृश्य बंधन भी बन जाता है। कर्ण आज भी हमारे बीच जीवित है, हर उस व्यक्ति में जिसे देर से ही सही पर उसका अधिकार मिला, हर उस हृदय में जो कृतज्ञता और सत्य के बीच संतुलन साधने का प्रयास करता है। और दुर्योधन भी हमारे समय में उपस्थित है, कभी अवसर बनकर, कभी सहारा बनकर, और कभी एक ऐसे संबंध के रूप में जिसकी कीमत समय के साथ समझ आती है।
2: इसी गहन द्वंद के साथ आइए अब हम रश्मिरथी के उस अगले पड़ाव की ओर अग्रसर होते हैं, जहां प्रत्येक चरण केवल गति नहीं नियति का स्पर्श है, जहां उठाया गया हर कदम काल के पटल पर अमिट रेखा बन जाता है और मनुष्य का निर्णय स्वयं इतिहास का विधान बनकर प्रतिष्ठित हो उठता है। ये यात्रा अब और गहरी होने वाली है, जहां मित्रता की ऊष्मा भी है और उसके भीतर छिपी हुई कसौटी भी, जहां सम्मान का उजाला है और उसके साथ चलती हुई एक लंबी छाया भी। आइए सुनते हैं प्रथम सर्ग के भाग 6 को।
1: लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुलका कुल कल कल से। विनय पूर्ण प्रतिवंदन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धन धान। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य ये खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में, बोले छी ये क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को, देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंग भूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरुद्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा ये राहु नया फिर कौन।
2: दिनकर जी के शब्दों की चेतना में कर्ण से मानो स्वयं काव्य बोल उठता है। तुम सूर्य के अंश हो, इसलिए तुम्हारा तेज स्वभाव से तुम्हारे साथ है, पर यह तेज किसी एक छाया का पक्ष नहीं करता, वह सबको आलोकित करने के लिए है। सम्मान जब निःशर्त मिले तब वह प्रसाद बनता है, और जब शर्तों के साथ आए तो वही सम्मान परीक्षा का रूप धर लेता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर यहां ये स्मरण कराते हैं कि कर्ण से प्रश्न समाज नहीं स्वयं धर्म कर रहा है, कि वह अपने तेज से पथ रचेगा या किसी और की राह का दीप बनकर रह जाएगा। क्योंकि मित्रता मधुर हो सकती है, पर सत्य उससे भी अधिक गहन है, और अंततः वही मनुष्य का अपना होता है जो उसे सही दिशा देता है।
1: समय के रथ पर सवार कर्ण अपने जीवन के उस कठिन चक्र से गुजर रहा है जहां सम्मान और परीक्षा एक साथ सामने खड़ी हैं। ये केवल एक योद्धा की घड़ी नहीं बल्कि एक मनुष्य की आत्म परीक्षा का क्षण है, जहां तेज विवेक से टकराता है और जहां हर चयन इतिहास में बदल जाने को आतुर है। आइए श्रोताओं, अब हम पहुंचते हैं रश्मिरथी के प्रथम सर्ग के अंतिम पड़ाव पर, जहां गुरु का भय, मित्रता का आलिंगन, सूर्य का स्नेह और मां की मौन वेदना सब समाहित है, जहां भविष्य की रेखाएं और गहरी हो जाती हैं। आइए सुनते हैं प्रथम सर्ग के भाग सात का काव्य पाठ। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एक लव्य से लिया अंगूठा कढ़ी नमुक से आह, रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक ये युद्ध भट भट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी ये हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूम केतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा ना कर्ण को ये निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज बनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन औकर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर, गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोस्ती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न के जैसे, हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव।
2: श्रोताओं, अब कथा उस संध्या क्षण में प्रवेश करती है जहां दिन का उजास धीरे धीरे ढल रहा है, पर घटनाओं का ताप और भी प्रखर होता जा रहा है। आचार्य द्रोण के मन में उठता हुआ यह संशय केवल एक गुरु की चिंता नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की घबराहट है जो अपने स्थापित संतुलन को टूटता हुआ देख रही है। अर्जुन, जिसे अब तक अद्वितीय माना गया, जिसकी राह को निष्कंटक बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा तक ले लिया गया, आज पहली बार एक ऐसे प्रतिद्वंदी के सम्मुख खड़ा है जो न केवल उसके समकक्ष है बल्कि कहीं ना कहीं उससे आगे निकलने की क्षमता भी रखता है।
1: कर्ण अब केवल एक नाम नहीं रहा, वो एक संभावना बन चुका है, एक ऐसा धूमकेतु जिसकी आभा को देखकर स्वयं गुरुओं का धैर्य डगमगाने लगता है। ये वही क्षण है जहां प्रतिभा और व्यवस्था के बीच एक अदृश्य संघर्ष प्रारंभ होता है, एक ऐसा संघर्ष जो आगे चलकर इतिहास की दिशा को मोड़ देगा।
2: कर्ण और दुर्योधन, दो शरीर पर एक संकल्प गलबाही डाले जिस प्रकार रंगभूमि से निकलते हैं, वह केवल मित्रता का दृश्य नहीं बल्कि एक ऐसे संबंध का आरंभ है जो समय की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला है। परंतु हर उत्सव के पीछे एक मौन पीड़ा भी छिपी होती है। जब समस्त सभा आनंद में डूबी हो, तब एक हृदय ऐसा भी है जो इस दृश्य को देखकर भीतर ही भीतर कहीं टूट रहा है, और वो है कुंती का हृदय।
1: ये मौन केवल एक स्त्री का मौन नहीं, ये उस सत्य का मौन है जो समय से पहले उजागर नहीं हो सकता। ये उस पीड़ा का मौन है जिसमें स्वप्न बिखर जाते हैं और हृदय स्वयं को ही समझाने में असमर्थ हो जाता है। सूर्य भी जैसे इस दृश्य का साक्षी बनकर ठहर जाता है, अपने पुत्र को स्नेहिल किरणों से स्पर्श करता हुआ मानो उसे आशीष दे रहा हो। प्रकृति भी इस क्षण में सहभागी है, क्योंकि ये केवल एक घटना नहीं, ये नियति का गहन संकेत है।
2: आने वाले क्षणों में यह तेजस्वी पुरुष केवल रणभूमि में ही नहीं, अपने भीतर भी अनेक युद्ध लड़ेगा, जहां दानवीरता उसकी पहचान होगी और दुविधा उसकी परीक्षा। प्रथम सर्ग की समाप्ति पर दिनकर जी के शब्दों को शीश नवाकर प्रतीत होता है कि कर्ण का रथ अब पूर्ण वेग से काल की दिशा में बढ़ चला है। अपमान की धधकती भट्टी में तपकर उसका पुरुषार्थ कुंदन हुआ है, और मित्रता की सौगंध ने उसके जीवन को रण पथ से बांध दिया है। आगे जो आने वाला है वह केवल युद्ध नहीं, वह धर्म, दुविधा और दानवीरता का महासंग्राम है। सूर्यपुत्र कर्ण अब कथा नहीं रहा, वह इतिहास की छाती पर उगता हुआ वह तेज है जो रक्त से लिखे भविष्य को और भी उजास देना चाहता है।
1: दोस्तों, अब समय है आप सभी से अनुमति लेने का। रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर जी का वो विराट काव्य वृक्ष है जिसकी जड़ें भारतीय चेतना में गहराई तक फैली हैं और जिसकी प्रत्येक शाखा मनुष्य, धर्म और वीरता के किसी नए सत्य को प्रकट करती है। प्रथम सर्ग उस वृक्ष की केवल एक सशक्त शाखा है, आगे द्वितीय सर्ग में यह काव्य और भी गहन छाया और भी प्रखर तेज के साथ हमारे सामने उपस्थित होगा। उसी आशा और प्रतीक्षा के साथ हम पुनः काव्य पाठ लेकर आपके बीच लौटेंगे।
2: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित गुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति लेखन दीपक नेमा का। इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं पर विराम लेती है। आपके साथ हम थे, मैं भगवती सक्सेना,
1: मैं संदीप शर्मा,
3: मैं दीपक नीमा।
2: तो श्रोताओं, इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं पर विराम लेती है। फिर मिलेंगे एक नए अंक में, तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
4: लीजिए सुनिए अगला देशभक्ति गीत, गीतकार सेहनलाल द्विवेदी।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें, गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें, तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।